मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
5: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
6: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
4: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाया तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
9: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified five sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled.
10: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
11: क्या मेरी कसम
10: मिस कर दिया तो रीलोड
12: चाय चाय चाय
13: बिंदास मॉर्निंग
10: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10
14: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
15: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
16: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
17: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
16: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534
18: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग

वेलकम बैक है सुप्रभात, नमस्कारम जी। 8:22 हो गए हैं, एक नई सुबह है, ताजगी से भरी हुई सुबह है। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आज एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग में। अभी स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:22, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप 2 जुलाई की सुबह। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है आपका रेडियो वाला आनंद, एंड आई एम रियली श्योर सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और यार सुबह की शुरुआत अच्छे से कर रहे होंगे। दिन है आज गुरुवार का, यानी थर्सडे की सुबह है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों कहते हैं जब इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी साथ देने लगती है, मेहनत इतनी करो कि सफलता तुम्हारा परिचय खुद करा दे, है ना। ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो हमारी जिंदगी को थोड़ा सा यू नो पुश करती हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा और सही डायरेक्शन में और सही लोगों का साथ चुनना होगा। श्रोताओं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार कीजिए। सेल्फ लव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दुनिया के लिए भागते रहते हैं लेकिन खुद के लिए कभी समय नहीं निकालते, जबकि अंत तक हमारा साथ कौन देने वाला है? जी हाँ, हम खुद का साथ खुद देने वाले हैं ना। तो इसीलिए आज से जो है थोड़ी दुनियादारी के बारे में कम सोचिए, अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि खुद से प्यार करना है, खुद को टाइम देना है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और आपके शरीर के लिए भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की एक बेहतरीन ट्रैक के साथ। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थोड़ी सी देर में वापस मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पर। गुड मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
5: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: अरे आनंद इज बैक।

क्या बात है यार, क्या बात है। बेहतरीन ट्रैक जानवर मूवी से भी आप एंजॉय कर रहे थे अमेजिंग सा गाना आरजे आनंद के साथ। आप सभी का वेलकम बैक है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे अच्छे गाने सुन के सुबह अच्छी हो जाती है।

श्रोताओं, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद के साथ। ये है आपके शहर का अपना देसी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। हमारे पास मनमोहन जी का मैसेज पहुंच गया है यहां पर इस वक्त, वो मुझे सुन रहे हैं रामलीला ग्राउंड के पास से। और हमारे पास मैसेज पहुंचा है प्रकाश जी का, ये मुझे लिखते हैं, आनंद जी सुप्रभात, मौसम बहुत ही औसम है और जैसे ही जुलाई का महीना आया लगा कि मानसून ने दस्तक दे दी है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हेलो जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मेरे पास ये वैभव जी का मैसेज आया, ये मुझे लिखते हैं, आनंद जी बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि बच्चे ना आजकल बड़े एक्साइटेड हो गए स्कूल के नाम से, और इनफैक्ट उनके स्कूल जाते ही कल बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, एक तारीख थी, बहुत सारे बच्चे स्कूल गए होंगे आई एम श्योर। और झमाझम बारिश कल हो रही थी तो मतलब मजा ही आ गया ना, एक तो स्कूल खुल गए, ऊपर से झमाझम बारिश होगी, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई और एकदम चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब प्रकृति का नजारा ही चेंज हो गया भाई। इतना खूबसूरत और सॉलिड नजारा था ना देखने काबिल। हालांकि थोड़ी वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसकी बात तो खैर करो ही मत यार, लेकिन कुल मिला के मौसम एब्सोल्युटली ऑसम। अभी आगे बढ़ते हैं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:36, 2 जुलाई हो गई है। क्यों खास है 2 जुलाई का इतिहास, क्यों महत्वपूर्ण है देश दुनिया के लिए 2 जुलाई की तारीख, आइए जरा बात करते हैं आज के इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालेंगे। श्रोताओं आपको बता दें आज का दिन बहुत ही खास है, तमाम सारी घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है 2 जुलाई का दिन। आपको बता दें आज ही के दिन 1972 को किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा IPS की परीक्षा पास कर देश की पहली महिला IPS अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया था आज ही के दिन। जी हां श्रोताओं, और आज के दिन मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था श्रोताओं आज के दिन। और आज के दिन खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे आज मनाया जाता है श्रोताओं। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है, हर दिन की तारीख में कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण छिपा होता है जो आपके और मेरे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बदलाव लाने की कोशिश करता है हर दिन का इतिहास। क्योंकि जब ऐसे ऐसे नाम हम पढ़ते हैं सुनते हैं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है कि हम भी अगर शायद सही दिशा में प्रयत्न करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी श्रोताओं। चलिए श्रोताओं आपको बताते चलें, आज के दिन सुलहस LVI भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, 1983 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। और आपको बताते चलें मोहम्मद अजीज भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक में से एक थे, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था, 1954 में इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। और आलोक जी का भी जन्म हुआ आज के दिन, और आज के दिन विद्यावंतु सिंह इनका भी जन्म हुआ था 1945 को, जो लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है श्रोताओं आज के दिन। श्रोताओं ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपके साथ साझा करी। और आज के दिन एक और नाम जुड़ जाता है स्वामी राम जी का, जो भारतीय योगाचार्य थे, 1925 में उनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। और बाकी आज का दिन और भी तमाम सारी बातों को लेकर, इतिहास को लेकर खास है ही, वो तो मैंने आपके साथ साझा किया ही है। और क्या स्पेशल है आज के दिन, क्या कुछ खास और सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर भी हम जरूर आपके साथ बातें साझा करते रहेंगे और तमाम सारी जानकारियां जो है वो लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन के माध्यम से। फिलहाल मौसम बहुत ही औसम है, आज का वेदर बहुत ही औसम है, और इस औसम वाले मौसम में अगर अच्छे गाने सुनने को मिल जाए तो सुबह और भी अच्छी हो जाती है। सही कहा ना मैंने? फिलहाल ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंच रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक निकल गया है श्रेया घोषाल की आवाज में, AR रहमान साहब का म्यूजिक है, मौसम बहुत ही औसम है, इस औसम वाले मौसम में ऐसे गाने तो होने चाहिए। फिलहाल करंट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। हवा की बात करूं तो 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलने वाली, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक रहेगी, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी आ गई। एक मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेशन आ रहा है कि बहुत अच्छा आज का एयर क्वालिटी दिख रहा है, क्या बात है। चलो हम भी साथ में बरसों रे मेगा मेगा करते हैं। आप सुन रहे हैं RJ आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
6: कॉल 8826213131।
7: शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
8: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
7: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
8: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
7: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
8: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
9: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
10: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
11: लेकिन सोनिया
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
11: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
12: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक कुमार शानूवल का याग्निक जी की आवाजों में अभी आप एंजॉय कर रहे थे फ्रॉम द फिल्म साजन चले ससुराल से गाना। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है, वेलकम बैक है। आप जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ स्टेशन क्लॉक में, वक्त हुआ है 8:50। ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों दिन गुरुवार का है और आनंद के साथ आप सुन रहे हैं आज का ये बेहतरीन प्रोग्राम। अब जरा आपके दिमाग का टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपके संदेश बड़े अच्छे अच्छे मेरे पास पहुंचे हैं, आइए जरा शामिल करते हैं। किसी ने मुझे लिखा है कि इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। वाह वाह वाह वाह, कमाल है कमाल है। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो क्योंकि बुराई आपको बुरा बना देती है। क्या बात है जॉन साहब, ये सहारनपुर से जुड़े हैं हमारे रेगुलर लिसनर, बहुत ही प्यारे श्रोता हैं हमारे। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है कि जिंदगी अगर जीनी है तो खुश होकर जियो और जिंदगी का आनंद अगर उठाना है तो अपने साथ अच्छे लोगों का साथ बनाकर रहो। वाह वाह, थैंक यू सो मच शगुन जी प्यारा मैसेज करने के लिए। हनी वर्मा जी का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हैं आप, ये बुद्ध बाजार से मुझे मैसेज कर रहे हैं आज की सुबह और रेडियो से ये पहली बार जुड़े हैं और लिखते हैं काफी अच्छा है आपका ये रेडियो चैनल और बहुत ही अच्छे गीत संगीत आप बजा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है जी, शुक्रिया मेरे भाई। एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्होंने मुझे नाम तो नहीं लिख के बताया अपना, लेकिन ये लिखते हैं कि सुबह सुबह अगर देखिए अच्छे गाने और अच्छी बातें सुनने को मिल जाए आनंद जी तो सुबह बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। और उससे पहले मैं एक अच्छी बात भी बताना चाहता हूं। बिल्कुल जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात वाकई में लिखी है। ये लिखते हैं कि देखिए आनंद जी, कभी भी ना किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हो तो वो गलत उसके साथ होना हो लेकिन आपके साथ डेफिनेटली हो जाता है, इसीलिए आप अपनी तरफ से अच्छा सोचिए और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल बात तो एकदम सही कही है आपने और मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ भी ऊपर वाला अल्लाह वाहेगुरु खुदा परमपिता परमात्मा कभी गलत नहीं होने देता है, इसीलिए बस अच्छा सोचते रहिए एंड लाइफ में अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करते रहिए और अच्छे अच्छे गानों के लिए आरजे आनंद को सुनते रहिए। एंड अभी हमारे पास एक और संदेश पहुंच चुका है, हेलो हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं, सुबह सुबह मैं अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल चुका हूँ मुरादाबाद की सड़कों पर। आनंद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? प्रेम जी गुड मॉर्निंग, प्रेम भाई आपका तो नाम ही इतना प्यारा है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे। श्रोताओं आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वो कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है, क्या लगता है आपको इस वर्ल्ड का वो कौन सा देश है, दुनिया का कौन सा देश है जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, आपको क्या लगता है? आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा, जरा हम भी जाने कितने लोगों को पता है इसके बारे में सही आंसर। प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा अपने नाम के साथ अपना सही जवाब 9837896896। इस वक्त आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कौन सा वो देश है दुनिया का जहां सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा आबादी वाला जनसंख्या वाला कौन सा देश है, व्हाट्सएप करो मुझे। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। आप जुड़ चुके हैं एक नई शहर की वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जिसका नाम है विंदास मॉर्निंग। ये आप सुनते हैं आपके शहर के देसी रेडियो यानी कि आपके शहर के फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
7: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
6: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: कॉल

0: 9045912348। स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: स्टेशन ब्लॉक में वक्त हुआ है सुबह के 9:01। वेरी गुड मॉर्निंग, ये है बहुत ही प्यारी सी गुरुवार की मॉर्निंग, यानी कि आप सभी का वेलकम बैक एक बार फिर से। दिस इज थर्सडे की सुबह, लेडीज एंड जेंटलमैन, जुड़ चुके हैं आप आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारी बातचीतों का जो सिलसिला है वो लगातार आपके साथ जारी रहता है, एंड बहुत सारे श्रोता हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ जाते हैं। बहुत ही आनंद मुझे आता है आप लोगों के साथ ढेर सारी बातचीत करने के लिए। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाहर का मौसम तो है ही औसम, एंड सूर्य चाचू देखने को मिल जाते हैं तो थोड़ा सा मन को सुकून मिल जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तो वहीं मन को जो है और भी ज़्यादा आराम मिल जाता है ना। देखिए भैया, जुलाई आई है और जुलाई जैसे ही आती है, यानी कि हर जुलाई नहीं, हर महीने की पहली तारीख को बड़े सारे बदलाव होते हैं, बड़े सारे चेंजेस होते हैं। जैसे जुलाई ने एंट्री मारी, वैसे ही जुलाई के पहले दिन राहत की बरसात हो गई है। मतलब आपको बताते हैं, एलपीजी का जो छोटा सिलेंडर है वो भी सस्ता हो गया है। हाँ जी, महंगाई की मार के बीच अब एलपीजी ग्राहकों को थोड़ी सी राहत मिली है, यानी कि कल जो कमर्शियल वाला गैस सिलेंडर है, मतलब छोटा वाला मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ जी, वो थोड़ा सा सस्ता हो गया, यानी कि 5 किलो वाला जो फ्री एलपीजी वाला सिलेंडर था उस पर 13 रुपये जो है कम हुई है। मतलब 5 किलो छोटू वाला जो सिलेंडर है अभी वो थोड़ा सा सस्ता हो गया है। अगर मैं मानता हूँ यार, अगर इतना सा भी सस्ता हो रहा है ना, एक चुटकी भी सस्ता हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया यार। एटलीस्ट कुछ तो राहत मिल रही है यार उन लोगों को जो बेचारे बड़ी मशक्कत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर जो है तब जाके वो जब यहाँ पर जाते हैं तो उनको लगता है हाँ यार बड़ा महंगा हो गया यार सिलेंडर, लेकिन जब ऐसी राहत मिलती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें भैया, अब 1 जुलाई से लेकर 6 महीने तक जो है आधार कार्ड बिल्कुल मुफ्त में अपडेट होगा, ऐसा कहा जा रहा है। एंड पहले आपको 75 रुपीज़ का शुल्क देना पड़ रहा था आधार कार्ड अपडेट के लिए, बट अभी बताया जा रहा है 1 जुलाई 2026 से लेकर अगले 6 महीनों तक आप आधार कार्ड को बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। अपना नाम, अपना पता, अपना जन्मतिथि, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, ये सब कुछ आप बिल्कुल फ्री में अपडेट करा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ आपको पता लग रही तो आपको डेफिनेटली एक बार करा लेनी चाहिए, और अपनी वेरिफिकेशंस तो डेफिनेटली कराते रहें, केवाईसी भी जरूर अपने जो जितना जरूरी है उतने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराते रहें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छोटी छोटी चीजें आपको याद दिलाता रहता हूँ। कितने दिन हो गए लास्ट टाइम बैंक गए थे जब आप अपने केवाईसी अपनी अपडेट कराई थी, नहीं पता ना? तो भैया बैंक में जाओ, अपनी केवाईसी अपडेट करवाओ, नहीं है तो डेफिनेटली कराओ, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भैया रेलवे में भी थोड़े से बदलाव किए गए हैं, आपको बता दें बिना टिकट यात्रा पर 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। महिला कोच में पुरुष मिलने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना अब देना पड़ेगा, यानी कि कई बार होता है ना, बहुत धावाबाजी करते हैं कुछ पुरुष महिलाओं के कोच डब्बे में घुस जाते हैं, उसके बाद वो सीट पर भी अपना हक जमाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ अब पाया जाता है तो उनको 2500 रुपये तक का जुर्माना देना भरना पड़ सकता है। तो भैया हम तो कह रहे हैं पहले तो करना ही नहीं है, जो फीमेल डब्बा है, जो फीमेल डब्बा है उसमें जाना ही क्यों है भाई, है ना, फीमेल की सीट है तो उसमें घुसना ही नहीं है पहली बात तो। अगर आप अनफॉर्चुनेटली घुस भी रहे हो तो प्लीज सीट पे तो बैठो मत भैया, और अगले स्टेशन पे जाके चेंज कर लो, बेहतर इसी में। और पहली बात तो घुसना ही नहीं है ब्रो, क्योंकि वो जो है ना महिला कोच, उसमें अगर पुरुष पाए जाते हैं तो उनको अब 2500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, ठीक है। ये 1 जुलाई से नए रूल्स जो लागू हुए मैं आपको बता रहा हूँ। UPI से आप निकाल सकेंगे PF एग्जैक्टली 1 जुलाई से जो है, अब UPI से आप मिनटों में आपका PF निकल सकेगा, ये बहुत ही सिंपल हो गया, एक फैसिलिटी शुरू होगी, यानी कि PFO 3.0 के साथ मिलेगी एक नई सुविधा, यानी कि अब आप PF निकालने में आपको कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही बहुत दिनों का अब आपको वेट करना पड़ेगा, अब आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है कहीं ना कहीं। ITR भरने की तारीख भी मैं डेफिनेटली अभी आपको बताऊंगा, तमाम सारी अपडेट हैं जो हुई हैं वो डेफिनेटली होले होले आप तक पहुंचेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल 9:05 हो गए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप आनंद को सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं 9837896896, स्टूडियो का नंबर वेरी वेरी सिंपल, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना बढ़िया वाला मैसेज, जो भी आप कहना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप मुझे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप 9837896896। वैसे मैंने एक सवाल भी पूछा है, क्या लगता है आपको कौन सा वाला वो देश है हमारा, कौन सी दुनिया का ऐसा वो कौन सा देश है जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या, जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 9837896

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

अरे जीत सिंह की आवाज बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय कर लिया लेडीज एंड जेंटलमैन। सच बताऊं इतने बढ़िया गाने सुन के तो सुबह ऑफकोर्स यार हर किसी की अल्टीमेट हो जाती मेरी आपकी और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी की। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ये थर्सडे की सुबह है, आप आनंद को सुन रहे हैं। 2 जुलाई की तारीख है, FM मुरादाबाद पे बने हुए हैं आप। स्टेशन ऑफ द नेशन ये वही है जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मैंने कहा जी गर्मा गर्म कड़क चाय अगर आपकी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने रेडियो अभी ट्यून इन किया है उन सभी का इस्तकबाल है जी। एक बिग शाउट आउट आप सभी के नाम। बहुत स्पेशल है यार आज का ये दिन और ऑफकोर्स हर दिन बहुत स्पेशल होता है। वीकेंड एकदम से आ जाता है, पता नहीं चल रहा यार कितनी तेजी से। मतलब अभी तो मंडे एंटर हुआ था, अभी देखो थर्सडे आ गया यार। अनबिलीवेबल फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ओ माई गॉड भाई इतना सारा ऐसे स्ट्रेस मिल जाता है ना जैसे वीकेंड आता है, मैं आपको क्या ही बताऊं यार। एनीवेज जो बच्चे स्कूल निकल चुके हैं या जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं या जो अभी आज नहीं गए कल जाने वाले हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब स्कूल वाली बातें करने में तो एक अलग ही अलग ही मजा, अलग ही वाइब है यार, अलग ही फील है यू नो स्कूल टाइम पे तो। अच्छा आपने एक बार नोटिस किया पहले का टाइम कितना अच्छा होता था यार। मतलब हम लोग जब यू नो वो छुपन छुपाई वाला खेल खेलते थे, मतलब कहीं भी छुप जाते थे भयंकर, कोई टेंशन ही नहीं लेनी थी, मतलब अपन ने कोई जजमेंट नहीं कुछ नहीं, जहां आपको मौका मिला वहां छिप गए, कोई टेंशन नहीं, मतलब लाइफ एकदम अनफिल्टर थी ना। आज की डेट में तो बड्डी बड्डी गाड़ी में बैठने के बाद भी ऐसा लगता है हाय यार मैं कौन सी वाली में बैठा हूँ, वो सामने वाला उस वाली में बैठा है, मेरे को उसमें बैठना चाहिए था यार। मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही होती है जबकि मतलब एक बचपन वाला टाइम था, मतलब उसकी बात ही लगती है। आप कहीं पे भी छिपन छुपाई में कहीं भी छिप रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, कुछ भी मतलब कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था यार, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क पैंदा ही नहीं था। लेकिन अभी आज के डेट में तो यार हर चीज में तो जजमेंट वाली बातें आ जाती हैं यार। मैंने ये पहन लिया तो वो क्या सोचेगा, मैंने ये खा लिया तो वो क्या होते, दुनिया भर की एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी टेंशन लेके घूम रहे हैं ना भाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ है यार, आप उसके मालिक हो, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, जो आपको पसंद है आप वो करो, बिकॉज टोटली राइट्स आपके होने चाहिए, है ना। वेल आगे बढ़ते हैं, आज नेशनल डिस्को डे मनाया जाता है। बड़े अजीबो गरीब डेज होते हैं यार। वेल एनीवे डिस्को इज ऑल्सो यू नो वेरी अलग वाला वाई वाला डे है, नो प्रॉब्लम। डिस्को तो चलो ठीक है, सभी को डिस्को डिस्को करना है नो डाउट, तो आज नेशनल डिस्को डे मनाया जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू डिस्को डिस्को, वो एक गाना मुझे डिस्को डिस्को याद आ रहा है, डिस्को डिस्को डिस्को कौन सा गाना था मैं खुद ही भूल गया हूँ भाई यार, बट तो कोई तो था यू नो बहुत बढ़िया गाना। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी मनाया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो ये तो कुछ आज के दिन से जुड़ी बातें जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंड फिलहाल मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आप लोग मुझे ऑफकोर्स पहुंचा रहे हैं, एंड आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। इतनी अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा व्हाट्सएप का भी जो है एक बड़ा अपडेट आया है, आपको बता दें व्हाट्सएप पे जो है लगातार व्हाट्सएप को लेके तमाम सारी बातें हो रही हैं। अभी एक फीचर यूज़र नेम का फीचर जो है उसके बारे में ढेर सारी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप के जरिए, तो इस पे डेफिनेटली हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। व्हाट्सएप का क्या बखेड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, यू नो आपको बताया ना व्हाट्सएप ने हाल ही में अपना एक नया यूज़र नेम फीचर लॉन्च किया है, और इस फीचर की मदद से अब लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी किसी दूसरे यूज़र से बात कर सकेंगे। एंड व्हाट्सएप ने हाल ही में अपना एक नया यूज़र नेम फीचर लॉन्च किया है, एंड इस फीचर की मदद से जो है अब आप जो है मतलब किसी भी दूसरे पर्सन से अपना बिना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना ही आप बात करोगे। अब कंपनी का कहना है कि भैया इस यूजर्स की मतलब इससे जो है यूजर्स की प्राइवेसी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार ने इस फीचर को लेकर जो है थोड़ी सी अलर्ट हो गई, थोड़ी सी सतर्क हो गई है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी चीज भी, इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ तो ऑनलाइन फ्रॉड फर्जी पहचाने वाले मामलों को लेकर बढ़ोतरी बताया जा रहा हो सकती है। बट एक्चुअली मुझे ऐसा कि देखो यार कोई भी चीज अगर आप आपके पास आपकी यूज के लिए आ रही तो मुझे लगता है पहले उसको अच्छे से उसकी वेरिफिकेशंस करो, बिना उसको जांच पड़ताल के आप इस बिल्कुल भी यूज मत करो, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो जब तक आप उसको अच्छे से ना पढ़ लो, जब तक आप उसको ना खुद समझ लो, तब तक किसी और को भी फॉरवर्ड मत करो, मेरा ऐसा मानना है। व्हाट्सएप का ये फीचर टेलीग्राम की तरह काम करता है। पहले किसी नए शख्स से व्हाट्सएप पर आप बात करने के लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी होता था, जैसे हम किसी से बात करेंगे तो हमारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर होना बहुत ज़रूरी है, बट अब यूज़र सिर्फ अपने यूज़र नेम के जरिए भी बातचीत शुरू कर सकता है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका मोबाइल नंबर सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखेगा। इनफैक्ट कंपनी का कहना है कि इससे प्राइवेसी बेहतर होगी और अनजान लोगों के साथ नंबर शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे तो लगता है आई थिंक ठीक ही है, हर किसी के साथ हम अपना नंबर नहीं शेयर कर सकते यार, हर किसी को अपनी एक प्राइवेसी चाहिए होती है। यूजर नेम अगर एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है जिसके थ्रू आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं बिना अपने नंबर शेयर किए, सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग है, तो अच्छी चीज है। वेल मतलब मुझे ऐसा लगता है। वेल आपको क्या लगता है आप भी मुझे जरूर बताइएगा।
और रिसेंटली अक्षय कुमार पाजी की फिल्म रिलीज हुई वेलकम टू द जंगल, जिसको लेकर बड़ी सारी बातें हो रही है। चार दिनों में कितने करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, कैन यू इमेजिन एवरीबॉडी। अभी बताता हूँ, लौट कर आऊंगा तो 9:18 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, इस पर भी बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो यार, हम तो सारी चीजों पर बात करते हैं क्योंकि ये आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन है, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आगे बढ़ते हुए एक बढ़िया सा गाना आपके लिए निकाल रहा हूँ आपके स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ आप सुनते हैं आरजे आनंद को। मैं कह रहा हूँ पाजी, जरा बता दो कौन से स्टेशन है ये। पाजी शो कौन सा है और गाना कौन सा आ रहा है? श्रेया घोषाल की आवाज में आ रहा है, बहुत ही अच्छा गाना आ रहा है, इसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। एंड श्रेया मैम गाती इतना प्यारा है यार, इनकी आवाज सुन के मजा ही आ जाता है। बहुत ही अच्छा गाना निकल गया है, यह है थर्सडे की सुबह, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आनंद के साथ। कोई बात रिपीट नहीं करने, अब मैंने नहीं करनी यार रिपीट, नहीं करनी मैंने रिपीट, आप गाने सुनो बस, बढ़िया से है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप मैसेज कर सकते हो 1-9837-896-896 पर। गाना बहुत ही प्यारा है, आपको सुन के मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ यार। अच्छा रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लो जरा,

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070553।
7: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
8: अरे आनंद इज बैक।

लक्ष्मी बॉम्ब से भी आपने एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा गाना। बुर्जफा लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद के साथ हैं आप, वेलकम बैक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने आप सुनते हैं एवरी मॉर्निंग, कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, इसीलिए कोशिश होती है कि अच्छे गानों से आपकी मॉर्निंग को थोड़ा सुपर डुपर लाउड बनाया जाए। बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, अभी मुझे एक फोन आया है यहाँ पे श्रुति मैम का, जिन्होंने मुझे बताया आनंद जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका शो, थैंक यू सो मच श्रुति जी, आप अपने ऑफिस जा रही हैं, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही फुल ऑन वाइक के साथ निकलिए, काशीपुर रोड पे आप हैं, सो बहुत ही बढ़िया। एंड एक और मुझे कॉल आया एक भाई साहब का, एंड ऐसे बहुत सारी कॉल्स लगातार बैक टू बैक आप लोग के आते हैं ना जी, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग फोन शोन करते हो यार, कभी कभी फोन शोन कर लिया करो यार। अभी रिसेंटली अक्षय कुमार पाजी की फिल्म रिलीज हुई थी भाई साहब वेलकम टू द जंगल, जिसको लेकर वो यहाँ पर भी आए थे, एंड बहुत ही कमाल के स्टार कास्ट, बहुत ही बढ़िया फिल्म, चार दिनों में 106 करोड़ की कमाई कर चुकी है मूवी। एंड आपको बता दें भैया, बहुत ही कॉमेडी और पीक फिल्म अक्षय पाजी करते हैं, एंड अगर मैं आपको बात बताऊँ वेलकम पहले वाली, तो वो तो यार थी बहुत ही अल्टीमेट, कटरीना कैफ के साथ बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, एंड बाकी स्टार कास्ट भी बहुत ही अल्टीमेट थी नो डाउट, एंड इस बार की भी स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है। और अक्षय कुमार की मल्टी स्टार फिल्म है वेलकम टू द जंगल, जिसमें जो है कमाल स्टार कास्ट है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी शुरुआत के बाद पहले सोमवार को जो है अच्छी खासी इसकी परीक्षा गुजरी, आपको बताते बीते दिनों में अच्छी खासा कलेक्शन कर चुकी है मूवी, एंड जो लोग देख के आ रहे हैं उनके रिव्यूज सुनने के बाद लग रहा है कि हाँ यार ठीक ठाक ये मूवी देख लेनी चाहिए, वेल जो लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, और जो लोग देख चुके हैं उनसे बेटर तो फिर कोई और रिव्यू शेयर कर ही नहीं सकता है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो अभी आपको बता दें, यहाँ पासपोर्ट बनवाना थोड़ा सा महंगा हो गया है, पासपोर्ट अगर आप बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें भैया 36 पेज का पासपोर्ट 1500 से 2500 तक बनेगा तत्काल पासपोर्ट, आपको बता दें 3500 से 5000 के बीच पहुंचेगा। वहीं 60 पेज का पासपोर्ट जो है उसकी फीस 6000 तक हो गई है, 1 जुलाई से जो है ये नए रूल्स लागू हो गए हैं। ITR भरने की तारीख मैं आपको बता देता हूं, तो भैया ITR भरने की जो लास्ट तारीख है वो 31 जुलाई है, तो भैया अगर आप जॉब में हैं, आप वर्किंग हैं, तो बिल्कुल भी आपने देर शेयर नहीं करनी है, इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो आप कोशिश करिए कि समय पे ही अपना ITR जो है भर दें, बाद में फिर दिक्कत होती है उससे कोई फायदा नहीं है, पहले भर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार। अच्छा पासपोर्ट को लेकर भी एक नई इन्फॉर्मेशन आई है कि भैया पासपोर्ट जो है वो नागरिकता की अंतिम प्रमाण माना, और सरकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल को लेकर जो है काफ़ी मतलब जो है इसकी बढ़त हो रही है, मतलब इसको बढ़ाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए ऐसा बताया जाता है, बट एक्चुअली ये जो पासवर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास है ना तो उसकी अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चाहे हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा पैन कार्ड हो गया, हमारे जितने भी ज़रूरी दस्तावेज जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो इनको ज़रूर संभाल कर लेके जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है।

चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जो है यहाँ पर हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आज हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा देश है। आप मुझे बता सकते हैं अभी भी व्हाट्सएप करके, ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेजेस के लिए। 9:31 हो गए स्टेशन क्लॉक में, यार घड़ी पे नजरें रखना बहुत जरूरी है बाबू शाह, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो घड़ी पे नजरें रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। हेलो हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मुझे मैसेज आया है यहाँ पे शोभा जी का, इन्होंने लिखा है, आनंद जी सुबह सुबह बहुत ही कमाल करते हैं आप, अच्छे अच्छे गानों के साथ अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, बहुत ही मजेदार लगता है आपका प्रोग्राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, यही तो चाहिए यार हमें कि बस हमें जो है सुबह सुबह अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, दिन बन जाए। अच्छा मेरे पास मैसेज सही वाला पहुंच गया है यहाँ पर। हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? टीना कुंदनपुर से जुड़ी है एकदम राइट आंसर के साथ, इन्होंने बता दिया है कौन सा वाला देश है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। टीना थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, मैसेज पहुंच गया है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? स्वराज सिंह जी सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ राइट आंसर के साथ आप जुड़े हैं। नंबर के 4 डिजिट है 9772। मयंक शर्मा पीतल नगरी से जुड़ चुके हैं। राम राम आनंद जी, जी आपको भी जय श्री राम। जो लोग अपनी गड्डी शड्डी में है ना, जो आपके पास वाले भैया हैं, आप इनको फोन पकड़ाओ, ये जिम्मेदारी इनकी है कि ये मुझे मैसेज करें। आप अपनी गाड़ी पे जो है फोकस करो, गाड़ी चलाओ और भैया जरा वॉल्यूम बढ़ाओ यार, अच्छे गाने निकाल रहा हूँ मैं। अगला मैसेज मेरे पास पहुंच गया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, आप कैसे हैं? मुंबई से मेरे पास मैसेज पहुंचा है, नाम इन्होंने गायब कर दिया है। राधिका मेरे को सही जवाब पहुंचा रही है आज की मॉर्निंग। हाय हाय, प्रेरणा जी जुड़ चुकी है आज की

0: अब क्या तोड़ दिया नालायक? सॉरी
1: नलायक बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
3: मॉर्निंग। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन।
7: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

अरिजीत सिंह की आवाज एंजॉय कर रहे थे अभी आप मुस्कुराने की वजह। एंड ऑफ कोर्स मुस्कुराने की वजह आप सभी हो यार, इतने प्यारे लिसनर्स हैं मेरे, इतने प्यारे हमारे श्रोता हैं। अब उनके बिना तो मुस्कुराहट की सुबह जो है वो अमेजिंग वाली तो हो ही नहीं पाती मॉर्निंग। जब तक रेडियो पे आपसे बातचीत ना हो ना तब तक वो मजा ही नहीं आता यार। तो मुस्कुराने की वजह तो आप लोग हैं, स्टूडियो है, माइक है, मेरे प्यारे लिसनर हैं, क्योंकि इस पार से उस पार जो कनेक्शन है वो दिल से दिल तक का है ना। तो ये जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छा है यार। माइक से रेडियो तक का सफर इट्स नॉट इजी, थोड़ा सा मुश्किल है बट बहुत ही मजेदार भी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्सडे की सुबह 2 जुलाई हो गई है आज 2026 और बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग्स मेरे को आ रही है। विजय ब्यूटी सेंटर से भरत नागपाल जी जुड़ गए हमारे साथ, इन्होंने भी दे दिया एकदम सही जवाब, बहुत ही बढ़िया जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। ओ यार मैं भारी भरकम आवाज भी बात बोल सकता हूँ यार, मैं भारी भरकम आवाज में ही बात कर सकता हूँ भाई, मेरे को बहुत सारी आवाजें आती है यार, आजकल मैं प्रैक्टिस में हूँ। नहीं आई एम जस्ट करिंग यार, ओरिजिनल वॉइस में बात करो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही प्रदेश वासियों के नाम एक योगी जी की पाती उन्होंने लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने बारिश के मौसम से जुड़े कई संदेश जो है साझा किए, जैसे उनका पहला जो पाती है, जो उनका पहला मैसेज है, एक पेड़ माँ के नाम। उन्होंने लिखा है इस अभियान के अंतर्गत प्रति एक परिवार को कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए एंड ये अब जो मानसून आएगा इसमें तो स्पेशली, और ये तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने दूसरा आग्रह किया है कि जल है तो है, इस भाव के साथ ही जो है जन भागीदारी के माध्यम से जो आपके जब बारिश हो तो उस पानी को आपने सेव करना है, बहुत जरूरी है, और उस पानी को जो है आपने इस्तेमाल करना है, उस पानी को आपने यूज करना है, मतलब उस पानी को रीस्टोर करके आपको इस्तेमाल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, है ना। और तीसरा आग्रह वो करते हैं कि भैया जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए उन्होंने बोला है कि भैया आप जो है कृषि व्यवस्थाओं में एक नई मजबूती आपको जो है मिलने वाली है, जो आप लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं उसको और बढ़ावा देना है ताकि हमारे समाज में और प्रदेश में स्वस्थ चीजों का जो है वो निर्माण हो सके। और स्कूल चलो अभियान का जो सेकंड चैप्टर है वो भी शुरू हो गया है। कल बहुत सारे बच्चे स्कूल पहुंचे, बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ शेयर किए कि भैया उन्होंने अपनी छुट्टियों को कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ कहाँ वो घूमने गए, एंड बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत ही अच्छा लगा यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब स्कूल खुलते हैं ना छुट्टियों के बाद, सच बता रहा हूँ बड़ा मजा आता है यार। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मैंने आज आपसे पूछा था, नॉर्मली आपके दिमाग का आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहा था कि जरा देखने कितने लोगों को पता है कि भैया अपने दुनिया का कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। एवरीबडी पीपल रिस्पॉन्ड मी, रिप्लाई मी कि भैया आनंद जी हम आपको बताना चाहते हैं सही जवाब है अपना इंडिया। वाह वाह वाह, कितने प्राउडली हम बोल रहे हैं ना भारत भारत भारत यार, कि हमारे भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हमारे इंडिया की जो जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है, इंडिया है। वैसे क्या लगता है, क्या ये सच में सही है? 9:44 हो गए हैं, हम इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी तो फिर हम भाग जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को हम खराब करके भागें। अच्छी बातें करना हमारा काम है और इसी बात के साथ अच्छे गाने चलाना भी हमारा काम है ना। आपको बता दें रिसेंटली एक रिसर्च हुई जिसमें पता लगा है जो लोग खाली आटे की रोटी खाते हैं वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये क्या क्या है ये मात्रा? मैं भी तो उसी आटे की रोटी खाता हूँ, आप भी खाते हैं, लेकिन अगर उसमें आप एक चीज़ को ऐड कर दोगे, अगर आप ये चीज़ ऐड करोगे ना अपनी रोटी में, मतलब अपने आटे में, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। ऐसा मैंने एक रिसर्च कह रही है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको अपने आटे में इस्तेमाल करनी है लेडीज़, थोड़ी देर में बताते हैं। भाई साहब आप भी, आप मुझे बताएं, आप भी बहुत अच्छे शेफ हो नो डाउट, आप बढ़िया बनाते हो खाना, तो आपके लिए भी टिप अच्छी हो सकती है यार। डांस पे सुनिधि चौहान की आवाज, डांस पे चांस तो आपने मारना है मेरे कड़क क्वेश्चन पे, यानी कि एक चुटकी सॉन्ग थोड़ी देर में लेकर हाजिर होता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आप देंगे उसका सही जवाब तो आप बन सकते हैं आज मेरे शो की सुपरस्टार। अगर आप बनना चाहते हैं सुपरस्टार तो आपको एक चुटकी सॉन्ग में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे सुनते जाना है और सुनते ही जाना है, कभी भी किसी भी वक्त बज सकता है मेरा एक चुटकी सॉन्ग। अगर आप चाहते हैं कि भैया एक चुटकी सॉन्ग में आप पार्टिसिपेट करें तो बस ट्यून इन रहिए मेरे साथ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

वेलकम बैक ही वंस अगेन आनंद के साथ हैं आप दोस्तों। अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें पता लगा कि हम जो नॉर्मल आटे की रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की, वो बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां वो धीरे धीरे हमें देती है, हमें पता नहीं चल रहा होता है। और बताया जाता है कि भैया जब मैंने अभी ये पढ़ा तो मुझे इसमें एक्चुअली मुझे भी बिलीव नहीं हो कि रेसिपी हो सकता है क्या, पर बताया जा रहा है कि दोस्तों सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाना, मतलब ऐसे को इसमें कोई बुराई नहीं है, सदियों से ये हम खाते आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी जो है, अगर मैं बात करूं आटे की रोटी को, अगर इसकी और ज्यादा आपको पौष्टिकता बढ़ानी है, अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपको प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व अगर आपको मिले, तो आप जो अपने आटे की रोटी बनाते हैं अगर उसी आटे में आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर देते हैं, बेसन, एग्जैक्टली सही सुन रहे हैं आप, अगर आप बेसन ऐड कर देते हैं उस आटे में, तो उसकी जब आप रोटी बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगी। इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियों से, मोटापे से और भी बहुत सारी कई बीमारियों से आपको ये बचा सकती है। तो ये रोटी आपके लिए बहुत ज्यादा डबल हेल्दी हो जाएगी। तो अगर आप अपना जो आटा करते हैं रोटी के लिए तैयार, उसमें अगर आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर दोगे तो आपकी रोटियां भी बहुत बढ़िया बनेंगी, प्लस ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो यार, मैं ऐसी काम की चीजें सर्च करता रहता हूँ, मुझे पता है मेरे लिसनर के लिए जो चीज जरूरी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई। तो मैं सोचता हूँ कि जितना हो सकता है ना अच्छी चीजें लेकर आऊँ आपके लिसनर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज यू आर माई फैमिली यार। मम्मी को पसंद है, मम्मी को पता है, मम्मी सब जानती है। अरे पता है यार दीदी, डैड को भी पता लग गया है ना आज कि देखो अंकल जी, अगर आप आटे में बेसन डालते हैं थोड़ा सा, तो ये आपकी रोटी को डबल हेल्दी बना देता है। मम्मी को पता है दीदी, अब मत बोलना। चलो जी, फिलहाल एक चुटकी सॉन्ग आने वाला है, अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो आप बन सकते हैं मेरे शो के आज के सुपर स्टार, ठीक है। तो भैया अब अगली बार अगर आप रोटी खाएं, रोटी बनाने जाएं भाभी जी, तो उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दोगे तो आपकी रोटी का डबल मजा आ जाएगा आपको बनाने में, वो खाने में भी टेस्टी लगेगी। फिलहाल नीतू जी जुड़ गई मेरे साथ, लिखती हैं, हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, नीतू सिंह लाइन पार से, आज काफी दिनों के बाद मैं FM सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर, मॉर्निंग बिंदास हो गई है, थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसी वजह से रेडियो नहीं सुन पा रही थी, बट फाइनली सच में जुलाई चालू हो गया है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रेडियो सुनने में मजा आ रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम शी इज बैक, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे पास बनारस से मोहसिन साहब जुड़े हैं, बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया है, थोड़ी देर में शांति से पढ़ूंगा। एक वॉइस नोट भी मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, वॉइस नोट जरूर मैं प्ले करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये जो मैसेज आया इसको पढ़ लेता हूँ। हेलो हेलो आनंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग यार, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आपका सवाल नहीं आया, बिल्कुल मेरा सवाल आने वाला है, बस मैं यू गया और यू सवाल लेकर आता हूँ।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: बिल्कुल जी बिंदास मॉर्निंग में, अब बिंदास बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन बिंदास यहाँ पर बातचीतों के साथ साथ जो है आपके मैसेज भी बिंदास आ रहे हैं, और मेरे पास आपके लिए बिंदास क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मतलब बिंदास वाला एक चुटकी सॉन्ग लेकर आया हूँ जिसको आपने मेरे को आंसर करना है आज की सुबह। बहुत ही प्यारा और अल्टीमेट सॉन्ग है ये, एंड इसको आपने आइडेंटिफाई करना है, बस एक चुटकी सॉन्ग बजेगा उसको आपने पकड़ना है। मुझे पता है मेरे जो लिसनर्स हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी नॉलेज अच्छी खासी है बॉलीवुड को लेकर, आई एम श्योर वो पहचान लेंगे। सो आज का मेरा जो कड़क क्वेश्चन है जो आपने आइडेंटिफाई करना है एक चुटकी सॉन्ग में, वो कौन सा गाना बज रहा है, बस आपने यही मुझे बताना है, जरा पहचानो। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा है ये सॉन्ग, आई एम श्योर आप इसको पहचान लोगे। सो आप क्या करोगे, बस इस गाने को जैसे सुनोगे मुझे तुरंत व्हाट्सएप करोगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। ठीक है, सो 3, 2, 1 गो स्टार्ट, जरा बताओ कौन सा गाना है ये। व्हाट्सएप करना है आपने मेरे को, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर है 9837896896। कौन सा एक चुटकी सॉन्ग है, ये गाना है, यही आपने मेरे को बताना है। चलो जी अभी इतना पैसा में इतना ही देंगे हम आपको बाबूजी, अगर आपने पहचान लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है पाजी, मेरे नंबर पे, अपने पे मत भेज दियो गलती से। 9837896896 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है जी, व्हाट्सएप करना यार।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपॉर्टेंट बात बताने आया था, जरा रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ, वेरी गुड। सुबह के 10 बज चुके हैं यार।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
1: ये थर्सडे की सुबह है, आप आनंद के साथ हैं और आज गुरुवार का ये दिन, जिधर 2 जुलाई हो गई बाबा, पता नहीं चल रहा है अपन को, ना आपको ना मेरे को। मौसम सच में औसम हो रखा है आज। कल शाम को थोड़ी सी धूप हुई थी रात में, ऐसे सड़ी गर्मी वाली फील आई थी, लेकिन सुबह सुबह जो मौसम था बहुत ही औसम था। अभी फिलहाल आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, गाना अच्छा है, इसको एंजॉय करेंगे आप। ढेर सारे मैसेज जो आए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बताता हूँ क्या है आज का सही वाला आंसर।

0: क्या बात है यार, मैं इस गाने में इतना ज्यादा मशरूफ हो गया था, इतना मतलब आई मीन खो गया था मैं इस गाने के अंदर। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मेरी टर्न आ गई है। सच में यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही अल्टीमेट था। अमेजिंग अमेजिंग यार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं यार सुखबीर भाजी, मतलब सीरियसली यार इतना अच्छा गाते हो ना आप, मजा आ जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने का टमे हो गया मेरा, अगर अब जाएगा नहीं तो वापस आएगा कैसे? मेरा जाने का टमे तो हो रहा है लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, जाऊंगा नहीं तो फिर आऊंगा कैसे? अभी ना, अभी इधर मैं आपसे एक सवाल कर रहा था। मेरा सवाल था कि आपको, मेरे को बताना, पहले सीरियस होकर बात करता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नहीं ऐसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको मुझे करना था, कौन सा गाना बज रहा था ये आपको मुझे बताना था। ये कौन सा गाना, ये आइडेंटिफाई आपको करना था। और सबने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, जोरदार तालियां हैं आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आप सच में बहुत ही दिल से रेडियो सुनते हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ जो है हमारे प्रोग्राम को प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी का हम जो है आपका थैंक यू करना चाहते हैं, वड्डा वाला थैंक यू यार। और मुझे सबसे पहले सही जवाब यहाँ पर दिया था लक्ष्मी जी ने, कहाँ से मैसेज करती हैं जरा इनका एड्रेस मैं पढ़ लेता हूँ। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? ये मुझे मैसेज पहुँचा रही थी यहाँ पर, किधर से मैसेज आया रे बाबा इनका, लाइन पार से। ओके, लाइन पार माता मंदिर से इनका मैसेज आया है एंड इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। जरा दोबारा कहिए सर, एब्सोल्युटली यही था राइट आंसर, प्यार का सही जवाब पकड़ लिया यार आप लोगों ने, थैंक यू सो मच यार। लक्ष्मी जी बहुत बहुत बधाई हो, आज की सुबह आप जीतती हैं ढेर सारी तालियां और बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। लक्ष्मी जी के साथ मुझे सही जवाब पहुंचाया था प्रेरणा जी ने, प्रेरणा जी थैंक यू सो मच, आपसे बहुत प्रेरणा मिली मेरे को, सही जवाब आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुरेश जी जुड़े थे प्रेम नगर से एंड हमारे पास मैसेज पहुंचा था दर्पण भाई का, दर्पण भाई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार। टीना सही जवाब दे रही थी, श्रेया घोषाल की आवाज में गाना था, बिल्कुल टीना थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। राधे राधे पहुंचाती हैं अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से, बबली अंजान साथ में गीता कश्यप जुड़ते हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, हेलो आनंद सर गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं? हमारे पापा आपके प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जब आप प्रोग्राम देकर चले जाते हैं तो पूरा दिन आपका ही जिक्र रहता है और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया आनंद जी ने, जब भी रेडियो पर आते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है, आपके बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा है और आनंद का जो धारा मतलब प्रभाव एकदम कमाल का आप बोलते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं, जिस दिन आप प्रोग्राम नहीं आते हैं देने उस दिन तो पूछते ही रहते हैं कि आज आनंद जी क्यों नहीं आए, तो पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। शबीना खान रहमत नगर से मुझे मैसेज कर रहे हैं, शबीना जी आपको और आपके पापा को दिल से थैंक यू, थैंक यू सो मच, इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है, थैंक यू सो मच। रणवीर सिंह जी मुझे लिखते हैं, हेलो आनंद सर गुड मॉर्निंग, ये सुबह जितनी खूबसूरत है ईश्वर से प्रार्थना है कि उतनी खूबसूरत आपकी लाइफ और आपका एफएम हो जाए, क्या बात है, और इसमें सुनने वालों का लाइफ हो जाए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ये हमारे साथ मोहसिन अंसारी बनारस से जुड़े हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ, ये विजय ब्यूटी सेंटर से भरत जी जुड़ चुके हैं वंस अगेन, थैंक यू भरत जी एंड एब्सोल्युटली सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वॉइस नोट पहुंचा है भूपी जी का, जरा सुनते हैं।
1: नमस्कार नमस्कार राधे राधे राधे, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और प्लेटफॉर्म है एफएम मुरादाबाद 89.6 जो है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। आज का सुविचार, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाएं उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। नमस्कार राधे राधे, भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज बिंदास वॉइस नोट जो सुनाई देंगे सारे शहर को, सारे देश को और हो सकता है सारे संसार को। राधे राधे, नंबर 98-378-96-896। नमस्कार राधे राधे,
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपको भी राधे राधे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपी जी डेली आप एक वॉइस नोट करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये वॉइस नोट जो आप भेजते हो ना इससे बहुत ही बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया आपको लोग जान रहे हैं अच्छे से। चलो गाइज फिलहाल के लिए मैं अब बोलूंगा आपको बाय। विकी सागर जुड़ गए, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। रिहाना जुड़ चुकी है गुड मॉर्निंग पहुंचा रही है। चमन लाल साहब जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सही जवाब के साथ सहारनपुर से जोन रोजी पल बिलीस बबलू सैनी दुर्गेश सैनी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। चलो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट मैसेज आ रहा हूँ, वो भी छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं पढ़ के जा रहा हूँ, सॉरी पढ़ के जा रहा हूँ। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? ये गाना था सुन रहा है ना खुदा मेरी धड़कने, प्यार से प्यार का वादा रहा। थैंक यू नरगिस जी। मैसेज पहुंच रहा है अमरोहा से, नेहा जी मुझे लिखती है, नमस्ते भैया जी आप कैसे हैं? आपने जो सॉन्ग प्ले किया था वो था ऑलराइट, थैंक यू सो मच बताने के लिए, वादा रहा प्यार से प्यार का। हेलो आनंद जी आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। गरिमा, गरिमा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, साथ में लिखते हैं हेलो हाय नमस्ते जी कैसे हालचाल हैं। ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है स्वराज सिंह का, लिखते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है, वो अपन का इंडिया ही है सर। हाय हाय सबको बताया यार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे, कल सुबह फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात, ढेर सारी नई बातें होंगी, नई जानकारियां होंगी, नए थॉट्स होंगे, नए विचार होंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन होंगी और नए नए गाने भी होंगे, है ना? तो बस आप ट्यून इन रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिल जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आरजे आनंद के नाम से मिल जाता हूँ, एंड आप हमें हमारे ऑफिशियल आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम आपको मिलेंगे। हमारा फेसबुक ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, द सेम आईडी इन इंस्टाग्राम, सो प्लीज आप जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, वहां भी हम आपको नई नई चीजों के साथ मिलते रहते हैं। चलिए फिलहाल के लिए छोड़ के जा रहा हूँ एक अच्छा गाना, अगली कंपनी खुशी के साथ एंजॉय कीजिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए, और हाँ कोशिश करिए यार कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ सके, मुस्कान आ सके, है ना? बस अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छा अच्छा सोचिए लाइफ में, अच्छा अच्छा जो है फील करते जाइए, सब बढ़िया होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन टुमारो मॉर्निंग।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: लेकिन सोनिया
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
0: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

एक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। गला करने तो हम भी आ गए हैं, मिठिया मिठिया आप दे नाल। हां जी, मैं क्या जी, की हाल चाल दोस्तों, मैनू सब बढ़िया है ना। उम्मीद तो यही करते हैं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और ध्यान से रेडियो भी सुन रहे हैं। कैसे हाल चाल है दोस्तों, बताइए बताइए, मेरा इंतजार कर रहे थे। ओहो, आपने पुकारा और हम चले आए। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। थर्सडे की मॉर्निंग है, बहुत ही खूबसूरत सी, और तारीख है 2/7। जी हाँ, आपको मेरा साथ देना है। करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी एक्टिविटीज। आप बने रहिए, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आप मुझे अपने मैसेज भी यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है, कोई हम मुश्किल वाला टास्क आपको नहीं दे रहे हैं। आपको क्या करना है, अभी जो फोन आपके हाथों में है, हाँ, उसी फोन में हमारा नंबर आपको डायल करना है 9837896896। इस पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ, अपने पति के साथ, जी हाँ, जहाँ से भी आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं राइट नाउ। और कोई प्यारा सा थॉट या कोई बात जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हो, लाखों श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हो, तो फटाफट से दिल खोल कर आप मैसेज हमें पहुँचाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और सुनिएगा एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह आप सभी के लिए, एंड स्पेशली हमारी जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं उनके लिए है, क्योंकि जब वो सूट पहनती है ना तो बहुत ही ज़्यादा सोहनी लगती हैं। तो मैंने कहा चलिए, अब इतनी तारीफ सुबह सुबह हमने कर ही दी है, तो ये ट्रैक भी मैम के लिए प्ले कर ही देते हैं। तो इन्जॉय कीजिएगा ये ब्यूटीफुल ट्रैक। बस मैं लौट कर आती हूँ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाँ जी दोस्तों, खूबसूरत गानों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन खुशी यहाँ पर फिर से हाजिर हो गई है। इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है, देनी है, इतनी सारी जानकारियाँ हमारे पास हैं, हम लेकर आप सभी के लिए लेकर आए दोस्तों। आप सभी का अगेन आरजी खुशी वेलकम करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:30। दोस्तों कहा जाता है कि जब मन में श्रद्धा, अहिंसा और सत्य का प्रकाश होता है तब जीवन की राह आसान हो जाती है। आज का दिन हमें इन्हीं मूल्यों की याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आज भगवान आदिनाथ जी के गर्भ कल्याण दिवस का पावन अवसर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ जी को मानव समाज को जीवन जीने की सही दिशा दिखाने वाले मानव माना जाता है। उनके जीवन का संदेश है अहिंसा, सत्य, समय, करुणा और आत्मशुद्ध। जी हाँ दोस्तों, गर्व कल्याण वह शुभ क्षण माना जाता है जब किसी तीर्थकर के पृथ्वी पर अवतरण का दिव्य संकेत मिलता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि शुभ विचारों, पवित्रता और मानव कल्याण का प्रतीक है। और दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे अच्छे विचार होते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। तो दोस्तों, आज आप एक छोटा सा संकल्प लें, किसी का दिल ना दुखाएं, प्रेम से बोलें और जहां तक हो सके किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। और हमारे श्रोताओं के यहाँ पर लगातार बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। मुझे पता है आप भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं कि खुशी जी कब हमारा मैसेज शामिल करेंगी। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं।

और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाती है आज की सुबह पूजा जी विकास नगर से। क्या बात है पूजा, आज तो सबसे पहले आपने अपना मैसेज पहुँचा दिया है। पूजा जी कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं हमें इंतजार होता है आपका एंड अच्छा लगता है जब आप आती हैं। प्यारी प्यारी बातें तो आप करती ही हैं लेकिन गाने भी बहुत प्यारे चलाती हैं। देखिए दोस्तों, गाने तो आपके पसंद के होते हैं, बातें हमारी होती हैं, गाने आपके होते हैं, लेकिन आज मैं तो बातें करूंगी लेकिन आपको भी करनी है, ठीक है? आपको भी अपना मैसेज हमें पहुंचाना है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं धनूरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी कहते हैं, आरजे खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर दुर्गेश सैनी जी का, पीतल नगरी रोड कल्याणपुर मुरादाबाद से, और इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हवाओं ने ये कहा। हवाओं ने क्या कहा है बताओ हमें आप। एंड अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? फरजाना जी का मैसेज हमारे पास आया है रामपुर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है भूपी शर्मा जी का, नगर पंचायत बागवाड़ा से, एंड इन्होंने हमें कहा है राधे राधे खुशी जी, आपको भी राधे राधे। कहते हैं व्यवहार अक्सर ज्ञान से बड़ा होता है, व्यवहार अक्सर ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन की कई परिस्थितियां होती हैं जहां ज्ञान विफल हो जाता है लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल सकता है। एग्जैक्टली राइट सर, थैंक यू, आपने अपना मैसेज हमें पहुँचाया है। और इन्होंने भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, माँ मैं तेरा लाडला, एंड आई रिमेम्बर ये ट्रैक मैंने भी सुना है, बहुत ही खूबसूरत है, तो सुनवाएंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज पहुँचाइएगा। कल बारिश का आपने आनंद लिया, कैसा लगा आपको? हाँ जी बताइए। और बाद में शाम को धूप भी निकल गई थी, वैसे लगा था आपको कि धूप निकल जाएगी? सुबह का वेदर देखकर लग नहीं रहा था कि धूप निकल जाएगी, बट शाम को मौसम अच्छा हो गया था, खुल गया था। एंड अभी चलो कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे फिर से। आप कहीं मचाइए, अपने संदेशों को हमें पहुंचाइएगा, नंबर मैं आपको फिर से बता देती हूं ताकि आप आराम से मुझे मैसेज पहुंचा सकें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैं आपके लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, बस आप यूं ही मुस्कुराते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जो ट्रैक मैंने यहाँ पर अभी प्ले करने के डिसाइड किया है वो है फ्रॉम द मूवी बैंड बाजा बारात से रणवीर सिंह, साथ में अनुष्का शर्मा जी, सुनिधि चौहान जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में ट्रैक है। जब आप सुनेंगे ना तो सुनते ही रह जाएंगे। और हाँ, अगर अभी आप कार में बैठे हैं ना तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा क्योंकि गाना बहुत प्यारा है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
6: कॉल 8826213131
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा
8: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी
9: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, आपसे प्यार है तभी तो हम चले आते हैं ना एवरी मॉर्निंग आप सभी से मुलाकात करने, बातचीत करने के लिए और आपके साथ, जी हाँ, आपके दिन को अमेजिंग बनाने के लिए, आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए हम एवरी डे आपके साथ कनेक्ट होते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ एंड ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। और दोस्तों, इस प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी दुर्गे सैनी जी ने, टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना। सुबह सुबह इस तरह के जब गाने सुनते हैं ना, तो कुछ हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। हाँ, और दोस्तों, अभी यहाँ पर बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हैं। आज की सुबह मैं एक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। आप सब तैयार हैं ना? ओके, तो आप हमारा ही इंतजार कर रहे थे कि खुशी जी कब आएंगी और हम उनके सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मॉर्निंग सवाल है बहुत ही स्पेशल है एंड बहुत सिंपल सा है। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक नई मुस्कान लेकर आते हैं सूर्यदेव। जी हाँ, उनकी पहली सुनहरी किरण पूरे भारत को रोशन करने निकल पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में सबसे पहले सूर्यदेव अपनी पहली किरण कहाँ बिखेरते हैं? यानी भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है? अगर आपको आंसर पता है तो बिना किसी देरी के आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। देखते हैं आज कौन बनता है सनराइज चैंपियन हमारे शो का। आप अपना सही जवाब हमें पहुंचाएगा अपने फेवरेट गानों के साथ। नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। जी हाँ दोस्तों, जो हर सुबह नई उम्मीद, नई किरण के साथ एक नई शुरुआत और नई मुस्कान लेकर आते हैं सूर्यदेव, उनकी पहली सुनहरी किरण पूरे भारत को रोशन करने निकल पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर भारत में सबसे पहले सूर्यदेव अपनी पहली किरण कहाँ बिखेरते हैं? भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है? आपको अगर आंसर पता है तो फटाफट से बिना किसी देरी के आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर मैं अगेन आपको बताती हूँ 9837896896। हम भी सब्जी से इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी से अपना जवाब पहुंचाइएगा। और यहाँ पर हमारे पास और संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज पहुँचाती हैं नीतू सिंह जी लाइन पार से, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ नीतू जी, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छी होंगी। एंड ये कह रही हैं कि धूप निकल रही है तो गर्मी है, बट मौसम अभी बहुत अच्छा बना हुआ है और आपको सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी मिलती है। ओ हो, खुशी का सुनकर खुशी तो मिलनी चाहिए ना नीतू जी, देखिए कैसे मुस्कुरा रही हैं आप। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है किशोर कुमार जी की आवाज में। तो बिल्कुल मैम, ये गाना, जिस गाने की रिक्वेस्ट आपने भेजी है, चल कहीं दूर निकल जाएं, हम सुनवाएंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा आप। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग आरजे जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं और सर ने भी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे इसको प्ले करने का। सर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बबली अंजान जी का, साथ में गीता कश्यप हैं, खुशी मैम को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे गुफ्तगु और जो आज की सुबह मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब आप मुझे पहुँचाइए। हम भी तो देखें हमारे श्रोता कितना जानते हैं। वैसे मुझे पता है आप आंसर दे पाओगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।
6: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
7: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
6: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
7: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
6: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
7: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
6: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
7: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
6: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
7: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
6: EKCC साख से समृद्धि।
7: नियम और शर्तें लागू।

हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुहाने से सफर में आपका वेलकम है। एफएम मुरादाबाद 89.6 पर शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला, जहां पर इन्फॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है और बहुत सारा फन भी होता है। दोस्तों, मैंने आज की सुबह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे और हमारे पास बहुत सारे आंसर भी आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। वैसे सच बताएं दोस्तों, मुझे यकीन था आप पर, मुझे पूरा विश्वास था कि आप अपने जवाब पहुंचाओगे और वो भी सही सही, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं ना बहुत एक्टिव हैं एंड इंटेलिजेंट भी हैं। हाय, इतना शर्माओ मत, मैंने तारीफ की है, सच्ची है। अब आप इतना शर्माओगे ना तो पर हम एक गाना चला देंगे और पर हम चाहते हैं कि अभी बहुत सारी बातें करनी है। गाने तो हम प्ले करेंगे ही आपके पसंद के। और दोस्तों, आज की सुबह मैंने बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पूछा है, चलो अपने श्रोताओं को भी बता देते हैं। जिन्होंने अभी अभी रेडियो को ऑन किया है ना, तो उनको भी बता देते हैं, शायद उनको भी सही आंसर पता हो और हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोता थोड़ा सा पीछे रह जाए। तो चलो उनको भी बता देते हैं फाइनली कि आज की सुबह हमने अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं से क्या पूछा है। दोस्तों, आज की सुबह मैंने आपसे पूछा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य की पहली किरण किस राज्य किस स्थान पर पड़ती है। जी हाँ, जल्दी से अपने जवाब हमें पहुंचाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य की पहली किरण किस राज्य किस स्थान पर पड़ती है, आपको ये मुझे बताना है। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स हमारे पार्टिसिपेट करें आज की मॉर्निंग। और हाँ, जब आप आंसर पहुँचाओ ना, उसके साथ में अपना फेवरेट गाना भी पहुँचाइएगा। आज की सुबह ही तोहफा तो आपके लिए बनता है ना। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये मैसेज हमें मिला है काशी बनारस से, काशी नगरी बनारस से। मौसी मंसारी जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। एग्जैक्टली सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और सर ने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है आज की सुबह, साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी जी, मुश्ताक अंसारी जी भी हैं और इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, तो इन लाइनों को हम अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर रीड करेंगे सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, हम आपको बहुत मिस करते हैं। सर, आप हमें इतना मिस क्यों करते हैं, हम तो एवरी डे आपसे बातचीत करने आते हैं ना। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये कहती हैं जब आप आती हैं हमारे घर में खुशी का माहौल छा जाता है, एक ट्रैक हमें सुनना है, आपके आने से घर में कितनी रौनक है। और ये स्पेशली सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ, शबीना खान जी हमें मैसेज पहुँचाती हैं, थैंक यू शबीना जी। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाती है रहमत नगर गली नंबर 1 से। ओके जी, आपने पूरा एड्रेस हमें लिखकर दे दिया है, अब हम आपके घर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम हम रेगुलर सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और मेरी भी गाने की रिक्वेस्ट है। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं इटली से आसिफ, एंड अभी इटली में राइट नाउ टाइम हुआ है 7:18, सुबह मॉर्निंग के 7:18 और वहां से सर हमें यहां पर मैसेज पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर दूर से हमारे लिसनर जुड़ रहे हैं, ओह माय गॉड। तो चलो दोस्तों, सुबह सुबह फाइनली मेरा दिन तो बन गया है, वैसे आपका दिन बनाने के लिए खुशी यहाँ पर है। तो मैंने जो सवाल पूछा है उसका आंसर आप फटाफट से पहुंचाइए,
बिल्कुल भी आप पीछे मत रहिए। आपको जब आंसर पता है तो पीछे क्यों है आप लिस्ट में? यहाँ मैसेज करने का आलस मत करो, संदेश जल्दी से पहुंचाओ, खुशी इंतजार कर रही है। और तब तक खुशी आपको सुनवाती है एक बेहतरीन ट्रैक। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए। हाँ माना कि बहुत सारा काम होता है, बहुत ज्यादा आप थक जाते हैं, थोड़ा सा

भी कर लूँ एंड पानी भी पी लीजिए। एंड पानी के अलावा और क्या, मतलब देखो इतनी हेल्दी ड्रिंक्स सुबह मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं जो आपका फेवरेट है, मार्केट में इतने खूबसूरत फ्रूट्स भी हैं, आप उनको लेकर आइए और चाट बनाकर खाइए। बाकी मैं आपको गाना सुनवा रही हूँ, बहुत बातें नहीं लड़की हूँ मैं, जब बोलना शुरू करती हूँ ना चुप नहीं होती हूँ। चलो अभी गाना सुनो, आती हूँ लौट कर।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, एक बड़ी वेदर अपडेट. मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है. हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी इसकी एंट्री हो चुकी है. एंड अगले 48 घंटों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में भी मानसून पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल भी ना भूलिए. और मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट पर नज़र रखिए दोस्तों. बारिश का मौसम है तो सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6. वक्त हुआ है 11:22 और आपके भी यहाँ पर लगातार मैसेज आए हैं, वॉइस नोट आपने मुझे पहुँचाए हैं, तो सुन लेते हैं क्या क्या पहुँचाए हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं ने बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं फाइनली हमारे श्रोता, तो अब इंतज़ार बिल्कुल नहीं कराते हैं और सुन लेते हैं उन्होंने आज की सुबह हमें क्या पहुँचाया. और सबसे पहले हमें राइट आंसर किन का मिला है वो हम सुन लेते हैं उन्हीं की आवाज़ में.
1: राधे राधे खुशी, आपने जो क्वेश्चन किया है कि सबसे पहले सूर्योदय हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है. उसी एक गाना भी सुनवा देना, ओठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो. थैंक यू. खुशी, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है और इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में होता है.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, इतने प्यार से आप इस नोट पहुंचा दिए ना. हाय, मेरा तो दिल आ जाता है, दिल करता है कि आपकी आवाज सुनती रहूं. थैंक यू सो मच मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट आंसर दिया है और आपके लिए रियल वाली क्लैपिंग आरजे खुशी यहां पर करती है. बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आपको मैम. आपने राइट आंसर दिया है और आपका गाना भी हम प्ले करेंगे, ये खुशी की जिम्मेदारी है, तो आप निश्चिंत रहिए. अगला मैसेज हमारे पास किन का आया है राइट आंसर के साथ, कौन जुड़े हैं उनका भी मैसेज हम शामिल कर लेते हैं. वैसे अलका मैम, आपके पीछे कोई बोल रहा था ना, धीरे धीरे मुझे आवाज आ रही थी, किन की आवाज थी जरा बताइए हमें. हम जानना चाहते हैं. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये आंसर हमें पहुंचाती है राधिका. सही आंसर अरुणाचल प्रदेश. एंड थैंक यू राधिका, आपने भी राइट आंसर पहुंचाया है. लगता है हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा नॉलेज है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं. राम राम खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर. और ये कहते हैं कि एक ट्रैक हमें सुनना है, आई रे आई खुशी, और ये ट्रैक हम आपको डेडिकेट करना चाहते हैं. थैंक यू सर, बिल्कुल प्ले करेंगे हम ये वाला ट्रैक आपकी पसंद का. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का और ये कहते हैं, हेलो मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं. तमाम सबूतों और गवाहों को मुद्दे नजर रखते हुए अदालत इस मैसेज पढ़ने वालों को गुड मॉर्निंग विश के द्वारा दिन भर आपको और एफएम मुरादाबाद सुनने वालों को दिन भर खुश रहने की सजा सुनाती है. अरे वाह, इतना प्यारा मैसेज. हाय रबा रणवीर जी, आपकी क्रिएटिविटी को सलाम करते हैं हम. और ये कहते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में पड़ती है. एग्जैक्टली राइट. थैंक यू, आपने हमें मैसेज पहुंचाया है. नेक्स्ट आपने कुछ और भी लिखा है, इसके बारे में भी हम आपसे मालूम करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए. और यहाँ पर हमें जो मैसेज पहुँचाया था मोहसिन अंसारी जी ने, उन्होंने लाइनें भी लिखी थी, तो इन्होंने लिखा है कि मुझसे दूर चले जाना पर ये कभी सोचा है तूने, मुझसे दूर चले जाना पर ये कभी सोचा है तूने, मैंने तुमसे ही अपनी दुनिया बसाई थी, मैंने तुझसे ही अपनी दुनिया बसाई थी, तेरे बिना भी जी लूंगा, ये कहने वाले बहुत हैं कि तेरे बिना भी जी लूंगा, ये कहने वाले बहुत हैं, पर सच ये है कि तेरे बिना हर सांस अधूरी सी लगती है, तेरे बिना हर सांस अधूरी सी लगती है। रात को चांद से बातें करता हूँ कि रात को चांद से बातें करता हूँ, तारों को तेरी याद सुनाता हूँ, कभी सोचा था

हमेशा तेरे साथ रहेगी। बस इतना याद रखना, एक शख्स आज भी तुझसे अपनी आखिरी सांस तक चाहता रहेगा। एक शख्स आज भी तुझे अपनी आखिरी सांस तक चाहता रहेगा। हाय रबा, सुबह सुबह इतनी भारी भरकम लाइन है, इतनी प्यारी शायरी। बट आपका संदेश हमें पहुंचा दिया है जिन तक आप पहुंचाना चाहते थे। और अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत। मैं आती हूँ लौटकर, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और दोस्तों एक एक एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, मालूम कर लूँ अभी? चलो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा दिल जो है ना वो नटखट है, मानते ही नहीं है। तो हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए दोस्तों कि मैं एक गाना प्ले कर रही हूँ, ये कौन सी फिल्म का ट्रैक है और ये कौन सी सिंगर ने गाया है?

0: जी हाँ, पूरा गाना अभी सुनवाऊंगी, इंतजार करो थोड़ा सा। ओहो हो, आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये जो ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ कौन से सिंगर की आवाज में है। हाँ जी, उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट इस फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है। फटाफट से व्हाट्सएप करो बिना किसी देरी के। जो हाँ, जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, उसी पर आप फटाफट से टाइप करके मैसेज हमें पहुंचाइए। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देती हूँ, 9837896896। आपको मैसेज हमें पहुंचाना है बिना किसी देरी के। मैं सुनवाती हूँ एक खूबसूरत सा गीत, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है एवरीवन। तो एड ब्रेक के बाद, म्यूजिकल ब्रेक के बाद खुशी आने वाली है फाइनली आपके सही जवाबों के साथ।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: AKCC, साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

बिल्कुल दोस्तों, जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है। और मुझे पता है आप बहुत देर से मेरे इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए आपके दिल की आवाज हम तक पहुंच गई है। हम हाजिर हो गए हैं आपका फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों वक्त मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 11:41। यह है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो एक छोटी सी जगह से उठी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महान गायक की जिनकी आवाज़ ने 80 और 90 के दशक को अपने सुरों से सजाया, मोहम्मद अजीज साहब जी के। जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई 1994 को कोलकाता में जन्मे मोहम्मद अजीज जी का असली नाम था सैयद मोहम्मद अजीज। जी हाँ, उन नवे प्यार से लोग उन्हें मुन्ना भी कहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के इस चमकते सितारे ने अपने सफर की शुरुआत कोलकाता के एक छोटे से रेस्टोरेंट गालिब रेस्टोरेंट से की थी। वहाँ बैठकर गाना गाने वाले ये नौजवान शायद खुद भी नहीं जानते थे कि एक दिन उनकी आवाज़ करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगी। उनकी ज़िंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध संगीतकार अक्षय मोनित ने उन्हें उड़ीसा फिल्म में गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने 1984 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन असली पहचान मिली मर्द के गीत मर्द तांगे वाला से, और फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। श्रोताओं दोस्तों, माय नेम इज़ लखन, आपके आ जाने से, लाल दुपट्टा, मलमल का जैसे अनगिनत सुपरहिट गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग ही जोश, मिठास और अपनापन था। मोहम्मद अजीज साहब को अक्सर महान गायक मोहम्मद रफ़ी जी का उत्तराधिकारी भी कहा जाता था। उनकी गायकी में रफ़ी साहब की झलक महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी, बंगाली और उड़िया भाषा में 20,000 से अधिक गीत गाए। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ उनका विशेष रिश्ता रहा, और उन्होंने उनके लिए 250 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सफर कब रुक जाए कोई नहीं जानता। 27 नवंबर 2018 को कोलकाता से मुंबई लौटते समय एयरपोर्ट पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और ये सुरों का सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं और यही कहेंगे, कुछ आवाज़ें वक्त के साथ नहीं मिटती, वो यादों के आसमान में हमेशा गूंजती रहती हैं। मोहम्मद अजीज़ जी की आवाज़ भी उन्हीं हमारी आवाज़ों में से एक है जो हर दौर में दिलों को छूती रहेगी। और इन्हीं की एक फिल्म का मैंने ट्रैक आपसे मालूम किया था आज की सुबह।

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है। सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं मोहम्मद, यहाँ पर मैसेज आए हैं। ये मोहम्मद, इन्होंने क्या लिखा है, इमरान जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं पीतल नगरी से। गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं सैयद इरशादी कली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का और ये कहते हैं कि मैम आपने जो सवाल आज पूछा है उस फिल्म का नाम है खुदगर्ज एंड आवाज़ है मोहम्मद अजीज़ जी की, बिल्कुल सही आंसर के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, और ये भी सही आंसर के साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों उन्हीं की फिल्म का एक ट्रैक जो मैंने आपसे पूछा था वह मैं प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, आप सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ बस अभी।

दोस्तों अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुना जगजीत सिंह जी की आवाज में, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक। और इस पहले से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी अलका वर्मा जी ने बुद्धि विहार से, और मैम राइट आंसर के साथ भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत थैंक यू मैम। एंड दोस्तों आज 2 जुलाई है और 1954 को कोलकाता में जन्मे थे, जी हाँ, मोहम्मद अजीज जी, जिनकी आज जयंती है। एंड उन्हीं के खूबसूरत ट्रैक कुछ मैंने यहाँ पर चुने हैं जो मैं प्ले करने वाली हूँ।

और दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है भावनगर गुजरात से मधु भाई चौहान जी का। ये कहते हैं, खुशी जी जय श्री कृष्णा, तुम्हें केम छो? जय श्री कृष्णा, मजा माँ। मैं तो ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा गुजराती नहीं आती है, बट हाँ पसंद है गुजराती लैंग्वेज, गुजराती फूड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली ढोकला और फाफड़ा जलेबी मेरे को पसंद है। और सर ने भी एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट मुझे भेजी है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी उसको प्ले करने की। एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आए हैं, संजू का मैसेज हमारे पास आए हैं, कहती हैं हाय खुशी दी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। एंड ये कहती हैं, कहती हैं कि हमने आपको इंस्टाग्राम पर देखा था मैम, क्या आपका दिल नहीं करता है हमें प्यारे प्यारे श्रोताओं को देखने का? बिल्कुल मन करता है जी, आप आइए हमारे स्टूडियो, आपका मोस्ट वेलकम है, हम इनवाइट करते हैं, आप लोग आते नहीं हो तो उसमें हमारा कसूर कुछ भी नहीं है। एंड उसके अलावा एक मैसेज और यहाँ पर आया है हमारे पास, और ये मैसेज गौरी का हमें मिला है प्रकाश नगर से, कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, आपका शो मॉर्निंग से हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू।

तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फिलहाल राइट नाउ अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और एक प्यारा सा ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, टाइटल ट्रैक है माय नेम इज लखन, एंड बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है राम लखन मूवी से मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में। तो चलो दोस्तों, आप सभी का फेवरेट है इसीलिए मैं प्ले कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि आप सबको पसंद है, तो आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए खुशी ये गाना प्ले कर रही है, एंड आपसे जाने की अनुमति भी चाहती है। आप नहीं चाहते मैं जाऊँ, पर जाना पड़ेगा ना दोस्तों, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वापस कैसे आऊँगी, इसलिए अभी फिलहाल मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए और यूं ही स्माइल करती रहिए।

0: महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4 60% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: थ्री डे विजिट टू इंडिया। दिस इज द फर्स्ट।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं
1: आप घर में कोई खतरा नहीं होता है,
0: मतलब गंदगी नहीं बल्कि साफ पानी भी खतरा बन सकता है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है हमारी सोच से।
1: बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर घर साफ है तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं भी पानी जमा है, इवन एक छोटे से ढक्कन में भी, तो मच्छर वहाँ अंडे दे सकता है। इसीलिए सिर्फ सफाई काफी नहीं है, पानी का जमा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
0: भाभी, ये बात तो सच में सोचने वाली है।

0: अब ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये साधारण बुखार नहीं बल्कि डेंगू हो सकता है।
1: देखिए, डेंगू के लक्षण शुरू में बिल्कुल आम बुखार जैसे होते हैं। अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टियाँ, मिचली आना और कई बार शरीर पर लाल लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं। इसी वजह से लोग इसे साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब बुखार उतरने के बाद भी शरीर ठीक नहीं होता, मगर मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, पेट में तेज दर्द हो, बार बार उल्टी हो, सांस तेज चलने लगे या नाक और मसूड़ों में से खून आने लगे, तो ये संकेत है कि बीमारी गंभीर रूप ले रही है। उसी समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है।
0: मतलब बुखार उतरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता? हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि बुखार गया मतलब बीमारी खत्म।
1: नहीं आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार लोग यही लापरवाही कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर अंदर से कमजोर हो रहा होता है। डेंगू में कई बार बुखार उतरने के बाद ही हालत बिगड़ती है, इसीलिए उस समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है।
0: साथियों, अब मैं आपको एक सच्चाई की बहुत करीब एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिखाती है। ये कहानी है हमारी ही जैसी एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाले 12 साल के बच्चे सोनू की। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ था। गांव में हर जगह पानी जमा होने लगा था, कहीं कूलर में, कहीं पुराने टायरों में, तो कहीं छत के कोनों में। सोनू को खेलना बहुत पसंद था और वो रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता था। एक दिन सोनू घर आया तो उसे हल्का बुखार था। उसकी माँ ने सोचा शायद धूप में ज्यादा खेलने की वजह से हो गया होगा। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और घर का ही इलाज शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन बुखार और तेज हो गया। सोनू ने सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत भी की। शुरुआत में परिवार ने इसे साधारण बुखार समझा, लेकिन सोनू की बड़ी बहन जो स्कूल में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें सीखती थी, उसने तुरंत ध्यान दिया। उसे याद आया कि गांव में कुछ दिन पहले ही आशा दीदी ने डेंगू के बारे में बताया था कि तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द और बदन दर्द इसके लक्षण हो सकते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा इसे हल्के में मत लो, हमें तुरंत अस्पताल चलना चाहिए। शुरू में परिवार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने बहन की बात मान ली। सोनू को तुरंत पास के अस्पताल केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनू को डेंगू है। एक पल के लिए पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया घबराने की जरूरत नहीं है, आपने समय पर कदम उठाया यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर ने सोनू को भर्ती कर लिया, उसे आराम कराया गया। शरीर में पानी की कमी ना हो सके इसके लिए उसे लगातार तरल पदार्थ दिए गए, पानी, ORS, नारियल पानी, बुखार के लिए सही दवाइयां दी गईं और उसकी हालात पर लगातार नजर रखी गई। सोनू की माँ हर समय उसके पास बैठी रहती, उसे पानी पिलाती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। बहन हर दिन डॉक्टर से पूछती क्या सुधार हो रहा है। 3-4 दिन थोड़ी मुश्किलें थी, बुखार कभी कम नहीं होता, कभी कम होता तो कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसके प्लेटे काउंट स्थिर होने लगा। उसका 3-4 दिन थोड़ी मुश्किलें थी, बुखार कभी कम होता कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसका प्लेट काउंट स्थिर होने लगा, कमजोरी कम होने लगी। 1 हफ्ते के अंदर सोनू मुस्कुराने लगा और कुछ दिन बाद वो पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। हंसता है आज सोनू, फिर से खेलता है, हंसता है, स्कूल जाता है, लेकिन अब एक फर्क है, अब उसका पूरा परिवार और गांव पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है। उस दिन के बाद गांव में लोगों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया, कूलर हर हफ्ते साफ होने लगे, पानी जमा होने वाली जगहों को खत्म किया गया, बच्चों को सिखाया गया मच्छर से कैसे बचना है। साथियों, सोनू की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। डेंगू खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। सबसे जरूरी, लापरवाही ना करें और सही समय पर सही फैसला लें। तो साथियों, आपने सुना समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। आपने इतनी सारी बातें बताई, सच कहूँ तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी तेजी से फैल क्यों रही है आजकल?
1: देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा बदलता हुआ माहौल। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही, बीमारी का समय और बारिश का समय और तरीका बदल गया है। जगह जगह पानी जमा होने की समस्या बढ़ गई है, शरीर में भी और गांव में भी। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ माहौल। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बारिश का समय और तरीका बदल गया है और जगह जगह पानी जमा होने की समस्या बढ़ गई है, शहरों में भी और गांव में भी। हर जगह ऐसे हालात बन रहे हैं जहां मच्छर आसानी से पनप सकते हैं। इसके अलावा लोगों की जीवन शैली भी एक बड़ा कारण है। हम पानी को ढककर नहीं रखते, कूलर साफ नहीं करते, आसपास सफाई नहीं रखते। इन सब वजहों से मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है, और अगर एक बार मच्छर संक्रमित हो गया तो वो कई लोगों को काटकर बीमारी फैला सकता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और माहौल का भी नतीजा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि इसका समाधान भी हमारे हाथ में ही है।
0: तो भाभी, अब ये बताइएगा कि क्या इसका कोई इलाज है? अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए, डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, यानी इसके लिए कोई ऐसा दवा नहीं है जो सीधे वायरस को खत्म कर दे। लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर आराम करने की सलाह देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहते हैं और बुखार या दर्द के लिए पैरासीटामोल देते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, खासकर इम्ब्रूफेन या एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बुखार बढ़ाने का खतरा बढ़ सकता है, जो डेंगू में बहुत खतरनाक हो सकता है।
0: मतलब सबसे जरूरी ये है समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना, और खुद से इलाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए।
1: और उससे भी ज्यादा जरूरी है बचाव, क्योंकि अगर हम पहले से सावधान रहे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है।
0: तो भाभी, अब सबसे जरूरी सवाल हमारे श्रोताओं को बताइए कि डेंगू से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं?
1: देखिए, डेंगू से बचाव का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका यही है कि हम मच्छरों को पनपने नहीं दें। इसके लिए हमें अपने घर, छत और आसपास की जगह पर खास ध्यान देना होगा। कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, बाल्टी हो, गमले की प्लेटें हो या छत पर पड़ा कोई पुराना टायर। हर हफ्ते कूलर का पानी खाली करना और उसे साफ करना बहुत जरूरी है। पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें और जहां भी पानी जमा हो सकता है उस समय समय पर साफ करते रहें। इसके साथ साथ हमें अपने शरीर को भी मच्छरों से बचाना होगा। जितना हो सके पूरे कपड़े पहने, खासकर दिन के समय, क्योंकि ये मच्छर दिन में ज्यादा संक्रमित होते हैं। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अगर संभव हो तो मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे भी लगाएं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है तो उसे भी मच्छरों से बचा कर रखें, ताकि कोई मच्छर उसे काटकर वायरस को दूसरे लोगों तक ना फैला सके।
0: मतलब भाभी, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक व्यक्ति भी लापरवाही करता है तो उसका असर सब पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आप, डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के साधारण रहने से काम नहीं चलेगा। जब तक पुराना मोहल्ला, पूरा गांव मिलकर काम ना करे तब तक इसे रोकना मुश्किल है। इसीलिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: भाभी, एक बात बताइए, ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी होता है ना? मैंने कहीं सुना था इसके बारे में।
1: हाँ आरजे खुशी, बिल्कुल होता है। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि लोग समय रहते जागरूक हो जाएं, बरसात शुरू होने से पहले तैयारी कर ले, ताकि जब मच्छरों का खतरा बढ़े तब हम पहले से तैयार हो।
0: तो भाभी, गांव में लोग इसे कैसे मना सकते हैं? क्या सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा?
1: नहीं आरजे खुशी, सिर्फ बातें करने से नहीं, काम करने से बदलाव आता है। गांव में लोग इस दिन सफाई अभियान चला सकते हैं, नालियों को साफ कर सकते हैं, जहां पानी जमा है उसे हटा सकते हैं। स्कूल में बच्चों को समझाया जा सकता है कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कहीं आसपास पानी जमा तो नहीं है। जब पूरा गांव मिलकर काम करेगा तभी असली बदलाव आएगा।
0: साथियों, आज इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, डेंगू कोई छोटी बीमारी नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसती है और अगर हम सावधान ना रहें तो बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें कि थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। याद रखिए, ना पानी रुकेगा ना मच्छर पनपेगा, तो डेंगू कभी घर नहीं आएगा।
1: और हमेशा ये याद रखें, बुखार को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर किसी को बुखार आए तो समय पर जांच करवाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने घर और आसपास को साफ सुथरा रखिए। छोटी छोटी सावधानियां ही हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
0: इसी के साथ हम अब आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेते हैं हम सब मिलकर अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। तो श्रोताओं, सेहत सही तो लाभ कई। मैं अब आपकी दोस्त आपसे विदा लेना चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने गांव, अपने मोहल्लों को डेंगू से सुरक्षित रखिए। फिर मिलेंगे इसी शो में।

0: रमन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे सिहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
5: अरे आरजे खुशी, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे

0: चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गाँव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
0: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है, पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
1: क्या सियतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
0: यही तो अच्छी खबर है RJ खुशी जी, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
0: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आम तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो
0: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
0: यही तो सबसे अहम बात है RJ खुशी, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
0: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वही हारेंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखिए आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
0: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक है। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो, समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ,
0: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
1: तो चलिए जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई
2: शाय है।
1: महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ,
2: जान तो बच गई,
1: लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैड फ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर

0: के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन ईकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये काला जार हो सकता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
1: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
0: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
0: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
1: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
0: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
1: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
1: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
0: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
1: ईकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
0: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
1: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
0: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
1: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
0: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाए।
1: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
0: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
1: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय है, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गाँव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझ गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल। और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आएं?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए, किसी भी तरह का झाड़ फूंक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखे, दीवारों की दरारें भरे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
1: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदाई कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं, बल्कि समय पर कदम उठाना है।
1: सच में ये तो असली बदलाव है, जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचाता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने,
1: सुरक्षित रहें और कालाजार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके, क्योंकि देखिए जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
5: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
4: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
5: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
4: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
5: बिल्कुल सही।
4: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
5: और स्टूडियो में है ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी, मिर्ची वाली धूप लग रही है।
4: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं, तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसके किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी, लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे, पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं,

0: आम इंसान ही उसका जिम्मेदारी, यानी कि मैं और आप ही, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए, ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि

0: हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी फिर।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: इस घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते हैं ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल,
0: है ना?
1: ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: पानी
0: होता है,
1: वेस्ट होता
0: तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है तो हमें चाहनी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे. आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी. साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है. अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी. कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है. पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला. लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली. लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा. इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें. क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है. तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें. स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है. बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है.
0: ये तो आपने सही कहा. तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा. हमारा जाने का समय हो गया है और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी. तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए. तुम क्या कहोगी ना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए.
0: करेक्ट, सही कहा आपने. और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए.
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास. अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है.
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें. आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं. कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा. इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें. अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ. फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो. याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी. ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6.
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे.
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय.

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534
5: जनपद मुरादाबाद वासियों से अनुरोध है कि अच्छी वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अपने बच्चे के विकास हेतु आज ही निकट के परिषदीय विद्यालय में जाकर निःशुल्क प्रवेश कराएं। याद रहे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा फ्री पाएं और सभी सरकारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक 1200 रूपए की DBT की धनराशि आदि का लाभ उठाएं। स्कूल चलो अभियान बेसिक शिक्षा विभाग मुरादाबाद।
6: नमस्कार आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ आपके साथ मैं हूं आशीष और
7: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
6: बिल्कुल तो भावना आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है पता है आपको लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
7: बिल्कुल आशीष आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
6: बिल्कुल जरूरी है भावना क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी कैसे देश बढ़ेगा कैसे समाज बढ़ेगा।
7: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
6: और सिर्फ यही नहीं भावना इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
8: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
9: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं।
8: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
9: भाइयों और बहनों माताओं बहनों बेटियों उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य उसकी शिक्षा उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं समाज की राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
7: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है।
6: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
7: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
6: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
7: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
6: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
7: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे, लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे, तो कहीं कहां तो कहीं कहां ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
6: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
7: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
6: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
7: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
6: बिल्कुल जरूरी है, और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
7: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
6: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
7: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
6: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
7: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
6: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
7: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं, सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
6: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
7: कल है।
6: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है। और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती है, ऑटो रिक्शा चालक है। आज हम इनसे बात करने वाले। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है। और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैडम रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां। रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले बताइए मैम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप किसी जगह आएंगी?
1: नहीं नहीं, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूँ या मैम बोलता हूँ मैं तो आपको?
1: जो चाहो वो बोल सकते।
0: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
1: रामवती
0: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे थे।
0: ओहो, अच्छा, तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
1: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
0: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
1: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे मतलब हमारे मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला, वो अच्छा। है साइकिल टायर पंचर थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो
2: तकाईची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधानमंत्री ताकाईची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
3: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
2: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
5: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
6: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
2: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
7: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
8: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन

2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है, और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बारी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है, और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
5: मैडम रामवती शर्मा।
4: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां। रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले ये बताइए मैम?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
4: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लगा।
4: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप किसी जगह आएंगी?
5: नहीं नहीं, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यार।
4: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूँ या मैम बोलता हूँ मैं?
5: आप
4: तो आपको
5: जो चाहो वो बोल सकते।
4: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
5: रामवती
4: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
5: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे थे।
4: ओहो, अच्छा,
5: हाँ।
4: तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
5: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
4: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
5: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे मतलब हमारे मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला, वो है साइकिल टायर पंचर थे।
4: अच्छा अच्छा अच्छा।
5: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे।
4: हाँ।
5: तो मैं अपने एक जनी मुझे लेके आई थी यहाँ पर।
4: हाँ।
5: काम पे लगवाने के लिए।
4: हाँ।
5: तो मैंने उनके साथ मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
4: अच्छा,
5: पैकिंग हॉल में।
4: अच्छा,
5: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
4: अच्छा, अरे वाह। फिर
5: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म हो गई किसी मतलब दिक्कत में आके।
4: ओके ओके।
5: उसके बाद मेरा एक छोटा सा पोता है, आपने देखा भी होगा।
4: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
5: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
4: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
5: उसे पाल रही हूँ।
4: हाँ।
5: और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
4: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
5: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
4: एक लड़की और लड़की। हाँ। की शादी हो गई?
5: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
4: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग?
5: ऐसे आया

0: जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं।
1: हाँ।
0: तो मैं मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ, तो मैंने एक पहले पुराना ऑटो लिया था।
1: अच्छा,
0: उससे मैं सीखी।
1: अरे वाह।
0: अच्छा। उससे सीखने के बाद
1: मतलब पहले ट्रेनिंग ली आपने। हाँ। अच्छा,
0: सीखी अपना भी थी।
1: अच्छा,
0: किसी ने सिखाया नहीं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने मेरे मन है ऑटो चलाने के लिए।
1: तो क्या कहा सर ने, मतलब परमिशन दी पति देव ने?
0: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो। फिर मैंने ऑटो ले लिया।
1: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, परिवार की तरफ से कोई
0: किसी की तरफ से रोक टोक?
1: अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
0: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
1: एक साल हो गया आपको?
0: मार्च में हो गया।
1: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही हैं मार्च में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा,
0: अजीब सा लगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं चलाती रहूं।
1: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं। ओके, तो मतलब जब आपकी ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे क्यों चलाती हैं?
0: पूछते हैं।
1: हाँ।
0: पूछने वाले तो क्या बताया, किसी को क्या बताया,
1: क्या बताया जाए?
0: तो ने बताई जाती है। हाँ। कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबाद ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
0: हैं? 25 साल हो गए।
1: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबाद ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
0: बिलारी
1: से आप थी। तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
0: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
1: अरे वाह, क्या बात है,
0: अभी हमारा अपना ही है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
0: हाई स्कूल पास।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में। फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
0: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
1: हाँ,
0: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली, तो मैंने सोची, फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर। उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा मैंने फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
1: जी,
0: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
1: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो।
0: हाँ।
1: जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है।
0: कोई जबरदस्ती नहीं
1: है, ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
0: वैसे मैं सब रोड पे चला लेती हूँ।
1: सब रोड पे चलाती
0: हूँ। गुलाबबाड़ी, अभी तो मैं गुलाबबाड़ी से आई।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को?
0: अच्छा,
1: घर वालों को दिखाया आपने?
0: सब, और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
0: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
1: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
0: ये लगता है कि हाँ, देख पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग, दूसरी बात मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
0: खदाना गांव में।
1: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
0: सुबह तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास, लगी बनी है वो तो।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम घर के,
1: मतलब खुद करती है सारा काम।
0: हाँ जी। और
1: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं?
0: सुबह मैं 7 बजे निकल,
1: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती
0: हूँ? शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
1: 6 बजे आप घर लौटती हैं। ओके, रामपति शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामपति जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी,
0: तो
1: कैसे डील कर लेती हैं आप?
0: ये तो होता ही रहता है, घर गृहस्थी में।
1: मतलब एक तो आप इतनी प्यारी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही हैं, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती
0: हैं? मतलब गृहस्थी में सब हो जाता है,
1: सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसी रहते हैं।
0: हाँ।
1: ऐसी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: बातचीत करके कैसा
0: बहुत
1: लगा?
0: बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा आपको?
0: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामपति शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती हैं, पेट पालना चाहती हैं, अपने बच्चों को पालना चाहती हैं, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही हैं, जो पढ़ना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है।
0: वो भी हिम्मत रखे, हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई भी लेडीज हो, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया।
1: बिल्कुल, अगर आपकी बिल्कुल
0: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
1: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है ना। देखिये बहुत अच्छी बात बोली रामवती शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने की, आप ताकत रखती हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही हैं, और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, और मैम बिल्कुल मतलब जो है ना एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे, तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही है?
0: जैसे जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा, और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपसे ये जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने कहा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी आप क्यों चला रहे हो जब हम हैं तो?
0: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम।
1: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी। तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
0: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
1: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइस अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
0: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
1: सब तरफ जाती हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे तो आप भी पहचान जाइएगा, ठीक है मैम? चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
0: मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
1: अब मैम आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
0: मेरी 45।
1: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, थैंक यू सो मच आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो यहाँ पर आपने बातें रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: आगे भी आना चाहोगे?
0: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
1: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी खुशी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो। जी हाँ, आपका फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ। हेलो फरमाइश, उम्मीद है आपका दिन मुस्कुराहटों से भरा होगा। बाहर अगर मौसम सुहाना है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वेरी गुड। इस सुहाने से मौसम में आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। और दोस्तों यहाँ पर वक्त हुआ है 3:04, बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी मैम, कैसी हैं आप?
1: जय श्री राम।
0: आपको भी जय श्री राम। अपना शुभ नाम बताइएगा। जी बताइए, नीतू जी कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसी हो, घर पे सब?
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं, फैमिली में भी, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए, इतने दिन से कहाँ थी आप? हाँ, आज बहुत टाइम के बाद आपने कॉल किया है हमें।
1: थोड़े
0: देखो छुट्टियाँ
1: चल रही थी तो बच्चों को घुमाने के लिए गए थे।
0: अच्छा, ओके, तो इन छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं आप?
1: छुट्टियों में कहीं नहीं मैम, बस घर गए थे, मम्मी के घर पे गए थे। जी
0: अच्छा, ओके, नानी के घर घूमने के लिए गए थे। हाँ, अक्सर छुट्टियों में नानी के घर ही लेकर जाती है मम्मा तो। जी आप बताइएगा मैम, आज आपने बहुत दिनों की बात कॉल किया है, आप क्या सुनना चाहती हैं आज?
1: गाना तो मैं एक भूल गई अभी याद था, लेकिन एक मेरे याद है,
0: बताइएगा।
1: आज कितने चले कितने चले मोरनी बन के
0: ओए
1: मोरनी
0: होए
1: बन के।
0: होए, मोरनी बन के आप किधर जा रहे हो, दसो मैनू।
1: पर एक गाना और था मैं भूल गई हूँ।
0: अच्छा मैम, हो जाता है एक्चुअली ना, कभी कभी हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, यू नो, माइंड से हमारी, हम भूल जाते हैं उसको।
1: बिल्कुल, अभी निकल गया दिमाग से एकदम।
0: आपने सोच के रखा होगा कि आज तो मैं ये वाला गाना सुनूंगी, लेकिन जैसे ही कॉल लगा तो माइंड से गाना रिमूव हो गया।
1: हाँ बिल्कुल, मैंने भी अभी ये सोचा, मैं कह रही हूँ मैं किसी को दो गाने बताऊंगी।
0: अच्छा
1: हाँ नहीं तो किसी से फिर जो किसी जी का मन करेगा वो ही सुनूंगी।
0: हाँ, वेरी गुड, लेकिन क्या हुआ, बातें हमारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो गई हैं, अधूरी रह रही हैं, क्योंकि आप गाना भूल गई हैं, है ना
1: नहीं
0: जी। और कुछ कहना चाहती हैं मैम आप?
1: नहीं, और आपको तो मैं वैसे सुनते रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कॉल नहीं कराए तो सुनते नहीं, सुनते खराब हो रेडियो
0: अच्छा,
1: बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ
0: हाँ, वो दीवानगी तो नहीं भूल सकते हैं एक्चुअली, चाहे कहीं भी रहे, है ना
1: कहीं भी चले जाए चलिए,
0: जी।
1: हमें याद आती है रेडियो की तो।
0: हम भी आपको याद रखते हैं मैम, तभी तो हमने पहचान लिया आपको।
1: बिल्कुल, आप
0: जी
1: सबकी भी और रेडियो की भी याद आती रहती है।
0: हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मैं सुनवाती हूँ आपको बहुत ही प्यारा सा गाना आपकी पसंद का।
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम मैम, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। श्रोताओं, सुनेंगे ये प्यारा सा ट्रैक, बधाई मूवी का बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, एंड लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा मुझे, नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, आज मार्केट में चाहे आप कार्ट रोड जाएं, स्टेशन रोड जाएं, एंड बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ट्रैफिक है. चाहे आप अंदर मार्केट में भी जाएं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी जो ऑन द वे कार में मुझे सुन रहे हैं, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं. हेलो फरमाइश.
1: हेलो.
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं आशीष बोल रहा
0: हूँ. आशीष, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से, चंदन नगर.
0: जी, चंदन नगर से बात कर रहे हैं. बताइए, क्या करते हैं आप सब?
1: हम मैडम इलेक्ट्रोब्लेडिंग का काम करते हैं.
0: ओके, तो कहाँ पर हैं अभी आप राइट नाउ?
1: ये इस समय मैं जॉब पर हूँ, इधर लाकड़ी फाजलपुर में.
0: अच्छा अच्छा, बताइएगा आशीष जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज हमारे दिल में आज अभी उलझन है.
0: अच्छा, ओके. और ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: ये हमें ये वाला गाना अच्छा लगता, हमने एक बार और भी गाया था आपसे ये वाला.
0: अच्छा ठीक है. नहीं, कोई दोस्त वगैरह? हाँ नहीं, मुझे मालूम है, काफी टाइम के बाद आपने कॉल किया है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अकेले सुनना चाहते हैं या आपके दोस्त भी आपके साथ में हैं?
1: मेरे दोस्त पास में बैठे हैं मेरे.
0: बताइए. चलिए, आप अपने दोस्तों के साथ ये ट्रैक सुनिएगा. आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका.
1: ठीक है मैडम.
0: जी, मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए श्रोताओं, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा अगर आप अभी राइट नाउ फ्री हैं. तो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, 9837896896. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और इस दोपहर के सफ़र को खूबसूरत बनाना खुशी का काम है. बस आप फ़ोन तो लगाइए,

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिल्कुल दोस्तों, जब नए रिश्ते बनते हैं या नए रिश्तों की शुरुआत होती है तो दिल में बस यही हलचल रहती है, यही ख्याल होता है जहन में, जाने वो कैसा होगा रे। फिलहाल आप ठीक हैं मैं जानती हूँ, और आप मुझे कॉल लगा सकते हैं साथियों एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, क्योंकि आप सभी का फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल करके अपनी पसंद के ट्रैक सुन सकते हैं। और अभी आपको समय बताएं तो वक्त हुआ है 3:33 एंड बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसी हो और एफएम मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, एफएम मुरादाबाद में सभी बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा। शबनम जी, आपके परिवार में सब ठीक हैं?
1: जी हाँ माशाल्लाह सब अच्छे हैं मैम।
0: और मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: मौसम तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिल लग रहा मौसम।
0: अरे वाह, तभी आज आप इतना खुश हैं।
1: जी
0: जी बताइएगा शबनम जी, आप इस सुहाने से मौसम में कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: जी दीदी गाना है
0: तुम्हें बोलना पसंद है मुझे बोलते हुए तुम, तुमको बारिश पसंद है मुझको बारिश में तुम, यही गाना सुनना चाहते हो ना?
1: जी यही गाना सुनना चाहती थी लेकिन मेरा ध्यान कुछ उतर गया गाना।
0: कोई बात नहीं शबनम जी, हम है ना, आप चिंता मत किया करो।
1: बिल्कुल दीदी ये तो है
0: जी। तो ये आप किसी का नाम भी लेना चाहती हो बताओ मुझे।
1: जी हाँ नाम लेना चाहूंगी मैं, ये मेरे साथ में है लाइबा काजमी।
0: हाँ जी
1: आप
0: और ओके ठीक है, तो सभी के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए,
1: बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये शबनम जी की पसंद पर बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, नेहा कक्कड़ एंड साथ में रोहन प्रीत जी की बड़ी अमेजिंग सी वॉइस और

मौसम भी सुहाना है, तो ये गाना तो एकदम परफेक्ट बैठता है और बहुत ज़्यादा यू नो खूबसूरत भी है। तो चलिए इस गाने का सब मिलकर लुत्फ़ उठाते हैं। आप मुझे फ़ोन मिलाओ।

0: वैसे दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बारिश में पनीर के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े हो, आए हाय अदरक इलायची वाली चाय हो, तो फिर मौसम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। फिलहाल अपने शो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और आप सभी का अगेन हम वेलकम करते हैं हेलो फरमाइश शो में। आपकी खुशी आपके साथ है, और ये अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों गाने वही जो आपका दिल चाहे। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मैं
0: महक, कहाँ से बात कर रहे हो महक? तभी हमारा स्टूडियो इतना महक रहा है। ओहो हो, महक से बात करके जी बताइएगा महक, कैसे हैं आपकी फैमिली में सब लोग?
1: हम बढ़िया हैं, आप बताओ।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप क्या करते हो महक?
1: मैं अभी हमारी स्टडी चल रही
0: है। ओके गुड, क्या स्टडी कर रहे हो आप? अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कौन सा ईयर है आपका? अच्छा सेकंड ईयर है। अच्छा ये बताओ आप मुझे, आपको आगे क्या करियर में क्या करना है, क्या हॉबीज हैं आपकी? अच्छा ओके, अभी आप स्टडी कर रहे हो, फिर आप पढ़ाओगे सबको, राइट? चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड आपकी हॉबीज पैशन जो भी है बहुत ही अच्छा है। हम तो यही आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप जल्दी से टीचर बन जाएं। मोस्ट वेलकम। बताइएगा आप कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: गाना
0: कोई बात नहीं है, हम आपकी भाभी जी की पसंद पर ही प्ले कर देंगे। बताओ
1: अल्ताफ।
0: अच्छा तो कौन आपके साथ निभाने के लिए तैयार नहीं है? देखो हम तो आपका साथ निभा रहे
1: हैं।
0: अच्छा ओके, चलो सुनवाते हैं आपको। मैंने कहा ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: सेम टू यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एंड आपकी फैमिली भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आपकी भाभी जी भी रेडियो सुनती हैं?
1: जी मैम।
0: अच्छा ओ ये बात है, अच्छा तो आज कैसे लगा आपका कॉल, आपकी बातचीत हो रही, कैसे लग रहा है आपको?
1: मैम बहुत अच्छा लग रहा है।
0: यकीन था कि कॉल लग जाएगा? चलो ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारी सी गजल मैम जो बोल रहे हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, बट हम आपका साथ निभाने के लिए तैयार हैं, आप मुझे कॉल तो करो, और जब तक आप मुझे कॉल नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे आपका साथ निभा पाऊंगी, बताओ दोस्तों। तो फिलहाल सुनिएगा ये खूबसूरत सी प्यारा सा ट्रैक। बस मैं आती हूँ लौटकर आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी
3: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

देखिए दोस्तों, हम अपने वादे के अनुसार लौट कर आ चुके हैं और हम साथ निभाने के लिए आपको पूरा तैयार हैं। बस आपको मुझे कॉल लगाना है। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ।

0: 9837896896 यह है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी जो आपके लिए लेकर आती है आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल कर अपना फेवरेट गाना तो सुन सकते हैं, बातचीत करने का भी अवसर मिलता है आपको। और अभी जानेंगे अपने अगले कॉलर से कि वो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर?
1: गाना सुनवा है।
0: गाना तो सुनवाएंगे, पहले नाम तो बताइए अपना।
1: श्याम बाबू श्रीवास्तव।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: प्रधानमंत्री आवास योजना लाकड़ी फाजल बोलते।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है सर, आप बढ़िया हैं?
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: सायन का सुनवा दिए, बहुत प्यार करते हैं तुमको सामान।
0: अच्छा ठीक है सर, आपने कॉल किया, धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद के प्यारे से गीत। जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है और मेरे साथ में अभी अखिल जी भी यहाँ पर हैं. हेलो अखिल सर, गुड इवनिंग. कैसे हाल चाल है आपके, बताइए.
1: गुड इवनिंग खुशी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं.
0: क्या आज रात की चांद दिन में कैसे नजर आ गए हमें.
1: मैं बस यही बताने आया था कि रात की चांद को सुनने आए हैं 9 से 10.
0: हाँ जी,
1: दिल तक अखिल संग.
0: हाँ जी, तो आप
1: हैं जरूर आए और अपने दिल की बात जरूर हमें बताएं.
0: जी, तो आपको क्या करना है एवरीवन, नाइट में ठीक 9 बजे आपको रात में अखिल सर को ज्वाइन करना है. वो कैसे आप कर सकते हैं, जैसे अभी आप लाइव मुझे सुन रहे हैं वैसे ही आपको अखिल सर को भी सुनना है. वो आपकी शाम को बनाएंगे बेहतर से बेहतरीन, नींद भी अच्छी आएगी और यादें में भी आप खो जाएंगे.
1: क्या बात कही आपने, आपको नींद कैसी आ रही है आजकल.
0: मुझे बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपका शो एवरी इवनिंग सुनती हूँ 9 से 10, उसके बाद ही मैं सोती हूँ.
1: चलिए चलिए, धन्यवाद, आप भी हमारी कम से कम लिसनर बने.
0: हाँ जी बिल्कुल सर, और कहते हैं ना कि एक अच्छा आरजे बनने से पहले एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है, तो वो काम अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है. और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, उनसे शायरी भी सुनने वाली हूँ मैं. हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं डायरेक्टली. एंड मैंने कहा ना उनसे शायरी भी सुनने वाले हैं हम, तो क्या सुनाने वाले हैं सर, चलिए उनसे बात कर लेते हैं. अखिल सर, आप बात करने के लिए तैयार हैं.
1: हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ.
0: हाँ जी, तो बताइएगा कौन जुड़े हैं अभी हमारे साथ, कौन कनेक्ट हुए हैं, उनका नाम
1: पता करते हैं जरा नेटवर्क में. हेलो,
0: ओके, तो
1: आप करिए दूसरे नंबर से कॉल करिए.
0: एंड हमारे साथ ही कॉल लिसनर कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं. हेलो फरमाइश.
2: हेलो.
0: हेलो सर.
2: हाँ जी, चंदन जी बोल रहे हैं.
0: हाँ जी चंदन जी, नमस्कार, कैसे हैं आप.
2: नमस्ते नमस्ते.
0: हाँ जी हम अच्छे हैं, आपकी दुआ है. आप बताइएगा कौन सा गाना सुनना है आपको सर.
2: अब ये बताओ जरा, इसके पहले ये पुराने गाने एक दिन आते थे.
0: हाँ.
2: मुकेश के और उनके लता जी के
0: जी
2: गाने एक दिन पूरे दिन आते थे. अब नहीं आते हैं.
0: ओके सर, हम पूरी कोशिश करेंगे. आपको ओल्ड गाने पसंद है,
2: जैसे बृहस्पति का दिन है.
0: हाँ.
2: ऐसे आते थे पहले.
0: जी जी जी.
2: तो अब नहीं आते, अब तो सब गाने मिलजुल के ही आते हैं, वो पैसे दे देते हैं ना.
0: हाँ जी हाँ जी,
2: बच्चों का और उसका सबका देते हैं आप.
0: ओके ठीक है सर, अभी हम आपसे ना आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक. आपने हमें कॉल किया चंदन जी, धन्यवाद आपका.
2: ठीक है ठीक है
0: जी, तो चलिए अभी चंदन जी की पसंद पर सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक एंड उसके बाद करेंगे हम अगले कॉलर से बात.
3: मेरे आज क्या है,
4: क्या है.

0: बिल्कुल दोस्तों, जो आपके मन में है कह दो, हम तो सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिन आप हो कि कॉल करने में कंजूसी कर रहे हो, गलत बात है, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। दोस्तों मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का, जी हाँ, फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दीवाना, दीवार मूवी से ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: जी मैम, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सुनील जी?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका तो का इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो गया मैम, फोन भी लग गया तो मैम।
0: हाँ जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी फिल्म मैं चिट्ठी प्यार भरी गाने के बोल है एक नन्ही सी गुड़िया,
0: एक नन्ही सी गुड़िया।
1: जी
0: ओके ठीक है सर, ये सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक।
1: धन्यवाद मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर है 9823789689। जल्दी से कॉल लगाइएगा, इंतजार कर रहे हैं हम आपका।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, बहुत सारे श्रोता हमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ऑसम है, आज सुहाना मौसम है। तो सुहाने से मौसम में मुझे कुछ दो लाइनें अभी मेरे जहन में आ रही हैं कि कुछ ख्वाब बारिश की बूंदों जैसे होते हैं, कुछ ख्वाब बारिश की बूंदों जैसे होते हैं, हाथों में कम दिल में ज़्यादा ठहरते हैं। बस यूं ही मुस्कुराते रहिए क्योंकि हर नया दिन एक ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है। आप अभी मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, बस अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखिएगा। जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इस मुस्कुराहट को कभी भी कम मत होने दीजिए। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, और मेरे साथ में अखिल जी भी हैं जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराने की वजह भी जान लेते हैं। हाँ जी सर, क्या बात है, आज बड़ा ही मुस्कुरा रहे हो आप। हाँ,
1: मुस्कुराने की ना कोई वजह नहीं होती है।
0: अच्छा, बेवजह मुस्कुराते हैं आप।
1: बेवजह मुस्कुराते रहे तो वो भी ना कहीं ना कहीं आपको एक अंदर वाली मुस्कुराहट दे जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये दिल से मुस्कुराते हैं, और जो दिल से मुस्कुराते हैं वो हमेशा हर काम में सफलता पाते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए भी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: सो प्लीज, आपके पीछे जो रेडियो चल रहा है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं, और योर गुड नेम, अपना नाम भी बताइएगा।
2: मैम मेरा नाम उदित अग्रवाल है।
0: उदित अग्रवाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मुरादाबाद से।
0: ओके, जब मैंने आपका नाम सुना उदित, तो मुझे ख्याल आया कि उदित नारायण जी से मेरी बात नहीं हो रही है आज।
2: बात एक ही है, काफी जने बोलते हैं, खासतौर से दोस्त तो बिल्कुल बोलते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं।
2: जी बिल्कुल
0: जी सर। तो बताइएगा, आज फर्स्ट टाइम आपका कॉल लगा है, आप कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं?
2: मैं डेनी सिक्स का सुनूंगा, मशक अली।
0: ओहो, क्या बात है। हाँ, मैंने ना आपसे अभी अपने श्रोताओं से भी बोला था कि हम एक लिसनर से बात करने वाले हैं, उनकी शायरी भी सुनेंगे, तो प्लीज कुछ सुना दीजिएगा सर।
2: मैम एक शेर है राहत इंदौरी साहब का।
0: जी इरशाद,
2: वो सुनाना चाहूंगा।
0: इरशाद इरशाद।
2: उसकी याद आई है सासो, जरा आहिस्ता चलो।
0: वाह वाह।
2: उसकी याद आई है सासो, जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।
0: क्या बात है, अमेजिंग, सुपर। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी प्यारी शायरियां भी करते हैं, वो तो आपके दोस्त ने मुझे बताया है। थैंक यू सो मच उदित जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो चलिए दोस्तों, उदित जी की पसंद पर सुनते हैं, उदित अग्रवाल जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक। आप कहीं मजा आइए, यूं ही मुस्कुराइए और इस ब्यूटीफुल ट्रैक का आनंद उठाइए। मैं बस लौट कर आती हूँ छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: कोई मिल गया,
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही प्यारे से ट्रैक सुना दिल्ली सिक्स से एंड मोहित चौहान जी की बहुत प्यारी सी आवाज। और इस प्यारे से गाने को सुनना चाहा था उदित अग्रवाल जी ने। एंड अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया बढ़िया
0: जी। अपना शुभ नाम बताइए सर।
1: जी अतल सिंह सैनी बोल रहा हूँ मैं, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं।
0: जी अच्छा ही रहना चाहिए सर, बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है?
1: जी आज मैं मिसाल फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ। हाँ? मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम।
0: अरे वाह,
1: गाने के बोल है।
0: जी जी जी बताइएगा, किसी का नाम लेना चाहते हैं आप सर?
1: सबसे पहले तो मेरे परिवार के लोग हैं
0: जी,
1: जैसे मीना मुन्नी पवित्रा अजय आंचल आकांक्षा आकाश घाटमपुर रामपुर से, राम भजन सैनी नवाबपुरम से हैं, बबली अंजान और खंडिया गेट से हैं अमरजीत भाई, और बाकी सुनने वाले सभी के लिए मैं सुनना चाहता हूँ।
0: जी ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी ओके, राधे राधे।
0: राधे राधे आपको भी सर। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं सर की पसंद का, मुझे याद करना तुम। और याद

0: दोस्तों आपने मुझे याद किया, खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना किशोर कुमार जी साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जी मैम।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, मेरा नाम है हैदर अली।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हटना मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा अपने बारे में, क्या करते हो आप?
1: हम मैम कारपेंटर का काम करते हैं।
0: अरे वाह, कहाँ, मुरादाबाद में?
1: जी जी।
0: ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: जी मैम, हमने सुना है दिलवाले मूवी का मनमा इमोशन जागे।
0: ओके, तो बताइए बाहर का मौसम कैसा है अभी? अच्छा मौसम है। ओके, तो चलिए सुनिएगा आपने पसंद का ये गीत, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: जी जी।
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिलवाले से। एंड आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, अभी वक्त है आपके पास, मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हाँ जी दोस्तों, जैसे मौसम सुहाना होता है तो मन में इमोशन जागने लगते हैं कि कुछ तो चटपटा सा, कुछ तो स्पाइसी सा खाना है। और मैं तो बहुत फूडी लड़की हूँ, खाने पीने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बहुत आगे हूँ, लेकिन बनाने में भी हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बनाने का शौक़ मुझे है पर इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं जितना अच्छा मम्मा मेरी बना लेती हैं। और बट हाँ, ये है कि खाने लायक बना लेते हैं, अगर कोई घर पर गेस्ट आ रहे हैं और मम्मा नहीं है तो फिर मैं बनाकर खिला देती हूँ, मतलब ठीक ठाक। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाने लायक ना हो, बट बना लेते हैं जब गेस्ट आते हैं घर पर। और कुछ बनाने के लिए मुझे स्पेशली कभी कभी होता है कि घर पर कोई भी आ जाता है गेस्ट तो बनाना पड़ता है, तो जब बनाकर गर्मा गर्म उनके आगे हम परोसते हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है दिल में कि पता नहीं कैसा बना होगा, क्या होगा। लेकिन उधर से जब रिप्लाई आता है कि खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है बेटा, तब हमारा दिल खुशी से झूम उठता है कि हाँ चलिए फाइनली 2 घंटे की किचन में जो मेहनत हम करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपको भी खाना बनाने का शौक है या नहीं, सिर्फ खाने खाने का है? देखो, लड़कियों को तो बनाना भी आता है ऐसा नहीं है, बट लड़के भी आजकल बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, नो डाउट। और मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत अच्छे कुकिंग करते हैं, मेरे बिग ब्रदर भी, छोटे ब्रदर भी कर लेते हैं, बट बड़े भैया बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। बाकी आपकी फैमिली में कौन खाना अच्छा बनाता है, बहन या भाई? आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, अभी अपने भाई का राज खोल सकते हो। वैसे अभी फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, वो कौन कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: कहते हैं कि कॉल हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, इसीलिए आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो खुशी जी आपकी शान में कबूल हो, मोहब्बत भरा नमस्कार हमारा।
0: आपको भी नमस्कार। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत सा अंदाज है आपका, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेत अंडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं मैम, एक लंबे अंतराल के बाद हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है, और आपकी आवाज़ सुनकर हालचाल और भी अच्छे हो गए हैं मैम।
0: जी शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप कार्यक्रम में कॉल करते हैं। बताइएगा, आज आपके शहर का मौसम कैसा है सर?
1: देखिए मैम, यहाँ पर अभी तो गुरुग्राम में है हम, गुरुग्राम के अंदर बारिश हो रही है सुबह से, तो काफी
0: अच्छा
1: सुहाना मौसम हो रहा है मैम गुरुग्राम के अंदर।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप सब?
1: देखिए मैम, जब जिला रामपुर से हेलो फरमाइश में कॉल शामिल हो रही है तो एक सॉन्ग है तुम सामने बैठो मुझे प्यार करने दो, कुछ इस टाइप के बोले।
0: जी
1: और मैं कहना चाहूंगा कि लफ्जों से कहाँ बयां होती है मोहब्बत मेरी, बस जब तुम सामने होते हो, सामने होते हो तो धड़कने गवाही देती हैं, खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी जिंदगी के लिए, तुम्हारी एक मुस्कुराहटी मेरी हर दुआ को रिहाई देती
0: है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लाइनें होती हैं आपकी सो, और कुछ कहना चाहती हूँ?
1: मैम
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए अपने दोस्तों के नाम।
1: देखिए मैम, कहना तो यही चाहेंगे क्योंकि इस टाइम मौसम परिवर्तन हो रहा है, सभी लोग खास करके ध्यान रखें, गर्मी में अगर कहीं से आए तो ठंडा पानी ना पिए और थोड़ा नॉर्मली पानी पिए, इसी वजह से लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है।
0: हाँ जी बिल्कुल, और अभी मौसम भी बारिश वाला कभी भी हो जाता है, तो रेन कोट अपने साथ हमेशा रखें, छाता भी रखें।
1: मेरी भी पिछले काफी दिनों से तबीयत खराब थी तो इसी वजह से हेलो फरमाइश में आपसे जुड़ नहीं पाए थे, आज थोड़ी तबीयत में सुधार है तो आज हेलो फरमाइश में आपसे जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपसे बात करके।
0: अरे वाह, आपकी आवाज में एनर्जी तो बहुत है, लग ही नहीं रहा कि आपकी तबीयत खराब हुई थी।
1: जी मैम, एनर्जी पिछले काफी दिनों से तबीयत खराब थी, अब बेहतर है, इसी वजह से आज आपको फर्स्ट टाइम कॉल ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम में ही आपसे बात हो गई तो ये बहुत अच्छा है, और हमारी ये बेहद खुश नसीबी है कि हम आपसे बात हो रही है।
0: जी सर, तो बताइएगा कौन कौन दोस्त हैं आपके साथ जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको?
1: जी मेरे साथ में मेरे दोस्त है ग्राम खेत अंडे से मोहम्मद कामिल, मोहम्मद तालिब परवेज, और जितने भी रेडियो साथी सुन रहे हैं, फीमेल हो चाहे मेल हो, डेडिकेटेड रहेगा ये सॉन्ग।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, शुक्रिया, सुनवाते हैं आपके पसंद के प्यारा सा ट्रैक। बाय, मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक कुमार सानू जी की आवाज़ में, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: Mix it in the house.

दोस्तों हम आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं गए हैं, हम आपके पास ही हैं। जी हाँ, आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और शो तो आपको पता ही है कि एवरीडे आपके लिए हम हाजिर हो जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो हमारी मैं ज्वाइन करती हूँ आपको, एंड सैटरडे ज्वाइन करती है रीना जी। और अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी डियर। आपका शायद नेटवर्क इशू है, एंड प्रॉपर मुझे आपकी वॉइस नहीं मिल पा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर जब भी आप मुझे कॉल करें तो प्लीज़ नेटवर्क एरिया में आके कॉल करें, ताकि आपकी वॉइस प्रॉपर मुझे आए और सुनने वालों श्रोताओं तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं? अच्छा लगता है ना जब अपनी बातें होती हैं रेडियो पर, तो मतलब श्रोताओं को सुनने में अच्छा लगता है, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा जब आप कोई भी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं और वो स्पष्ट रूप से क्लियर एकदम वॉइस आपकी तमाम श्रोताओं तक जाए, आपकी दिल की बातें। एंड अभी फ़िलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। मैं आती हूँ बस दोस्तों।

0: हाय, क्या आवाज थी दोस्तों, कितना प्यारा गाना सुना अभी आपने नीति मोहन जी की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ
1: हेलो।
0: जी, क्या नाम है आपका, कहाँ
1: नाम है मेरा
0: से बात कर रहे हैं सो?
1: जी, केरल से। केरल
0: किरल से बात कर रहे
1: से बात
0: हैं।
1: कर रहे हैं, रहने वाले मुरादाबाद
0: हाँ,
1: के।
0: आई रिमेम्बर, मुझसे आपकी बातचीत हुई थी पहले भी। हेलो फरमाइश में, राइट जी, बताइएगा अभी कैसा वेदर है वहाँ का।
1: वहाँ का वेदर बारिश है, 4-5 दिन से तो बहुत बारिश थी, आज थोड़ी कम है।
0: अच्छा, ओके, रेगुलर बारिश हो रही थी लेकिन आज हल्की बारिश है, राइट।
1: हाँ, ठंडे से बहुत ज्यादा बारिश थी। आज भी मौसम है बारिश का, मगर हुई नहीं है इतनी,
0: ओके
1: मगर 4 दिन से तो इतनी थी कि बहुत ज्यादा।
0: ओके सर, अभी फिलहाल थोड़ी राहत मिली है जी, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे सर।
1: जी, फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, एक लड़की चाहिए खास खास।
0: ओके, तो चलिए ट्रैक सुनवाते हैं आपके पसंद का, आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका। तो
1: ठीक है।
0: चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, एंड मैं इसी गाने के साथ लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। और यहाँ पर रीना जी भी आ गई है अपना शो लेकर। जी हाँ, जो आपको करने वाली है 5 से 7, क्या करने वाली है, हाँ जी, एंटरटेनमेंट का डोज देने वाली है आपको, सुनवाएंगी बेहतरीन गाने एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी तक आपने नहीं जानी है, जो आपको नहीं सुनने को मिली है, वो सब आपको मिलने वाला है। और मुझे दीजिए अब जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह 10 से 12, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। मैं होती हूँ अब 9-2-11, बाय बाय, टेक केयर।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि मैं व्यान न करो न तेरे नाल। आए हाय क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है। और इसी गाने के साथ आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 9:09 हो चुके हैं, गुड वाली इवनिंग है। और देखिए आज का जो टेम्परेचर है ना, यानी कि कल जितनी बारिश हुई थी या सुबह उतनी तेज धूप निकल गई थी है ना, लेकिन अभी यानी कि जो बादल है ना वो छाए हुए हैं। क्या पता रात को बारिश आ जाए तो मजा ही आ जाएगा आज रात को भी। वैसे भी 3 दिन से वेदर तो भाई साहब सच बताऊं मजा आ गया है, वरना गर्मी में ऐसे इंसान तप रहे थे ना कि नहा के निकलो तब भी ऐसा लगता ही नहीं था कि नहा के आयो, पसीने इतने ज्यादा आते थे, नहाते नहाते पसीने आते थे। अब बताओ तो अर्जेंटीना 2 घंटे के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं, ढेर सारी बातें करने के लिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है एंड कौन सी मूवी भैया रिलीज होने वाली है, इसका इंतजार हमें बहुत ही बेसब्री से होता है। और देखिए जब आंधी तूफान आए, क्योंकि आंधी तूफान भी बताया गया है, तो आप सभी से यही कहूंगी कि खुले एरिया में जाने से बचे। और इस मानसून में आपने क्या करना है, पहाड़ों के घूमने के शौकीन तो हम देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन मानसून में पहाड़ों पे घूमने से थोड़ा सा अवॉइड करिए, इस टाइम मत जाइए। क्योंकि इस टाइम अगर आप घूमने जा रहे हैं तो भाई मानसून में जो पहाड़ है ना वो डगमगा जाते हैं थोड़े से, इसीलिए घर रहिए और घर से ही आनंद लीजिए और घर पे ही इंजॉय करिए। और अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट रहिए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।

हाय हाय, इसीलिए कहती हूँ जी वॉल्यूम बढ़ा के रखिए। चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप कहीं से भी, चाहे आप खेत में बैठकर रेडियो सुन रहे हैं, सो आपने वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आप आज जो रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 5:19 हो चुके हैं। और श्रोताओं देखिए, ये समय होता है यानी कि ऑफिस से घर के लिए, लेकिन देखिए हेलमेट और सीट बेल्ट की मैं बात डेली करती हूँ, वो पहननी भी चाहिए हमें, हमारी सेफ्टी के लिए है। देखिए हम ना क्या है ना कि कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, लेकिन सोचिए अगर हमें उसी जगह ये कहा जाता कि जो हमेशा रेगुलर बाहर निकलता है घर से तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाता है और उनको अवार्ड मिलना चाहिए, तो अगर ऐसी बातें आ जाए ना तो मैं कहती हूँ भाई छोटा बच्चा भी जो निकलेगा ना, जो आजकल के जेंजीज है, वो भी पहन के निकलने लग जाएंगे, क्यों भाई अवार्ड मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अवार्ड से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जान। और इसी बीच देखिए शाम का वक्त ऐसा होता है कि कभी आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हो कि बाहर चलो कुछ खा कर आते हैं, कुछ अटपटा चटपटा, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एकदम आपके पास कॉल आया हो आपके दोस्त का और उसने आपसे बोला हो कि यार चल आज बाहर चलते हैं ना कुछ खा कर आते, कोई मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा घूम कर आते हैं, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है।

और इस मौसम में दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, देखिए अपने सेहत का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इस बारिश में हल्का सा भी भीग जाते हैं तो आपको जुकाम खांसी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इस बारिश में अभी जो बारिश जो शुरुआत हो रही है ये ऐसी बारिश है जिसमें अगर आप भीगते हैं तो जुकाम खांसी होता ही होता ही है। और ऐसे में आपने अवॉइड करना है जो ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो आपने अवॉइड करना है। आई नो कि आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे घूमने के लिए तो बहुत से ऐसे कह देते यार जहर को जहर ही काटता है, पी लेते हैं क्या ही जाता है, लेकिन उसके बाद जब घर आते हैं जब अच्छी वाली आवाज आती है तब पता चलता है यार काश अवॉइड कर देते थोड़ा सा, है ना। तो आपने मैसेज करके बताना कि आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपको शाम होते ही कॉल करके ये कहते हैं कि यार चल घूमने चलते हैं। और दोस्तों के साथ घूमने पर ना जो पूरे दिन की थकान होती है ना वो छूम अंतर हो जाती है, चाहे आप ऑफिस से निकले हो और कॉल आ जाए कि चल भैया चलते हैं कहीं घूमने के लिए, चल मार्केट चलते हैं, अपने फ्रेंड के बोलते हैं कि चल आज थोड़ा सा घूम कर आते हैं, बाहर घूम ही आते हैं, घर में पूरा दिन रहते हैं और थोड़ा सा बाहर घूमेंगे तो मन अच्छा हो जाता है, पार्क में चल लेते हैं टहलने के लिए। तो आज मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन है कि आपके पास ऐसा कौन दोस्त है, आपके लिस्ट में ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपको डेली कॉल करता हो या फिर वीक में कॉल करता हो या फिर महीने में कि आज बाहर चलते घूमने के लिए। मैसेज करके बताइए, नंबर है 9837 8968।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो श्रोताओं, समय हो चुका है यानी कि 5:29 हो चुके हैं। और आपने क्या करना है जी, बस अर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए, गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है इस भाग दौड़ की दुनिया में ना।

और आज का डे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई को मनाया जाता है बहुत ही स्पेशल डे, यानी कि नेशनल आई फॉरगेट डे। कभी कभी जिंदगी

0: तो गले की बैंड बज जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भूल जाना इंसानी स्वभाव नहीं, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करना और उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपको कभी लगता है कि कोई काम या कोई अपना आपसे छूट गया हो, तो आज ही एक प्यारा सा मैसेज या फोन कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी यही छोटी सी पहल किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बन जाएगी। और हम नहीं, इस बिजनेस शेड्यूल में भैया भूल ही जाते हैं, तो अपनों को याद करना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास आप बहुत दिन से सोचते हैं कि यार मैसेज कर दे, कॉल कर ले, उसके लिए टाइम निकाल ले, तो यार निकाल लीजिए। टाइम निकालना अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने खास के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आज एक और डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व लेख पत्रकार दिवस। खेल के मैदान में खिलाड़ी अपना हुनर दिखाते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और हर पल की जानकारी हम तक पहुंचाने का काम करते हैं खेल पत्रकार। चाहे मैच का हो, हॉकी, फुटबॉल या ओलंपिक की हर जीत, हर हार और हर रोमांच पर पल को, शब्दों को ढालकर दुनिया तक पहुंचाने वाले वो खेल पत्रकारों को आज के दिन हम सलाम करते हैं। तो आज यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, उन सभी पत्रकारों का दिल से धन्यवाद जो खेल की हर कहानी को सच्चाई और जुनून के साथ हमारे सामने रखते हैं और सभी खेल के बारे में हमें बता देते हैं। तो उनको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और हमें अपने ज़िंदगी में ना, देखिए हम डेली जीते तो ज़रूर है, लेकिन हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि आज का डे, आज का दिन कितना हमारे लिए खास है, क्योंकि इन चीज़ों का पता करना भी बहुत ज़रूरी है। और अपने सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, वरना पता चले कि बोलते बोलते भी कभी कभी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती कि हमें खुद को भी नहीं पता चलता है। लेकिन चलिए आपको एक गाना सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार। लेकिन गाना सुनवाने से पहले श्रोताओं, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो जाता है, जो कि ध्यान ही नहीं रहता भैया, और बाद में पता चलता जब टाइम देखते, अरे वाह ये एड का टाइम हो गया था भैया। एड प्ले करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: तेरा बापू या लदेनता नहीं।

क्या बात है जी, आज के टाइम में कदर करनी चाहिए, नखरे थोड़ा कम करने चाहिए, और नखरे वहां करने चाहिए जहां आपको लगे कि हाँ भैया नखरे वहीं करने में फायदा है जहां आपके नखरे उठाए जाए। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आपने कितने नहीं जाना है, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं। वेदर अपडेट की बात करूं भैया, तो देखिए आज मुरादाबाद में तो बारिश नहीं आने वाली है, लेकिन कल बारिश की संभावना जताई जा रही है। और याद है कि हरिद्वार ऋषिकेश में यानी कि 8 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से जो वहां की पानी है, गंगा जी का जो पानी है, उसका अलग रुद्र अवतार चल रहा है इस टाइम। तो आप इस टाइम सोच रहे कि हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए, तो कुछ दिन के लिए अवॉइड करिए, उसके बाद घूमने जाइएगा। बाकी वहां का जो वेदर है बहुत ही चिल्ड कूल वाला वेदर हो चुका है, और इस कूल वाले वेदर में सच बताऊं बड़ा ही मजा आता है। अगले यानी कि एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि खेतों में धान लगाने की जो अलग ही परंपरा है भैया, इस टाइम खेतों में बड़ा मन लगता है। मेरे पास मैसेज भी आए हैं, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम, रीना मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं, आपके स्टाफ में सब कैसे हैं? हाँ जी, हमारे स्टाफ में बहुत अच्छे हैं, और इनका कहना है कि दोस्तों के साथ आज फैक्ट्री देखना है, देखने जाना है इनको, लेकिन बाइक से जाऊंगा और हेलमेट भी पहन के जाऊंगा। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, हेलमेट पहन के जाना चाहिए। ये हमारे साथ पिंटू जी कनेक्ट होते हैं। और अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो? गाने बड़े ही बिंदास प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच। और दीपक जी के मैसेज की बात करूं तो इनका कहना है कि रीना जी देखिए, आप हमेशा यही बताती है कि हेलमेट सीट बेल्ट हमें जरूर लगाना चाहिए, बाकी मैं आपकी बातों का फॉलो जरूर करता हूं जो आप बोलती है, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। जब भी मैं घर से बाहर जाता हूं ना, तो आपकी बातें मेरे दिमाग में एकदम याद आ जाता है, तभी मैं जाके हेलमेट लेता हूँ। और अच्छा करती हैं कि आप डेली याद दिलाती है, वरना हम तो भूल ही जाए भैया कि 2 कदम की दूरी पर भी जाना है तो हेलमेट नहीं लेके जाना है। लेकिन थैंक यू सो मच, शुक्रिया कि आप डेली अपने शो में इस चीज़ को रिपीट करती हैं, डेली बोलती हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने चाहिए, लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें ये हमारी सेफ्टी है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने, इसमें हमारी सेफ्टी है। और एक और शानदार गाना उसके बाद लौट कर आएंगे श्रोताओं, और बात करेंगे क्योंकि इस टाइम ना खेतों की जो रौनक है वो अलग ही होती है, नेक्स्ट लेवल वाली रौनक होती है खेतों की जो रौनक है, सो उसके बारे में बात करेंगे। बस आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है, और आपसे यही कहेंगे देखिए मैसेज कर रहे, एकदम मैसेज करके डिलीट मत कर दीजिए। चलिए जी,

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया भैया। ना गोरे होने में फायदा है ना काले होने में फायदा है, मतलब क्या क्या चाहिए इंसान को गोरे हो जाए तो ज्यादा गोरे हैं, काले हो जाए तो ज्यादा काले हैं। खैर छोड़ते इन बातों को, क्या करना, जैसे भगवान ने बना दिया वैसे हम सुपरस्टार सुपर हीरो है ना। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल हम बात करने वाले थे खेतों के बारे में, क्योंकि ये जो मौसम होता है इस टाइम खेतों में, यानी कि धान लगाई जाती हैं, और खेतों का जो रौनक है ना घर से भी ज़्यादा फैंटास्टिक वाला, सुकून भरा वाला होता है। सच में इस टाइम खेत में ना रौनक ही रौनक आपको मिलेंगे। कहीं भी चले जाइए, धान लगाने वाले भैया होते हैं, और कभी मतलब देखिए हम घर पर खाना तो हमेशा ही खाते हैं ना, लेकिन कभी ऐसा आपने प्लानिंग की है कि भाई खाना बनाकर हम घर वालों के साथ खेत में जाकर कहीं आराम से बैठकर खाना खाएंगे, नेचर फील करते हुए। और जब नेचर के साथ आप बैठकर खाना खाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो नेचर आपसे दुगना प्यार करता है। सो कभी आपने ऐसा, देखिए हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, बाहर दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये प्लानिंग की है कि आज का खाना चलिए बाहर चलते हैं, खाना बनाकर लेकर चलते हैं, अब विद फैमिली के साथ चलते हैं, खेत में चलते हैं, वहाँ पे ट्वेल चलती है ना, तो बहुत ही ट्वेल के जो पानी है ना भैया, सच बताओ बहुत ही शीतल, बहुत ही ठंडा, बहुत ही चिल्ड होता है। जो कि हम फ्रिज से जितना चिल्ड पानी पीते हैं ना, उससे ज़्यादा चिल्ड पानी होता है ट्वेल का। तो कभी आप खेत में जाए और प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। नंबर है 9837896896 पर। देखिए मैसेज करना बिल्कुल नहीं भूलना है जी, क्योंकि अगर आप मैसेज करना भूल गए तो देखिए भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे आपसे, सही बता रहे हैं हम, इसलिए मैसेज करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये अगला गाना है वो भी बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि इस टाइम हर कोई बाजार की तरफ ही जाता है चलिए गाना सिर्फ आपके लिए है।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यूनिंग करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सजा दूंगी मैं।

हाय हाय, हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:10 हो चुके हैं श्रोताओं। और जो बाहर का वेदर है, ओहो भैया, थोड़ा सा उमस भर गई है, उमस वाली वेदर हो गई है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूँ कि जिन बच्चों ने यानी कि रीनीट एग्जाम दिया था, उनको ये अब उनके लिए एक खबर आ सकती है। यानी कि ये है कि ये कहा जा रहा है कि भैया 20 जुलाई को उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। सो भाई, जिनके पेपर बहुत अच्छे गए हैं उनके तो बल्ले बल्ले, जिनके थोड़ा सा लगता है कि डाउट है वो भी बिंदास रहिए, क्योंकि जब रिजल्ट जब तक ना आए जब तक टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पता चले भैया अभी रिजल्ट के लिए अभी टाइम है, और अभी से ही सोच सोच कर बुरा हाल कर लेते हैं, इसीलिए सोचना बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप सोचते हैं ना तो आपकी बॉडी पर तो असर दिखे ना दिखे, लेकिन फेस पर ज़रूर असर दिख जाता है। फिर उसके बाद झुरियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए टेंशन किसी भी चीज़ में नहीं लेना है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस इतना दिमाग में रखिए। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द 20 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सो जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो भैया तैयार रहिए 20 जुलाई के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और समय की बात करूँ तो 6:12 और एक बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय करते हैं, और इसी के साथ मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए यानी कि कड़क कड़क क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ।

और मेरे पास विक्की सागर जी का मैसेज आता है और इनका कहना है कि रीना जी, स्टेशन रेलवे पर, रेलवे के साइड से अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर जाम लगा हुआ है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि कल परसों और भी जाम रहेगा, कोई एग्जाम होने वाला है तो इसीलिए कल और परसों भी यानी कि भैया जाम रहने वाला है। उस तरफ से अगर जाएंगे तो थोड़ा सोच समझ के जाइए, जाने से पहले लोकेशन जरूर डालिए कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वहां आपको जाम मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। देखिए लोकेशन इन्होंने फोटो भी भेज दिया है मुझे विद प्रूफ भैया, रेलवे स्टेशन की तरफ से आप जा रहे हैं तो देखिए ट्रैफिक में आप फंस सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप घर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, तो एक बार लोकेशन जरूर डालिए। अगर लोकेशन में आपको ग्रीन दिख रहा है तो समझिए कोई भी ट्रैफिक जाम आपको नहीं मिलेगी। अदर वहीं अगर थोड़ी कुछ ग्रीन के बाद आपको रेड दिखे तो समझ लीजिए आपको ट्रैफिक जाम तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते श्रोता। और आप भी बता सकते हैं कि आप ऑन द वे हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो तो हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए। नंबर है 9837896।

0: 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

सुनकर दिल हो जाए मस्त मगन हो जाता है ना श्रोताओ। पता है मुझे अर्जेरिना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 6:22 हो चुके हैं और इसी बीच में लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। और कड़क सवाल में आज क्या होने वाला है श्रोताओ, बस आज तो देखिए थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि आखिरकार आंसर आज क्या होने वाला है। सो आज का कड़क सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी बात वॉल्यूम थोड़ा हाई कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप समझ नहीं पाए, इसीलिए वॉल्यूम थोड़ा हाई करिए और ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, शांति के साथ बैठ कर सुनिए। देखिए शांति के साथ नहीं बैठना है, बस शांत होकर बैठना है। सो आज का हमारा कड़क सवाल ये है कि एक पुलिस का बेटा वकील है लेकिन वकील के पिता जज है, तो बताओ पुलिस कौन है। श्रोताओं आपने सोचना है और हमें मैसेज पहुंचाना है भैया कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वंस अगेन एक बार और सुनिए कि आखिरकार आज का कड़क सवाल क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो पहले वर्ड में ही आ जाएगा इसका आंसर। एक पुलिस का बेटा वकील है लेकिन वकील के पिता जज है, तो बताओ पुलिस आखिरकार है कौन। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896, क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है श्रोताओ। सोचिए और अभी लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, कहीं नहीं जाना जी, मेक अरे अरे कितने नहीं जाना जी, अर्जेरिना के साथ कनेक्ट रहना है और गाना सुनते हैं शाम शानदार। आय हाय।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। आप लव आजकल मूवी से आपने एक गाना एंजॉय किया है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जिसके यानी कि टूटे दिल का जो मलहम लगाते हैं उनका नाम है अरिजीत सिंह जी। बिल्कुल, उनके गाने सच बताओ जीता जागता यानी कि जो सैड होता है इंसान ना उसके अंदर जान भर देते हैं इनकी मधुर आवाज़। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजा।

लगा दी गई है मेटा को, यानी कि साफ साफ रोक लगा दिया है कि ये जो चीज़ें हैं यूज़र नेम वाला है, इसे स्कैम रोकी नहीं जा सकती, इसे स्कैम बढ़ सकती है। इसीलिए ये चीज़ें हैं, अभी इसको बंद ही कर दिया जाए, अभी कोई ऐसा फीचर नहीं आने वाला है व्हाट्सएप पर, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो जहां बहुत से खुश हो रहे थे कि वाओ बिना नंबर शेयर करे ही काम चल जाएगा अब तो, लेकिन भैया अभी नहीं चलने वाले, वो थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया गया। अभी आगे शुरू होए ना होए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखिए हमारा कड़क सवाल तो शुरू हो चुका है, बस आपने सोचना है भैया और राइट आंसर देना है। फॉर एग्जांपल हम आपको बाद में बताएंगे आज। सो आज का हमारा कड़क सवाल यही है, आपने थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आखिरकार ध्यान से सुनिए पहले तो, एक पुलिस का बेटा वकील है, लेकिन वकील के पिता जज है, तो पुलिस आखिरकार है तो है कौन? ये बताना है जो सोचकर। नंबर है 9823789698 जो आप सभी को जुबान पे रहता है ये नंबर, अगर नहीं रहता तो भैया सेव कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो काम चलता नहीं है, है ना। सो वंस अगेन एक बार और रिपीट कर रही हूँ, एक पुलिस का बेटा वकील है लेकिन वकील के पिता जज है, तो बताओ पुलिस कौन है? अपनी फैमिली है जी, इतना मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया आपको। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक और शानदार गाना, उसके बाद लेकर आएंगे और भी ढेर सारी बातें।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई

0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: को बेस पसंद है।
1: आय हाय क्या बात है जी, बेबी को बेस पसंद है।
0: जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है।
1: नाचने से चेहरे पर ग्लो आता है श्रोताओं, तो डांस करिए पसीना बॉडी से। देखिए पानी पीने से फायदा होता है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होता है कि आपकी बॉडी से जब पसीना निकलता है। चलिए जी, बेबी को बेस पसंद है तो बहुत ज्यादा पसंद है। फिलहाल आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और श्रोताओं, समय की बात करूं तो यूनिवर्सिटी शो में आरजे रीना के साथ है, यानी कि 6:41। और मैं आपको बता दूं, देखिए आप शादी में जाने के शौकीन हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती भैया, इतनी गर्मी में शादी कौन करवाता है भैया। ऊपर से इतने महंगे मेकअप करवा लो और वो भी नदी के पानी की तरह बह जाए, तो फिर क्या ही फायदा। फिर पछताते हैं कि भैया आखिरकार हमने पैसे क्यों वेस्ट करे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपका अगर मैं शादी में कहूँ चलने के लिए तो आप चलेंगे? पहले बताइए, अगर मैं देखती हूँ कि किनका किनका मेरे पास मैसेज आता है, अगर हाँ का मैसेज आता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। फिलहाल के लिए गाना, पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ शादी में चलना चाहते हैं। चलना चाहते तो जरूर मैसेज करिए। ये गाना एंजॉय करिए फिलहाल।

देखिए हाँ का मैसेज करना है अगर आप शादी में चलना चाहते तो मेरे साथ। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान है भैया, बहुत ही ज्यादा, बस सोचना थोड़ा सा पड़ेगा, दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जलानी पड़ेगी आप लोग, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे आंसर, और वो फैमिलीज है बस। सो यानी कि आज का कड़क सवाल ये है, एक पुलिस का बेटा वकील है लेकिन वकील के पिता जज है, तो बताओ पुलिस कौन है? सोचिए सोचिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ, और मैसेज आ चुके हैं जी प्यारे प्यारे कि हम चलेंगे मैडम जी आपके साथ शादी में। लेकिन जहाँ शादी है वहाँ जा नहीं सकते, दिक्कत इस चीज की। अब वो शादी है यानी कि देखिए, पहले मैं टाइम बता देती हूँ, 6:48। आज रीना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और हम शादी की बात कर रहे थे, यानी कि आमिर खान हैं वो तीसरी शादी करने वाले हैं 5 जुलाई को। जी बिल्कुल सही सुना, जहाँ हम जा नहीं सकते है ना, लेकिन कोई बात नहीं, घर पर पार्टी कर सकते है ना, पार्टी करने का अलग ही मजा आता है। करेंगे देखिए, वहाँ जाएंगे इतना पैसा लगेगा, फिर वापस से खाना खा के वापस आ जाएंगे, इससे अच्छा कि घर ही पार्टी कर लेते हैं ना फैमिली वालों के साथ। वहाँ तो जा नहीं सकते जी शादी में, लेकिन एक कड़क सवाल है जिसका आंसर मेरे पास आ चुके हैं, बहुत कंफ्यूज है बहुतों के, आखिरकार राइट आंसर किन का है, अभी तक तो एक का ही पता चला है। फिलहाल अब बारी सिर्फ और सिर्फ आपकी मैसेज की है, सो सोचिए और मैसेज करिए। आज का कड़क सवाल ये है कि एक पुलिस का बेटा वकील है, लेकिन वकील के पिता जज है, तो पुलिस कौन है? मैं बता रही हूँ जी आपकी विद फैमिली है, इतना तो समझ जाइए और मैसेज कर दीजिए, नंबर है 9837896896। देखिए भगवान जी ने थोड़ा रहम कर दिया है, यानी कि जहाँ 35 और 34 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। फिलहाल एक बहुत ही शानदार गाना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी

क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना सुना है श्रोताओं। और अब हम बढ़ेंगे आप सभी के ओए होए जी प्यारे प्यारे जो मैसेजेस आ चुके हैं ना, उस तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार किनका क्या मैसेज आया है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट हैं भैया इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 6:53 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज का कड़क सवाल, यानी कि एक पुलिस का बेटा वकील है लेकिन वकील के पिता जज है, तो पुलिस बताना था आपने कि कौन है, स्त्रीलिंग है या पुलिंग है। अब तो समझ जाइए, थोड़ा सा समझ जाना बहुत जरूरी है। चलिए जी, फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। रीना, जय श्री राम। रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी, मुंबई महाराष्ट्र से।

क्या बात है, सच बताऊँ ये जो मैसेज आया ना मेरे पास, सच में फैंटास्टिक वाला मैसेज आया भैया। सच में इतना शानदार कि इन्होंने एक एक चीज के बारे में प्रॉपर लिखा है, समझाया है कि समझिए इसको, ऐसे हो सकता है ये। ये हमारे साथ राधिका जी कनेक्ट होती हैं और इन्होंने लिखा है कि पुलिस वाली माँ है, जज पिता है। ओके, और समझिए आखिरकार ये आगे लिखती है, समझो पुलिस का बेटा वकील है, यानी एक महिला पुलिस अफसर का बेटा वकील है। वकील का बाप जज है, यानी वकील के पापा जज है। ओके, बिल्कुल जी सही समझाया आपने, मतलब वकील की मम्मी और पापा में मम्मी पुलिस है और पापा जज है। अरे अरे क्या बात है जी, उन्होंने तो पूरा समझा दिया भैया। अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबली अनजान जी। गीता कश्यप, आपके सवाल का जवाब है और उत्तर है इसका पुलिस की माँ। ओके, यानी कि पुलिस का माँ है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो मुरादाबाद से रणवीर सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। पुलिस का बेटा वकील है, जब वकील के पिता जज है तो वकील की माँ ही पुलिस है। ओके, क्या बात है भैया, मुझे लगा था कि नहीं आएगा राइट आंसर, लेकिन सबने राइट ही आंसर दिया है। ओ माय गॉड, जय हो जय बाबा की। और ये ललिता जी कनेक्ट होती हैं, इनका कहना है हाँ मैं चलूंगी। अच्छा, शादी में बोला था मैंने चलने के लिए, तो इन्होंने बोला कि मैं चलूंगी। भगवान की दुआ से हम पहले से ही बहुत सुंदर है, हमें मेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें मेकअप करवा तो वो बहर जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान की जो कुदरती है, भगवान ने जो बनाया है वो बहुत ही शानदार बना के भेजा है मुझे, तो मेकअप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल जी सही कहा आपने। और अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। इनके परम मित्र है सैयद शारिक अली निजाम अली। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो म्यूजिक

0: मस्ती सुन रहे हैं, यूनिक यानी कि यूनिक मस्ती सुन रहे हैं, क्या बात है जी। और बहुत अच्छा लग रहा है और गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच सर। और इनका कहना है कि पुलिस की पत्नी है। कंफ्यूज नहीं होने का सर, ठीक है जी। अगले मैसेज की बात को तो पूनम जी कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि माँ है। अब तो देखिए आपने सुनकर मैसेज किया है जी, गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये राहुल जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए भैया मुरादाबाद से, और इनका कहना कि पिता है। अरे पिता तो जज है जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो अंशिका जी कनेक्ट होती हैं बुद्धि बिहार से, और उनकी इनकी बुद्धि बहुत ही तेज है भैया। इन्होंने कहा कि यानी कि पुलिस जो वकील है वो लड़का उसका जो बेटा है यानी कि, और उसका पिता जज है, तो बताइए मैडम माँ है उसका राइट आंसर। अच्छा जी, बिल्कुल जी, सही कहा आपने। चलिए जी, और सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर पहुंचा है जिन्होंने बड़े ही प्यार से समझाया भी है। ये हमारे साथ यानी कि आज विनर बनती है इवनिंग मस्ती शो में राधिका जी। सो राधिका जी आप विनर बन चुकी हैं, तो आपको भी पता है कि रीना एक ही बात बोलती है, जो आपको पसंद है वो खाइए, बिंदास होकर बेधड़क होकर खाइए, ठीक है जी। और यहीं मैं लेती हूँ जाने की इजाजत। राधिका जी ने भाई सच बताओ भाई शानदार मैसेज किया है, और इसे बाकी आप सभी ने भी राइट आंसर पहुँचाया श्रोताओं, और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कि इतना आप सभी का प्यार मिलता है तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल है संकट चतुर्थी, यानी कि गणेश जी की पूजा की जाएगी, यानी कि गणपति बब्बा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। तो कल है भैया संकट चतुर्थी, जो फास्ट भी रखा जाता है, भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाती है। ज़रूरी नहीं है हर कोई फास्ट रखे, जो रखते हैं वो रख सकते हैं, बाकी हम पूजा तो कर सकते हैं ना सुबह सुबह। बिल्कुल जी, पूजा करिए, क्योंकि गणेश जी यानी कि प्रथम पूज्य भगवान जी है, तो इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए जी। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और एक बहुत ही शानदार गाना, लेकिन टाइम हो गया है जी कमर्शियल एड ब्रेक का, और उसके बाद मैं लेने वाली हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। आपको हम मिलेंगे क्या जी, कल मिलने वाले सेम टाइम एंड सेम जगह करेंगे क्या, ढेर सारी बातें जी। अभी के लिए बाबा टाटा, क्योंकि हम बारिश में भीगे तो जुकाम खांसी बहुत हो गई, हमें भी आप मत भेजिएगा।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
8: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
8: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
7: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
9: और बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अच्छा, एक विमेंस के लिए सही खान पान से न्यूट्रिशन का होना कितना जरूरी है? अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक फीमेल के लिए उसका डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफस्टाइल को बदलने में?
10: सी यार, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये अभी हो रही, ठीक है? पुराने जमाने में आप अपनी दादी नानी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बोलते थे, मतलब माई दादी यूज्ड टू से कि हमें तो हमारे हस्बैंड छूते थे और बच्चे हो जाते थे। पता नहीं आजकल की लेडीज का क्या हाल होने लगा है। ये तो इनफर्टिलिटी ही ट्रीट कराती रहती है, IVF करा रही है। प्रॉब्लम क्या थी? सी प्रॉब्लम थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस वो इतने एक्सपोज नहीं थे केमिकल्स के लिए। बैलेंस डाइट ले रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज इन अ सेंस, हमारे सारे काम जो होते थे मैनुअल होते थे, ठीक है? प्रॉपर स्लीप लेते थे। और जब से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ गया है, बच्चे रात भर 2-2 बजे तक ही मोबाइल ही देखते रहते हैं। दिस इज अ रेडिएशन, है ना? आप रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, प्लस उनका खान पान बदल गया है, हर चीज स्विगी हो गई है। हर चीज स्विगी हो गई है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ मंगा रहे हो, ठीक है। बाहर का खाना ऑब्वियसली आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आएगा, आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है,
9: करेक्ट,
10: ठीक है। हाँ, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज कैब्स पे आने लगी है, तो इवन पार्क में भी यू विल गेट अ वेरी लेस गैदरिंग,
9: करेक्ट
10: ना। तो दिस ऑल लीड टू लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ये PCOS, PMS कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट इज ओनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कि आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। आप कार लेते हो, ठीक है, कार लेते हो तो कार की सर्विस कराना जरूरी है, वंस इन अ ईयर उसकी सर्विस होना जरूरी है। आप नहीं कराओगे तो 2-3 साल बाद उसका माइलेज जीरो है, ऐसी आपकी बॉडी का हाल है। अगर आप उसको नहीं सर्विस करेंगे, उसको नहीं नेचुरल चीजें देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नहीं रिएक्ट करेंगे। एंड आई एम गेटिंग PCOD के पेशेंट, इतनी जिद्दी PCOD कि हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे साइकल्स ऑफ हार्मोन दे चुके हैं, बट बेसलाइन बॉडी आने को तैयार।
9: बिल्कुल मैम, यू नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, ये चीजें मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत ही नहीं, वैसे लोगों को खुद ही इन चीजों को समझना चाहिए, बट आजकल का लाइफस्टाइल अलग ही हो गया है ना, बात ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज और है, आजकल का स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तो हमने बात ही कर ली, आजकल का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और हमारा खान पान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन कहीं ना कहीं बनी जाए।
10: Exactly.
9: जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल हर चीज ऑनलाइन करानी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है, फूड ऑनलाइन करना है, हर चीज की फैसिलिटी उन्हें घर बैठे ही चाहिए।
10: Exactly.
9: तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल, आपने ये चीज पे अभी जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, हमारा भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी प्लीज आप कीजिए, अगर जितना हो सकता है ना आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार शाम को बाजार निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, आज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ये सब चीजें जो हमें उस तरफ लेके जा रही है जिस तरह हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज हम जहाँ पहुंच गए हैं कहीं ना कहीं
10: तो वर्स ही होंगी।
9: एब्सोल्युटली,
10: कहीं ना कहीं इंटरवेंट, राइट,
9: करेक्ट करेक्ट। अच्छा मैम, जो लोग अभी अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले कपल्स को किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से हेल्थ चेकअप है जो उनको डेफिनेटली दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए।
10: 5 मोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक, प्री प्रेगनेंसी आप अपना चेकअप कराएं, बेसलाइन, ठीक है। दूसरी बात, फोलिक एसिड स्टार्ट करें। जब भी आपकी प्रेगनेंसी प्लान है उसके कम से कम 3 महीने पहले हम ये कहते हैं कि आप फोलिक एसिड काम करना शुरू करें। तीसरी चीज, थायराइड, शुगर, ये सब आप बेस टेस्ट कराएं। चौथी चीज, हेल्दी वेट मेंटेन करें। और 5वीं चीज, यदि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल इंटेक है तो ये बिल्कुल बंद हो जाए।
9: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम, सोशल मीडिया का थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा ये चीज को मैंने देखा फॉलो करती है। तो मतलब कोई भी आ गया, किसी ने भी आके ज्ञान दे दिया, आप ये चीज करो, आप ये रेमेडी करो, ये करो, और लोग वो करते भी हैं।
10: Exactly.
9: तो क्या ये विमेंस को करना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो घर में महिला है, उनको ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया देख के फॉलो करना चाहिए?
10: नहीं, एक्चुअली इससे ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको कि सीजर की हिस्ट्री थी, सीजर डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते थे,
9: ठीक है, ठीक है,
10: पूरी टर्म प्रेगनेंसी थी, बट उसने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें कोई दवाई जो थी वो खा रही थी। अब वो OPD में रूटीन चेकअप के लिए आई थी और रूटीन चेकअप के लिए बाहर बैठी थी और उतने में उसको सीजर्स आने लगे, एंड शी स्टार्टेड ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड आने लगा, okay. और वो आने लगा, तो उस वक्त, और प्लस बच्चे की धड़कन जाने लगी, तो हमें एकदम इंटरवीन करके उसको सिजेरियन में लैंड करना पड़ा। हालांकि वो सेकंड ग्रेविडा थी, तो आई वुड नेवर गो कि दूसरा बच्चा, पहला बच्चा नॉर्मल है, तो आई वुड हैव ट्राइड कि मैं नॉर्मल कराऊंगी, बट मेरे सामने उस वक्त इट वॉज एन इमरजेंसी, डाइंग इमरजेंसी, कि मुझे बच्चा और माँ दोनों बचाने थे। तो उसके लिए हमने जल्दी से OT शिफ्ट किया गया, पेशेंट इंट्यूबेट हुई, 2 दिन ICU में रही। तो दिस कुड ऑल बी प्रिवेंटेड कि अगर आप एक न्यूरो फिजिशियन का रेफरेंस कर लेते, टाइमली हम इंटरवीन करते, प्लान करके डिलीवरी कराते। सो दिस इज ऑल डिवास्टेटिंग इफेक्ट। अब उसमें सोशल मीडिया में हर कोई डॉक्टर, आप पहले उसकी डिग्री तो एटलीस्ट टैली करें,
9: करेक्ट,
10: कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। प्लस सोशल मीडिया पे कभी दवाइयां फॉलो नहीं करनी चाहिए,
9: करेक्ट,
10: कैन फॉलो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, या फिर सोशल मीडिया इज ओन, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई ओनली मेक कि ये पेशेंट के सीरियसनेस है, इसमें डॉक्टर को दिखाएं। इट इज नॉट लाइक आप दवाई खाने लगोगे उस सोशल मीडिया से ना,
9: करेक्ट,
10: सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस ले, क्रॉस चेक करे, डाउट्स हो तो डॉक्टर से पूछे, जितनी भी बात है आप 10 मिनट 15 मिनट आप उस OPD में बैठे हैं तो यू कैन आस्क एवरीथिंग यू वांट। तो उससे ये जो अचानक से लास्ट में डायग्नोसिस बनती है ये नहीं बनेगी। तो सोशल मीडिया का प्लीज फायदा उठाएं, इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, आई अपडेट कि थोड़ा सा पेशेंट को ये लगना चाहिए, पेशेंट फील कि हाँ भैया मैम घर का पार्ट है, कल थोड़ा सा फनी रील्स, थोड़ा सा ये, सो इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, नॉट कि हम उस पे ट्रीटमेंट, हमने 10 MBBS, PG, so it's all constitute 10 साल की मेहनत. हाउ कैन आई इंस्टाग्राम रील ऑफ 1 मिनट 30 सेकंड रिप्लेस दैट नॉलेज. एंड अब सुपर स्पेशलिटी हो रही है, पीपल आर डूइंग MCH. तो आप ये सोचो कि 13-14 साल की पढ़ाई इंस्टाग्राम की रील से अगर हो जाती है. आई हैव सीन पीपल इनफर्टिलिटी वाले, वो किसी ने बता दिया लिट्रोस से है, लिट्रोस खा रही है, 5 महीने के बाद एक मोटी सिस्ट है, अब वो ओवरी भी खराब हो गई है और हमें सिस्ट भी निकालनी पड़ी है. वी हैव टू ऑपरेट हर बिकॉज हर चीज के साइड इफेक्ट है. पीपल आर ओनली टेलिंग इफेक्ट, देयर नॉट टेलिंग साइड इफेक्ट. तो प्लीज वाइजली चूज करें, अपने डॉक्टर से बात करें. एक कंसल्टेशन महीने में एक बार का कंसल्टेशन होता है. जो भी है आप अपने पेपर पे लिस्ट बना लो. आई ऑल्सो टेल माई पेशेंट की टू डू लिस्ट आप अपने पेपर पे लेके आओ, जितने क्वेश्चन से मुझसे पूछो कि मैम ये करना है या नहीं करना,
9: नहीं करना.
10: और प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही फॉलो करें. यू विल गेट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल की कौन सर्टिफाइड है कौन नॉन सर्टिफाइड.
9: एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया पे कुछ रील्स और व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं और हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड. दूसरी बात, हर मेडिसिन का हर एक कह सकते हैं जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बन सकता है.
10: Exactly.
9: मैम हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है.
10: बी इंड्यूस विद लिट्रोसोल, बी इंड्यूस विद क्लोनिफिन, बी इंड्यूस विद HMG इंजेक्शन.
9: करेक्ट.
10: वी डिसाइड.
9: एब्सोल्युटली.
10: और शुगर के लिए 1000 दवाएं मार्केट में. वी डिसाइड
9: 100%.
10: एंड दैट इज ऑल्सो की वी, ऐसा नहीं है कि हमने एक दवाई लिख दी तो वही 100% दवाई होगी. नो, वी हैव टू चेंज. अगली पेशेंट आया उसने कुछ कंप्लेन करी तो वी हैव टू चेंज दैट दवाई. अगर इतने सही ChatGPT और ये सभी बता देते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था.
9: Got it.
10: एक पेशेंट यूट्रस, वो बेबी अनोमलस बेबी, पूरा अनोमलस जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, उसने ChatGPT पे डाला. ठीक है, वो मेरे पास 26 वीक पे आया. उसका जो लेवल 2 स्कैन था 20-22 हफ्ते का, उस आगे एनोमली जो कि सर्वाइवल मोड पे नहीं था वो बच्चा, तो हमें उसका अबॉर्शन कराना चाहिए था. बट उन्होंने ChatGPT पे डाला. ChatGPT सेड कि कुछ नहीं है कि कंटिन्यू करने का, उन्होंने कंटिन्यू किया. शी केम एट 26 वीक. अल्टीमेटली बेबी की तो प्रोग्नोसिस नहीं थी. वी हैड टू मतलब अबॉर्ट दैट बेबी. बट अगर वो 20-22 हफ्ते पे होता तो मेडिको लीगल चीजें भी कम होती.
9: Absolutely.
10: और प्लस इजी होता. अब जितना बेबी बढ़ जाएगा, प्रोग्नोसिस तो उसकी है ही नहीं. अगर मान लीजिए आप टर्म तक भी पहुंचा दीजिए, उसको पूरे टाइम पे डिलीवर कराइए, अब बच्चा आपके हाथ ही नहीं लगना है. तो फिर ऐसी चीजें ChatGPT से नहीं पूछी जाती, ऐसी चीजें डॉक्टर से पूछी जाती हैं.
9: करेक्ट. तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मोटिव भी यही है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में कोई चीज कर रहा है तो प्लीज ये मत कीजिए, डोंट डू दिस. एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत जरूरी है मैम. क्योंकि जब तक आप सही लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी.
10: सी, और एक गायनी का ना ऐसा नहीं होता कि आप गए आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकलवाना है, काम खत्म हो गया. गायनी से आपको 9 महीने का एक ताल्लुकात बनाना पड़ता है, ताकि जब आपकी डिलीवरी होगी तो शी इज योर होल सोल, क्योंकि उस चैम्बर में वही है. अगर आप फील कनेक्टेड नहीं करते हैं, लाइक आई वॉज देयर इन एन हॉस्पिटल, माई हस्बैंड गॉट शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, आई डिडंट चेंज द प्लेस, आई लेट हिम गो कि तुम जाओ, आई विल नॉट, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही थी. आई कुड फील दैट गायनी एज माई ओन. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेशेंट्स, आप जिसको भी चूज करें उसको रिलीजियसली फॉलो करें और उससे डिलीवरी के टाइम पे कनेक्टेड रहें, सो दैट देयर इज अ स्मूथ डिलीवरी इन पोस्टपार्टम.
9: एब्सोल्युटली. और आजकल तो सोशल मीडिया है अच्छी चीजों के लिए. आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे बैक टू बैक. बट हमारी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ChatGPT, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब पे प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें. मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिसनर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन दी. आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला होगा और जानने को मिला होगा. आई एम थैंक्सफुल टू यू, इतना टाइम आपने निकाला, बिकॉज यू हैव ऑल्सो वेरी बिजी. शी इज नॉट फ्री भाई, जब भी जाओ मैम बिजी इतना ऑक्यूपाइड रहता है आपका. बट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कल का बना, फिर उसके बाद आज का बना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. मैम आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बिजी रहता है आई नो, एंड फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपके लिए दिल से थैंक यू मेरी ओर से और FM मुरादाबाद की ओर से भी. जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश आप देंगी, जो लेडीज या जो जेंट्स आपको सुन रहे हैं?
10: यार आई वुड से भैया मैं लेडीज की डॉक्टर हूँ तो एडवाइस तो सिर्फ लेडीज को ही देनी है.
9: ठीक है.
10: लेकिन जेंट्स को भी एक एडवाइस देनी है कि देखो लेडीज, आप इग्नोर मत करो अपने आप को, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो. सिम्टम देगी, वो सिग्नल देगी और उसको आप एक्नॉलेज करो और उसके लिए ट्रीटमेंट करो. और जेंट्स को सिर्फ यही संदेश है कि अगर आपसे लेडीज कुछ कह रही है तो डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड. ये नहीं कि वो आपका सब्स्टिट्यूट है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलेंगे तब गाड़ी अच्छी चलेगी. सो अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज, बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसा देखा जहां मेल्स ही होते हैं उसे, अरे अरे अरे ठीक है सबको ही होता है, क्या हो गया, ब्लीडिंग ही तो हो रही है, सबको होती है, मेरी मम्मी को भी होती थी. नो प्लीज, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, वो आपके घर की अन्नपूर्णा है, उसके बिना घर नहीं है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपसे वो कुछ कह रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें. उसको भी लगना चाहिए शी इज इम्पोर्टेंट, तो हर किसी का ध्यान वो रख पाएगी, उसको और भी अच्छा लगेगा. आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई हैव सीन लेडीज जिनकी शादियां हो गई होती है इनफर्टिलिटी विद डिप्रेशन. तो मेल्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी अलग नहीं है. यू बोथ आर गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों को एक साथ ही चलना होगा, उसको समझना होगा और उसकी बात आपको सुननी होगी. एंड फीमेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट, सामने आइए और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज बताइए.
9: थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मैसेज, सच अमेजिंग मैसेज, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम. मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप आगे भी आते रहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए.
10: या
9: सो गाइज प्लीज आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6. प्रोग्राम था हेलो डॉक्टर, और आज एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर राशिका गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में थे. मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन, डू शेयर योर फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे आप आके मुझे शेयर कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, और हमारा एफएम का ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिल जाएगा. सो प्लीज आइए फॉलो कीजिए. अच्छा मैम आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे इतनी देर से बातें कर रही हैं, सो प्लीज डू शेयर योर सोशल मीडिया.
10: आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है, बट आई फील रिलैक्स्ड कि मेरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है आई लाइक बी शेयरिंग विद पीपल, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट ये दिखाने के लिए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस 15 मिनट में आप मुझसे नहीं पूछ पाते हो. लाइक कल ही मुझसे कोई पेशेंट पूछ रहा था कि मैम आम खाना होता है प्रेगनेंसी में, सो आई पोस्ट स्मॉल स्मॉल रील्स बस इसीलिए कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर राशिका कोई है. सो इट इज ओनली टू मेक अ प्रेजेंस इन योर होम, ठीक है, और बाकी
9: एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का भी एक जरिया तो है ना मैम सोशल मीडिया पे. आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, जैसे मेंटोर, ये चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम से तो बेटर है कि आप सही इंसान को फॉलो करेंगे तो वो डायरेक्शन तो देगा.
10: देयर आर मेनी मिसगाइड्स ऑन सोशल मीडिया ना, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं क्योंकि हम ही नहीं रहे.
9: एब्सोल्युटली,
10: तो पीपल विल थिंक. तो अब कोई भी ए बी सी डी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, so it takes a lot of मेहनत. प्लस हम भी गायनेकोलॉजिस्ट विद डिग्री नहीं बने, विद आर एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स हम भी फंस जाते हैं. वी आस्क आवर सीनियर्स, वी आस्क सर्जन की हमें वो लेनी पड़ती है. सो नोबडी इज कम्प्लीट, इट इज ऑलवेज. जैसे हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई एडमिटेड अ पेशेंट जिसको एक्यूट ब्रेंकाइटिस थी, तो एक गैस्ट्रो इन्वॉल्व हुआ उसमें, उसको सीजर डिसऑर्डर था, तो उसमें एक न्यूरो फिजन इन्वॉल्व हुआ, प्लस एक गायनी थी और उसको एक AI में चली, तो एक यूरो सर्जन इन्वॉल्व हो गया. तो दिस कैन नॉट बी, एक कोई ले मैन ये सब चीजें नहीं संभाल सकता है. तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो है डॉक्टर्स से ही कनेक्ट करें, उनकी बातों को. आजकल लोगों का एक्चुअली विश्वास कम हो गया है, ठीक है, विश्वास कम भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ABCD बीच वाले लोग है ना, दीज पीपल डू रैंडम थिंग्स, बट वो ग्रॉस ये आ जाता है कि डॉक्टर्स ने किया बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डॉक्टर्स.
9: राइट. अच्छा मैम, जो लेडीज आपको सुन रही है, आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहती हूँ या आपको विजिट करना चाहती हूँ, कहाँ आप उनको मिल सकते हैं?
10: आई सिट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल, 10 to 4 एवरी डे, ठीक है. Sundays आर ऑफ डेज,
9: ओके,
10: तो यू कैन कम
9: मंडे टू सैटरडे, मतलब वो आ सकते हैं.
10: एग्जैक्टली, मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं. सो वी हैव अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, फॉर सिजेरियन सेक्शंस विद अ एक्सपर्ट केयर, तो एनी बडी कैन कम एनी टाइम.
9: आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपने बताया?
10: हाँ, आई एम, मुझे मेरा तो डॉक्टर राशिका के नाम से ही है.
9: तो गाइस फॉलो कीजिए, छोटा सा बड़ा अकाउंट तभी होगा जब हम और आप फॉलो करेंगे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन को हमें आगे डिलीवर भी करना चाहिए. वो कहते हैं ना ईच वन टू कीच वन, मैं हमेशा कहता हूँ आप भी फॉलो करें औरों को भी कराएं, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक डिलीवर होना बहुत जरूरी. सो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, वेरी वेरी सून फिर मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए. बाय बाय.
11: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं.
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री.
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद.
6: जहां हम
12: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना,
11: तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
12: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
13: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
14: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
13: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
12: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
15: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
12: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
16: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी राम जी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगा।
12: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
17: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोअर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
12: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
18: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
12: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
19: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
20: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
19: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
12: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गाँव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
21: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी उनकरी पहल एक

0: जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या ओहू लोगन के बहुत जौन बा।
1: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
2: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
1: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
1: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
2: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
1: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
2: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
1: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही, बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
2: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
1: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
2: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
1: अरे, बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
2: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
1: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है, वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
2: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
1: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
2: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
1: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
2: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
1: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
2: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी, लौंग लता।
1: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
2: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
1: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है, ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सकें।
2: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
1: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
2: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
1: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
2: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान।
2: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कथा, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
2: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
2: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
2: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
1: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
2: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
1: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
2: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
1: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
2: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
1: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
2: सबसे अहम बात, गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
1: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
2: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
1: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
2: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
1: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
2: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
1: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
5: प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस समिति का गठन दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। श्री सूद ने कहा कि ये समिति शिक्षा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक की फीस तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फीस तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
6: अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं कर पाए।
5: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्तीय स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। इस आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और करदाता की जीत है। श्री सूद ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्तीय निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारियां की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।
7: बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रहीं और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है, इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने सीएजी ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई, हमने बहुत मजबूती से केस लड़ा और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। बहुत जल्द सीएजी का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा।
5: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र प्राप्त किया। दिल्ली कैंट के उपमंडल मजिस्ट्रेट और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी से भी गणना प्रपत्र प्राप्त किया। बूथ स्तर अधिकारियों ने आज एरेठाला, आरकेपुरम, मेहरौली और मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य स्थानों पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भी भर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई जनहितकारी नीति है। उन्होंने आज कहा कि नीति के अंतर्गत संबंधी लाभों के अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये, ई ऑटो पर 75,000 रुपये और कमर्शियल गुड्स कैरियर पर 1,50,000 रुपये की बचत संभव होगी। एक रिपोर्ट।
9: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वाहन के पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले नागरिक इस सूची की जाँच अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर नागरिक से हरित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक greendrive.delhivanmahotsav.in पर पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
10: इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का हर एक निवासी जो चाहता है ग्रीन दिल्ली वॉरियर बनना उसमें जुड़ सकता है। इस पोर्टल पे वो अपने लिए स्लॉट बुक कर सकता है, जगह चुन सकता है कि किस समय वो पेड़ लगाना चाहता है और हम सब लोग अपने लिए स्पेस बुक करा सकते हैं और 11 तारीख से हमारे लिए वो बुकिंग ओपन होगी। हम जहां पेड़ लगाना चाहते हैं वहां पेड़ लगा पाएंगे।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाकर नागरिकों और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है।
10: 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5,000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहाँ भेजा जाए, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिल-ए-तारीफ है। और यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा है इसको आगे ला करके उनकी वेवलेंथ पे आकर के उनके माइंडसेट को पढ़ के उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
5: दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 10 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है, जिसमें ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को इस वर्ष सितंबर तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज आदर्श नगर वार्ड का निरीक्षण कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री खिरवार ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास नालों की गाद सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
11: डॉक्टरों को स्टाफ की कमी उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ पे हल्की सी लापरवाहियां भी हैं। लापरवाही के लिए हम लोगों ने राउंड लेके जोर करने को कहा है डॉक्टरों को कि आगे से बूझने में दिल्ली की जनता और यहाँ के लोकल पब्लिक के इलाजों में कोई कमी नहीं होनी। दवाई की मात्रा यहाँ पे पूरी पाई गई, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन काम की गति को और अच्छा करने के लिए जो डॉक्टर्स के सुझाव थे, जो माननीय विधायक जी के सुझाव थे, सुझाव के साथ स्वास्थ्य को और अच्छा करने की जो बात थी हम उसी माध्यम से यहाँ पे आए हैं।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरान 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
12: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड आजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेज, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा गतिविधि को अंजाम देने के लिए। अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं।
5: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब केवल सिखों की नहीं बल्कि मानवता की सांझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में

0: इस तरह विरासत को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत निंदनीय है।
1: गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है, क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है, पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे, आज उनमें से केवल 8,000 सिख बचे हैं, बाकियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। और करते करते आज वो गुरुद्वारों पे भी हमले कर रहे हैं, जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और कहना चाहता हूं दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
0: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और ट्रांस यमुनक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो यूनेस्को के नियम का भी उल्लंघन है।
2: ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत और वहाँ की माइनोरिटीज चाहे सिखों हिंदुओं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो यूनेस्को है वो भी ये कहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं और खास करके प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेंपल है, जो 100 साल से अधिक समय की बिल्डिंग्स हैं, उनको सुरक्षित रखना वहाँ की सरकार का जो है कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज ओमान से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, खोज की भावना और सीखने के प्रति उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक, विद्यालय, संस्था या संगठन अपने द्वारा योग्य समझे जाने वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। बच्चे भी स्वयं।
0: दिल्ली में आज कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जाँच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माना वो हर किसी से कम बोलती थी। माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो दो और को हम बोलती थी।
1: हेलो जी, कैसे हालचाल है? मेरा नाम आरजे आनंद है। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम को अमेजिंग बनाने के लिए हमारे साथ एक बड़ा ही फॉन्ट न्यूज बंदा स्टूडियो में है। एंड जब ये स्टूडियो आने वाले थे तो इनके आने से पहले मेरे को एक ऐसा थॉट आ रहा था कि कोई बड़ा सा बंदा आएगा, बहुत बड़ा सा होगा, भारी भरकम टाइप का, यू नो, एकदम से कुछ बड़ी बड़ी किताबें लाएगा। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो ये तो बिल्कुल मेरी सेम एज का, मतलब मेरी ग्रुप का बंदा, मेरी एज का बंदा, बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया सा। सो हे, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है ब्रो? अब जरा इनसे आपको तारीफ कराते हैं और आज ये क्या लेकर आए हैं ये मैं नहीं यही बताएंगे आज।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
0: माना वो हर किसी से कम बोलती थी। माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो दो और को हम बोलती थी।
8: अबाउट द स्टार्टअप्स एंड यस,
1: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बढ़िया बातें आप कर रहे हो तो ये कहीं सोच साच के आए हो या बस अपना शुरू से चलता आ रहा है ऐसा कुछ?
8: नहीं, इट इज वेरी मच स्पॉन्टेनियस। लाइक मैं जब आया था तो मैं बस यही सोच के आया था कि ठीक है, जाएंगे, जो कॉन्वर्जेशन होगी उसमें जो मेरा POV होगा हम वो रखेंगे एंड वी विल बिल्ड द कॉन्वर्जेशन देन एंड देयर ओनली।
1: वेरी नाइस यार, मतलब ये बंदा मुझे लगता है कि फुल ऑन तैयारी से आया कि भैया लिख के कुछ नहीं जाएंगे, जो रैंडम होगा उसको रैंडम ही उसका आंसर्स करेंगे, राइट? क्रिएटिविटी के साथ।
8: यस,
1: दैट्स वेरी ग्रेट। थोड़ा सा अपने बारे में हर्ष बताओ, मुरादाबाद में आप कहाँ से हो, क्या करते हो?
8: सो मैं मधुबनी कॉलोनी में रहता हूँ एंड वी हैव अ फैमिली बिजनेस। वी हैव टू शॉप्स नेम्ड जेनसन्स एंड वल्लभ गारमेंट्स। एंड मैं 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वर्क्ड इन अ स्टार्टअप फॉर 6 months वेयर इन आई पेड ₹20,000 टू देम टू वर्क एंड got nothing out of then in sampar my score allegations aa gaye the, that is a very good story, I'll tell you in the conversation. And after that I worked in my brother's company and now I'm working with in my family business and side by side I'm doing this comedy part and content creation.
1: All right, that's great. अच्छा ये स्टोरी तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना एक मोटिवेशन का काम करते हैं, यू नो, कई बार वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा भी लेते हैं।
8: Yes.
1: You getting my point? So, उस पे डेफिनेटली बात करेंगे अभी हर्ष से। लेकिन हर्ष, अभी तुम यहाँ पे आए हो तो ऑफकोर्स ये जो कॉन्वर्सेशन है बेसिकली इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे हम कुछ जोक्स करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है, जो आपको यू नो अच्छा है आपके अंदर है, आपके टैलेंट की कुछ अलग पहचान हो, बिकॉज यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कुछ तुर्रम खा होते हैं और आई एम श्योर आप भी वो हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो वैसे आप अपने अगर पर्सनल की मैं बात करूँ तो तुम कौन सा तुम्हारा जोनर है, क्या तुम करते हो बेसिकली, मतलब शेरो शायरी पोएट्री या जो कॉमेडी, क्या क्या मतलब आप करते हो?
8: मैं कॉमेडी करता हूँ, वन लाइनर्स मेरा एक वो है कि हाँ कोर है, ठीक है। एंड इंस्टेड मैं राइट आई राइट सेट्स, मैंने कई बार परफॉर्म भी करा है ओपन माइक्स में, मैंने शोज भी करे हैं अपने पर्सनल, ठीक है। दोज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बट यस दे वर गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम also into shero shayari, I write a few shero shayaris and that's it.
1: अच्छा कहीं ओपन माइक वगैरह करते हो कुछ ऐसा?
8: या आई हैव डन मल्टीपल ओपन माइक्स।
1: दैट्स ग्रेट। अच्छा तो हर्ष के साथ ना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे, फिर हर्ष के साथ जो है कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये क्या आज आपको सुनाने वाला है, कैसे आपको हंसाने वाला है, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आज हर्ष का होने वाला है, नॉट मी। हाँ मैं सपोर्ट में रहूंगा बट सारी कॉन्वर्सेशन को हर्ष हैंडल करेंगे। सो अभी मिलते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आप आनंद के साथ हैं ऑफ कोर्स एंड आई हैव विद मी हर्ष जैन। हाय हर्ष, वेलकम बैक यू वंस अगेन ब्रो। आपको बोरिंगनेस फील तो नहीं हो रही ना? एकदम बोरिंग शो तो नहीं लग रहा ना आपको यहाँ पे?
1: बिल्कुल भी नहीं,
0: होना भी नहीं चाहिए यार, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है यार। यहाँ पे हमें फन करना है, एंजॉय करना है, ढेर सारे गाने हैं, म्यूजिक है, मस्ती है, तो मुझे लगता नहीं है कि यार आपको एंजॉय करने में मजा नहीं आ रहा होगा। टेल मी,
1: इट्स गोइंग गुड एंड होपिंग फॉर ग्रेट अहेड।
0: या श्योर। अच्छा तो हर्ष अभी कुछ सुना दो यार। मैं चाह रहा हूँ यार, आजकल ना धोखे शोके बड़े मिल रहे हैं, चाहे वो प्यार श्यार में हो या इंस्टाग्राम पे एवं किसी फ्रेंड के साथ हो, तो आजकल ये धोखाधड़ी वाला सीन बहुत ज्यादा हो रहा है यार। तो इस पे कुछ है तुम्हारे पास कोई बढ़िया सी पोएट्री या कोई शायरी?
1: बिल्कुल है। सो आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, राइट? मैं जब कॉलेज गया था ना, सो आई एम सिंगल फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। मैं स्कूल में भी सिंगल था, मैं आज तक के डेट में सिंगल हूँ, बट
0: मैं तो अखंड सिंगल हूँ भाई।
1: Same goes with me. And meanwhile, ना मुझे एकदम जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग रिलेशनशिप्स में आ गए थे, तो मुझे भी लगा था रिलेशनशिप में आना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स, एंड यू विल बी लाफिंग लिसनिंग टू दिस। मेरे को 6 अटेम्प्ट्स लगे गर्लफ्रेंड बनाने में।
0: ओह माय गॉड,
1: राइट? एंड मैं तब ये सोच रहा था 5 में सीए हो जाती है कंप्लीट, और मैं 6 में गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बीबीए क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं सीए कर लेता यार, दैट वुड हैव बीन अ लॉट इजी।
0: ट्रू ट्रू।
1: एंड उसने भी ना धोखा दे दिया, वो पता नहीं किसी और के साथ चीटिंग वगैरह कर रही थी एंड स्टफ। तो हम लोग का लगभग ये 7-8 दिन के बाद वो रिवील हो गया, ठीक है? तो फिर जब भी कोई प्यार मोहब्बत आई करता है ना, तो मैं उसको 2 लाइन अपनी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़का धोखा दे जाता है, लड़का धोखा दे जाता है। इट्स वेरी जेंडर न्यूट्रल, बट मैं इसमें कहना चाहूंगा, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि माना वो हर किसी से कम बोलती थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: उसने इतना ऐसा धोखा दिया ना कि दीज लाइंस हैव स्टेड विद मी फ्रॉम देन एंड ऑनवर्ड्स।
0: ऑलराइट, बट प्लीज यू कैन रिपीट दिस लाइन, मैं दोबारा से इसको सुनना चाहता हूँ।
1: तो लाइंस ऐसी थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी,
0: माना वो हर किसी से कम बोलती थी,
1: हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी,
0: और को भी हम बोलती थी। वाह वाह वाह वाह। इस स्टोरी का, इस लाइन का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो?
1: बहुत लोग कहते हैं ना कि यार जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो दूसरे लोगों से कम बात करता है, वो आपसे ज्यादा अटैच्ड होता है। मैंने भी मान लिया, मेरी वाली भी दूसरों से कम बोलती थी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मैंने उसका हाथ छूटा ना, सो व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप यू डोंट कॉल आई, यू कॉल हम, राइट? हम अपनी बात नहीं करते ना, मेरी, हम कहते हैं हमारी, राइट? तो वो भी जब हाथ छूटा तब पता चलता था वो खाली मुझे नहीं, वो 2 और लोगों को हम बोलती थी। सो दैट इज हाउ इट वेंट।
0: ऑलराइट, मतलब अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पिक्चर की बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। एंड आई डोंट थिंक, यार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है, नॉट यू नॉट मी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जब स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब हमारी लाइफ में सब कुछ मिल गया है हमें। जब उस पहले इंसान को देखते हैं और हमारे अंदर दिल के अंदर तोते तोते वाले तार बजते हैं, तो हमें लगता है बस ये यही सब कुछ हमारा, एवरीथिंग इज मी फॉर मी, मेरे लिए वो है ना, बट बाद में पता चलता है कि नहीं भाई,
1: वो किसी और के लिए भी है।
0: हम गलत फहमी में है,
1: डेफिनेटली।
0: बिल्कुल,
1: ये तो बहुत होता है, एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स। मेरे जब मेरा फिर ब्रेकअप हुआ तो फिर सब मेरे पूरा,
0: मतलब इस लड़के का ब्रेकअप भी हो गया भाई, आप सोच रहे हो ये कैसे?
1: दैट वाज इवन लेस देन अ सब्सक्रिप्शन पैकेज। मेरा सब्सक्रिप्शन आपको ले, ट्रायल भी आजकल 10 दिन का होता है, मेरा रिलेशनशिप 7 दिन का था।
0: आई कांट बिलीव दिस कि भैया आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, सोचिए हम अभी भी अखंड सिंगल है।
1: मेरा ट्रायल पे खत्म होने से पहले ब्रेकअप हो गया।
0: ओ भाई साहब, मतलब तुम्हारा थोड़ा तगड़ा वाला था आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। सी, अच्छा यू नो हर्ष, ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, हम लोग उनसे बात भी करते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कुछ ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में पहला प्यार होता है, तो आपको कैसे पता लगा कि आपका ये यू नो फर्स्ट टाइम वाला है? यू नो
1: फर्स्ट टाइम वाला भी द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक कि उसने मुझे सामने से प्रपोज किया था, देन
0: कितने साल के थे जब तुम्हें ये प्रपोजल वाले यू नो पिक्चर्स और ये आने लगे?
1: मेरे को आज तक नहीं आया, मुझे
0: वेकेशन आया तुम्हें कोई ऐसा?
1: नहीं, मुझे आज तक बस एक ही लड़की ने अप्रोच करा है, मैंने उसको हाँ बोल दिया था, एंड वो 7 दिन बाद उसने धोखा दे दिया। मेरे को लगता है शायद इसीलिए धोखा दे दिया।
0: अच्छा, तुम इस बात को मानते हो यू नो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है?
1: डेफिनेटली यस।
0: अगर सपोज दैट वो 7 दिन के बाद ना देके 7 सालों बाद देगी तो सब ज्यादा दुख होता है,
1: तो ज्यादा दुख होता है
0: ना। 7 दिन में दे दिया तो एटलीस्ट रियलिटी पता लगी। एंड आई थिंक अगर हम अभी भी सिंगल है तो अपनी लाइफ में हम बहुत हैप्पी है,
1: डेफिनेटली
0: यू नो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से कि ठीक है यार सिंगल है बट आई थिंक हैप्पी है।
1: मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए।
0: एब्सोल्युटली, और जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, इसी चक्कर में फिर अब जो है ना बेवकूफ बनते रहते हैं
1: कई
0: बार। सो गाइज, आपको वो चीज नहीं करनी है, एंड आई एम टेलिंग यू की अगर अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो भैया पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही जो है किसी की तरफ आप हाथ बढ़ाओ। वेल आगे बढ़ते हैं, हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6।

0: रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था और उसमें ना एक फैक्ट चेक किया था, तो रियलिटी चेक में पता लगा कि जिनकी बड़ी हाइट होती है ना, उनकी रात को सोने से पहले हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो मुझे खुद पे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस पे यू नो ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज रात को मैं अपनी हाइट सोने से पहले जरूर नापूंगा, बट उसके लिए फिर मुझे सुबह में भी नापनी पड़ेगी ना यार, तो वो कल वो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। बट उससे पहले मैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक रिसर्च भी है, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी हाइट के ऊपर कुछ सुनने वाला हूँ मैं हर्ष से, तो मुझे लगा पहले आपको ही काम की बात बताता हूँ। हर्ष, आपको पता है ऐसा कुछ फैक्ट और रिसर्च?
1: यार हाइट से तो मैंने बात करना छोड़ दिया, बिकॉज हाइट इज द ट्रॉमा फॉर मी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा रिसेंट ब्रेकअप हुआ, मतलब रिसेंट क्या, मेरा एक लौता रिलेशनशिप ब्रेकअप ट्रायल बैकअप
0: सब कुछ एक ही था,
1: वो सब कुछ एक ही था। और वो भी जो हुआ ना, उसका कोर रीजन जो था, कोर रीजन भी ये था कि इसने, उसने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि इंटेलेक्ट बहुत कम है तुम्हारा, तुम ना बातें अच्छी नहीं करते, तुम ना ठीक से नहीं रहते, एंड ऑल एंड ऑल। तो मैंने कहा यार ये सब तो पहले भी था, सो यू स्टार्टेड लाइकिंग मी फर्स्ट, है ना, तो ये सब तो पहले से था। सो देन शी सेड यार अब क्या रीजन लाऊं, तुम्हारी ना हाइट मुझसे कम है।
0: ओह माय गॉड,
1: एंड दैट हिट मी सो हार्ड, सो फकिंग हार्ड, कि मैं सोच रहा हूँ यार ये तो गलत हो गया। एंड ऑनवर्ड्स मैंने फिर हाइट पे बात करना ही छोड़ दिया, मैं कहता हूँ ठीक है आपकी हाइट आपकी हाइट, मेरी हाइट मेरी हाइट।
0: एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है इसमें तो जजमेंट होना भी नहीं चाहिए यार।
1: डेफिनेटली
0: आई थिंक ये तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं यार।
1: हाँ,
0: है ना, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला डिसाइड करके भेजता है,
1: भेजता है, बस, है ना, तो वो जरूरी, मेरे कंट्रोल में
0: आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी थोड़ी ऊंची ऊंची हील्स पहन के जाओगे, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको यार,
1: वो बिना हील्स के मुझसे बहुत ऊंची थी।
0: अरे यार, तो फिर उसमें फिर आपको प्रॉब्लम, यू नो, आपने सोचने का और अपने फैसले में थोड़ी जल्द बात कर ली आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। गाइस आप क्या कहते हो, आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। वेल टेल अस, इसके ऊपर तुम कुछ सुनाने वाले, सो आई थिंक मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, आई एम श्योर।
1: मैं आपको एक वन लाइनर, एक दो वन लाइनर से शुरू करते हैं।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली श्योर।
1: नेम एन एक्ट्रेस, आनंद भाई आप मेरे को एक एक्ट्रेस का नाम बताओ जिनको कोई रास्ता नहीं मालूम होता।
0: यार सच बताऊं तो मुझे खुद को ही रास्ते नहीं मालूम होते, क्योंकि मैं मुरादाबाद में खुद नया हूँ, तो तुम एक्ट्रेस की बात पूछ रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है यार।
1: कोई एक्ट्रेस, एक रैंडम गेस के, उन्हें आपको भी पूछ लो कि ये रास्ता कौन सा, उन्हें कोई नहीं पता।
0: ओके, सी आई थिंक अनन्या पांडे, उसको सब्जियों के नाम नहीं पता, तो उसको रस्तों के नाम कहां से पता होंगे।
1: अनन्या पांडे को पता हो सकते हैं, बट देयर इज दिस वन एक्ट्रेस नेम्ड दिशा पतानी।
0: दिशा पतानी, ओ
1: सो शी मस्ट नॉट बी नोइंग ऑल द रूट्स।
0: दिशा पतानी, ओ भाई कहां दिमाग लगा रहे, क्या बात है यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। अच्छा, और ऐसा तुम्हें दिमाग में क्यों आया, यू नो ये वाला?
1: So there was this one picture they were promoting, I don't remember the name.
0: Welcome to the jungle.
1: So मैंने उनको देखा, एंड जैसे ही मैंने उनको देखा ना, बिकॉज दे केम टू टॉयर, तो मैंने वहां जैसे ही उनको देखा ना, रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छा जोक निकल के आ सकता है यहाँ से। सो दैट इज हाउ।
0: आप गए थे वहाँ पे?
1: नहीं।
0: अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा?
1: ऑन सोशल मीडिया।
0: ऑलराइट डन। सो यार लेकिन ये बड़ा अल्टीमेट था, मतलब इतना फॉन्टेन यूज कैसे हो सकता है कोई बंदा की किसी एक्ट्रेस के नाम से, जो मैंने और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, उसने तुरंत उसका दिशा पाटनी का दिशा क्या
1: पता नहीं
0: बताओ यार। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर आप ऐसे करते हो या फिर कभी किया ट्राई?
1: लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू फ्रूट्स, ओके?
0: हाँ, टेल अस,
1: कौन सा फ्रूट कहता है कि जी मैं सबसे खड़ूस हूँ, मैं एकदम बिल्कुल
0: यार सच में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में बहुत खराब है, मैं बहुत ही, मेरी मतलब बहुत ही गंदी वाली आदत है कि मैं इन चीजों में थोड़ा कम रिसर्च रखता हूँ, बट अब आप ही मुझे सजेशन दो यार।
1: ओके, एनी रैंडम गेस
0: जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा
1: खड़ूस हूँ, अड़ियल हूँ, और मैं मतलब गुस्सेल रहता हूँ थोड़ा सा, ऐसा
0: ऐसा कौन सा फ्रूट हो सकता है गाइस? सीरियसली आई हैव नो आइडिया, मैं किसको बोलूँ, सारे फ्रूट्स तो इतने सॉफ्ट इतने प्यारे से होते हैं।
1: Shall I tell you the name? Yes.
0: तू बताए।
1: It's guava.
0: Guava.
1: I'll tell you ना, ask me why is so guava.
0: यार मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या क्या चूज करूं, किसको क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, तू बोल दे यार अपना जो।
1: Because guava says I'm rude.
0: ठीक है। Oh, guava is?
1: Guava in Hindi is amrood.
0: Amrood.
1: Oh, amrood.
0: हाँ.
1: Okay. So that is why it's arrogant and so.
0: Okay.
1: Amrood.
0: समझ गया. Amrood. मतलब इसने अमरूद को कर दिया I'm rude. ये मुझे लग रहा है कि जापान से तो नहीं आया गाइस, ये मतलब सारे फ्रूट्स को उल्टे से सीधे और सीधे से उल्टे लेके जा रहा है भाई, ये करने के कितने पैसे मिलते हैं आपको?
1: अभी तो मैं पैसे
0: या फिर क्रिएटिविटी कर रहे हो अभी?
1: जस्ट राइटिंग,
0: कहीं पे कुछ ज्वाइन वाइन किए हो क्या, ऐसे कॉमेडी डार्क कॉमेडी क्लास आप कर रहे हो?
1: Just my favorite comedians, Madhur Villi, Kaviraj and Ravi Gupta.
0: अच्छा, तो आप इनको देखते हो? अच्छा, मतलब you know.
1: Too much. I just love them.
0: Very nice. तो गाइस ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे ऐसे ही, हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत हो रही है और होती रहेगी। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हर्ष से भी हम इजाजत लेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे अल्टीमेट टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफ मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता है ऑफिशियल आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट, हो सकता है अगला नंबर आपका हो यार। फिलहाल एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
6: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
5: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
5: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
6: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
5: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
6: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
5: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
6: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
5: EKCC, साख से समृद्धि।
6: नियम और शर्तें लागू।
7: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
1: माना वो हर किसी से कम बोलती थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो दो और को हम बोलती थी।

0: हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद और आज की शाम हम हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। आई हैव विद मी हर्ष। हर्ष, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम तो इंग्लिश मीडियम वाले हो भाई। तो ये हिंदी मीडियम वालों की, इंग्लिश मीडियम वालों की आज वैसे अच्छी खासी जम रही है। वेल, मैं सच बताऊं तो मेरी बहुत कम बनती है यार, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं इंग्लिश में ही पाता हूं यार। इंग्लिश से मेरे को बड़ा डर लगता है, मैं बहुत भागता हूं। अच्छा, क्या डिफरेंस है इंग्लिश मीडियम वालों में ऐसा?
1: यार, आई बिलीव ना कोई डिफरेंस है नहीं।
0: वेल, हम लोगों ने क्या इसको बना दिया है?
1: ये हम लोगों ने बना दिया है, और वरना इसमें कोई मतलब डिफरेंस है नहीं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आई विल टेल यू। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, आई वोंट बी टेलिंग द नेम, ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे स्कूल की जो इंग्लिश की टीचर्स थी वो भी हिंदी के लिए एक दवा देती थी।
0: ओ भाई साहब,
1: तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मेरी क्यों बन पा रही है।
0: आई हैव नो आइडिया, बट जो भी बन रही है अच्छी बन रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय द वे यार, तुम्हारे पास कुछ है जाते जाते जो तुम थोड़ी सी
1: जाते बिकॉज ओके, सो देयर इज दिस वन सैड स्टोरी। वेल, आई डिड वांटेड टू एंड इट ऑन अ सैड नोट, बट आई रिसेंटली लॉस्ट वेरी लव्ड वन ऑफ माइन, माय ताऊजी, एंड ही वॉज अ वेरी प्योर सोल, एंड वो मुझसे हमेशा ये कहते थे कि यार, तू हंसी मजाक ज्यादा करता है, थोड़ा काम पे भी ध्यान दिया कर। एंड नाउ आई वांटेड टू टेल हिम कि मैं ये हंसी मजाक को अपना काम बनाने की तरफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव लॉस्ट हिम, सो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ एनीबॉडी देयर हैज लॉस्ट देयर लव्ड वन, ठीक है, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस आते होंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो तीन चार दिन जो होते हैं ना फ्यूनरल के बाद के सबके, तो मैंने उसके लिए बस एक छह लाइनें लिखी थी जो मैं पूछना चाहता हूँ भगवान से। ठीक है, तो ये लाइनें कुछ ऐसी हैं, मैं सुना
0: डेफिनेटली,
1: लाइनें कुछ ऐसी हैं कि हे भगवान, सुना है आप अच्छे दिल वालों को दी बुला लेते हो, हे भगवान, सुना है आप अच्छे और साफ दिल वालों को
0: जल्दी बुला लेते हो,
1: फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों है।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: हे भगवान, सुना है आप साफ दिल वालों को जल्दी बुला लेते हो, फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों हैं? आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं? आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं? चलो मान लिया आपकी बात, जब आप कहते हो कि भाई पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, मैंने मान लिया आपकी बात, जब आप कहते हो कि पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, मैंने बीच सपने उसको गुजरते देखा है, और आप कहते हो पार्थ तू सपना देख पूरा भी होगा।
0: वाह, सपना देख
1: पूरा भी होगा,
0: पार्थ सपना देख पूरा भी होगा,
1: पार्थ जो अपने बच्चों को कहते हैं।
0: समझ गया मैं, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत ही अच्छी थी ये लाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओरिजिनल वाली क्लैप्स। और मैं बताऊं हर्ष, ये बहुत ही सच्ची और एकदम दिल से निकली हुई बात है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कुछ चीजें जो हमारी कलम से निकलती है वो एक्चुअल में हमें रूबरू कराती है असलियत से।
1: डेफिनेटली
0: है ना, तो वो चीज हर कोई नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो अपने ओरिजिनल कॉन्टेंट को लिखना जानता हो। तो अभी तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या चल रहा है इसके अलावा? और अभी
1: इसके अलावा आई एम इनटू फैमिली बिजनेस, आई एम डूइंग ओपन,
0: बस आगे अब आपको यही इसी पे फोकस करना है, फैमिली बिजनेस।
1: फैमिली बिजनेस अलोंग साइड आई विल बी टेकिंग दिस माय प्रोफेशन एज अ कंटेंट क्रिएटर और अ कॉमेडियन।
0: ऑलराइट, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मतलब मुझे लगता है कि आज के जमाने में इस चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जहां हो वहीं रह जाओगे।
1: यस,
0: है ना, तो थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन, बहुत अच्छा था ये सफरनामा मुझे जो आपके साथ करने को मिला आज, एंड रैंडमली हम लोगों का कन्वर्सेशन हुआ, और रैंडमली हम लोग यहाँ पे आज शो भी कर रहे हैं।
1: डेफिनेटली
0: ये अनएक्सपेक्टेड था, इट्स नॉट अ प्लान, बिकॉज ये कैसे हुआ आई डोंट नो, बस एक रैंडम शो था, एक आया एकदम से, हम लोगों ने इनको बुलाया, ये भी हाजिर हो गए, बहुत मजा आया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कैसा लगा?
1: बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: कुछ कहना चाहोगे तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे?
1: मैं बस ये कहना चाहूंगा गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों से बैर ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब अपना पराया मतलब वो चला जाए,
0: करेक्ट,
1: बैर ना रखें, कीप ऑन लाफिंग,
0: एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ना छोटी

छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको अपने दिमाग में और अपने जहन में रखेंगे तो शायद हम किसी के साथ ईर्ष्या में रह ही नहीं पाएंगे। यू नो, पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, ऐसे मुस्कुराते हुए अपने बेहतरीन से सफर की शुरुआत के लिए ट्यूनिंग रखिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि स्माइलिंग, ऐसे ही स्माइल करते हुए आगे बढ़िए, बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो आनंद विद यू, और अभी मैं लूंगा आपसे जाने की इजाजत, क्योंकि समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे और ढेर सारी बातचीत करें। लेकिन हाँ, अच्छे गाने आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जो आपको थोड़ा सा हैप्पी फील कराएंगे। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, मिलेंगे जरा सी देर में। हाँ जी, मतलब कुछ और कॉन्वर्सेशन के साथ हम मिलेंगे आपको, बट इस वाले शो में नहीं, किसी और वाले शो में। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, फॉलो कीजिए। और अभी के लिए मैं यहां से निकलता हूं, सकता हूं। इस कॉन्वर्सेशन की कुछ कुछ क्लिप्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी डेफिनेटली देख सकते हैं। अभी के लिए छोड़ के जा रहा हूं कुछ अच्छे गाने, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक AI विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय AI इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
5: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
6: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
5: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
3: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन

0: जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना रेडियो स्टेशन। और दोस्तों, बातें चल रही हैं आज नींद की और चैन की। नींद की छोटी मोटी नींद नहीं, आपकी चैन की नींद आनी चाहिए और ऐसी आनी चाहिए कि कम से

ट्रेंड चल रहा है तो यही सही। एक मजेदार सवाल आप लोगों से, अगर आपको पूरे दिन सिर्फ सोने की सैलरी मिले तो क्या आप जॉब छोड़ देंगे? बताइएगा बताइएगा हमें।

8996896 पे और बताइए हमसे कॉल करके कि हाँ वो कौन सी चैन की नींद थी जो आपने ली और आपको बहुत ही मज़ेदार, जैसे कहते हैं ना कि 4 बजे का अलार्म लगाया था मगर मैंने उसे स्नूज कर करके उसे बंद कर करके उठा अपने मन से ही वही 6-7 बजे। ऐसा हो जाता है यार, मैं भी कभी कभी लगा लेता हूँ सुबह 4 बजे का अलार्म कि आज तो उठ के करूँगा एक्सरसाइज रनिंग, मगर भाई साहब जैसे ही पहली बार बजा तो मैंने डाल दिया उसे स्नूज मोड पे। तो ये तो हुआ ही होगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके। कभी कभी पत्नी ही कहती थी अरे सुनो मैं जा रही हूँ, पति कहता है हाँ जी ठीक है, पत्नी तुम पूछोगी नहीं कहाँ, पति कहता है पहले सोने दो फिर पूछ लूँगा। तो देख लो साहब सोने की तो इम्पोर्टेंस ही कुछ और होती है। अभी हमारे साथ जुड़े थे कामिल साहब जो कह रहे थे कि फरमाइश है उनकी एक, उन्हें भी बहुत चैन की नींद आती है और आज चैन की नींद ही ले रहे हैं इसलिए उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया। उन्होंने फरमाइश दी कि अखिल भाई राह में उनसे मुलाकात हो गई है तो ये ज़रा हमारे लिए भी प्ले कर दिया। मैंने कहा ज़रूर साहब क्यों नहीं, आपके लिए भी राह में मुलाकात करेंगे ही उनसे। तो चलिए तब तक हम आते हैं इस गाने के बाद और आप हमें मैसेज करिए या कॉल करके बताइए कौन सी ऐसी सोने की नींद है, चैन की नींद है जो आपने ली है और बड़ा ही अच्छा लगा उस नींद के बाद।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नींद भी बड़ी वफादार होती है, जिसे अपना समझ ले उसे दुनिया भर की टेंशन से कुछ देर के लिए दूर ले जाती है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। पूजा जी लिखती हैं कि मुझे ट्रेन में सबसे अच्छी नींद आती है। क्या बात कहा आपने पूजा जी, बिल्कुल सही कहा। ट्रेन का सफ़र जो होता है, खिड़की से आती हवा और हल्की हल्की आवाज़, बस आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, बहुत प्यारी सी नींद आती है। वरुण जी का मैसेज आया है हम पे, लिखते हैं, कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हर रात की नींद नई उम्मीद ज़रूर दे जाती है। तो बिल्कुल सही कहा वरुण जी आपने, कि जो कुछ उम्मीदें जो हैं ना, वो नींद जैसी पूरी होती है तो कुछ उम्मीदें आ ही जाती हैं हमारे पास। हमारे पास रणवीर सिंह जी का भी मैसेज आया है मुरादाबाद से। वो लिखते हैं, हमें ना चांद की चाहत ना तारों की फरमाइश, अखिल भाई आप ऐसे ही प्रोग्राम पेश करते रहें, बस यही है हम सब श्रोताओं की ख्वाहिश। क्या बात है रणवीर जी, आपकी तो लिखने का, कहते हैं अब तो हम धीरे धीरे कायल होते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शायरी आप लिखते हैं, और जो टाइमिंग होती है ना आपकी, वो भी बहुत कमाल की होती है। तो धन्यवाद रणवीर जी, जो आपने हमें याद रखा अपनी शायरी में भी। तो चलिए जुड़ते हैं अपने नए लिसनर से, क्या कहते हैं वो। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाय सर।
0: हाय, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हम बहुत बढ़िया हैं, और अभी आज आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे ज़्यादा बात कर रहे हैं।
1: जी सर।
0: तो बताइए, ऐसी जो कभी कभी कहते ना, जैसे मुझे आज चैन की नींद आ गई थी, या मुझे नींद ही नहीं आई डर के हमारे कल मेरा एग्ज़ाम था, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? पहले तो अपना नाम बताइए सभी श्रोताओं को, और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए।
1: जी सर, मैं अफसोस फातिमा बोल रही हूँ।
0: फातिमा जी, बहुत बढ़िया, और कहाँ से बोल रही हैं आप? मुरादाबाद से ही?
1: हाँ सर, मुरादाबाद से ही, मतलब कफीकनपुर जिला मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, तो बताइए आज कोई ऐसी बात, कोई वाक्य बताइए जो आपके नींद के साथ घटा हो आपकी।
1: जी सर, क्या है ना, 3 बजे के टाइम पे नींद बहुत अच्छी आती है। 3 बजे से बहुत अच्छी नींद आती है।
0: 3 बजे से बहुत अच्छी नींद आती है?
1: हाँ, तो लेकिन मुझे तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन सोने को नहीं मिलता उस टाइम पे।
0: कौन सा वाला सोना पसंद है आपको? वो सोना जो चेन में डाल के, गले में डाल के चेन की नींद दे देता है, या नहीं?
1: नींद पसंद है, लेकिन मुझे मतलब सोने को नहीं मिलता उस टाइम पे, 3 बजे के टाइम पे।
0: 3 बजे के टाइम पे आपको सोने को नहीं मिलता, क्यों? आप 3 बजे ऐसा क्या काम करती हैं?
1: क्योंकि सर 3 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, और मुझे अगर कितनी भी अच्छी नींद आएगी ना, 3 बजते ही अलार्म बजता है, मैं फौरन उठ जाती हूँ।
0: और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई चालू कर देती हैं?
1: नहीं, मतलब घर का काम है ना मेरा, तो इसलिए बस काम करना पड़ता है मुझे उस टाइम पे।
0: देखिए साहब, क्या बात है, मतलब आप कोई, आप कहती हैं कि 3 बजे खूब अच्छी नींद आती है, और खुद ही 3 बजे आप उठ के घर के काम निपटाने चालू कर देती हैं। क्या बात है फातिमा जी।
1: क्योंकि सर उस टाइम पे ना, मतलब बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है।
0: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली।
1: हाँ, लेकिन मैं तरस जाती हूँ उस पल के लिए, मुझे सोने नहीं मिलता।
0: तो कोई तो एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आप छुट्टी होती होगी आपकी, चलो जी आज घर के काम नहीं करेंगे, संडे है, आज तो कोई बहन काम कर लेगी, या आज अम्मी जान काम कर लेंगी।
1: नहीं, 3 बजे तो मुझे ही करना पड़ता है, 3 बजे से उठ के।
0: 3 बजे से उठ के आपको, आप ही की ड्यूटी फिक्स हो गई है?
1: हाँ, क्योंकि सर सिस्टर में बड़ी, मैं ही सिस्टर हूँ ना, और
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: अच्छा जी।
1: और हाँ, मुझे सोने को मिला था, मैं गई थी लालबाग के यहाँ पे ना।
0: हाँ जी।
1: तो उस टाइम पे मैं 3 बजे, मतलब 3 बजे तक तो हम दोनों दोस्तों ने बातचीत की, फिर उसके बाद में हम सोए थे।
0: तो उस दिन आप चैन की नींद सोई थी फिर?
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन।
0: चलिए, बहुत बढ़िया फातिमा जी, आपने अपनी बात हमारे साथ शेयर करी। तो अब आप ये बताइए, आज कौन सा गाना सुन के उस चैन की नींद को दोबारा पाएंगी?
1: जी सर, मुझे सॉन्ग सुनना है, कर ना सके हम प्यार का सौदा, ये मत ही कुछ ऐसी थी।
0: क्यों नहीं, जरूर। उससे पहले कोई एक शायरी सुनाइए, आपका शायरी वाले अंदाज में कुछ हमें सुनाइए, तभी हम आपको ये गाना सुनाएंगे।
1: जी सर, बिना शायरी के तो बोला अधूरी लगती है ना।
0: हाँ हाँ, तो जरूर सुनाइए फातिमा जी।
1: जी सर, तरीके और भी हैं इस तरह पर खा नहीं जाता, तरीके और भी हैं इस तरह पर खा नहीं जाता, तराजू को हवा के सामने रख नहीं जाता, मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में, मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में, जहाँ पर इश्क होता है वहाँ सोचा नहीं जाता, जहाँ पर इश्क होता है वहाँ सोचा नहीं जाता।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल आपने तो एकदम दिल से निकली हुई शायरी कह दी है आज, बहुत ही अच्छी शायरी कही है आज आपने।
1: जी सर, मुझे अच्छा लगता है जब मैं रेडियो पे शायरी करती हूँ तो।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता इतनी अच्छे अच्छे अपने टैलेंट हैं, अपना हिडन टैलेंट है, और हमारे साथ शेयर करते हैं अपने दिल से, दिल की निकली हुई बात हमारे साथ साझा करते हैं, ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, मेरी ख्वाहिश थी सर कि मैं शायर बनूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं, मतलब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, इसलिए।
0: तो कोई नहीं, जिम्मेदारियों के साथ भी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ख्वाहिश होती ही ऐसी है जो अधूरी रहने के लिए, मगर उन ख्वाहिशों को भी थोड़ा सा मज़ा तब आता है जब आप थोड़ा सा तो पूरा कर ले। आपने देखो, ये आप कहते हो कि आपका ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश है शायर बनने की, मगर आपने यहाँ अपनी शायरी रखी, अपनी बात कही, तो ये भी एक मौका ही है कि आपने अपने दिल की बात बोली है, और शायरी अपने आप, कौन नहीं कहता कि आप शायर हो, आप बहुत अच्छी शायर हो।
1: इसीलिए तो सर जब भी मैं रेडियो को कॉल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं शायरी करती हूँ तो।
0: चलिए, तो आप हैं ऐसी उम्मीद है, आप कॉल करते रहिए और अपने दिल से निकली हुई शायरियाँ सुनाते रहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ फातिमा जी, जो कहती हैं कि मैं तो सुबह 3 बजे ही उठ जाती हूँ और उसके बाद घर के सारे काम काज उठाती हूँ। तो भाई साहब, सैल्यूट है ऐसे लोगों को भी जो टाइमिंग के साथ अपना पूरे दिनचर्या अपनी, कहते हैं, पूरी तय कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मगर हम तो 10 बजे के बाद ही जाएंगे साहब सोने, तब तक आप लोगों के साथ आपकी भी नींद उड़ाएंगे और अपनी भी नींद गायब रखेंगे। तो सुनते हैं गाना, आप लोग हमें मैसेज करें 9837896896, या फिर कॉल करें और बताएं अपने दिल से निकली हुई वो बात जो कभी आपको नींद ही नहीं आने देती है, या फिर आती है चैन की नींद।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। तो साहब एक बार बॉस जो थे मीटिंग में पूछते हैं कि भाई साहब सो रहे हो क्या? तो एम्प्लॉय कहते हैं सर मैं तो आंखें बंद करके आपकी बातों को महसूस कर रहा हूँ। तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी कि भाई साहब ऑफिस में आप आए और एक छोटी सी नींद की झपकी, प्यारी सी झपकी आपने ले ली? तो अगर हुआ है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर बताइए। हो जाता है, ऑनलाइन मीटिंग में भी आ जाता है, नींद तो आराम से कभी भी ऐसी चीज़ है बिना बताए आ जाती है। कभी एकदम सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो नींद वाली ही होती है। अभी हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? आप ठीक हो?
0: बढ़िया सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम मीन मलिक है, मैं कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है सर।
0: तो इस समय कैसा मौसम है वहाँ पे?
1: बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही बेहतरीन मौसम है, गर्मी भी है, 29 डिग्री के आसपास यहाँ पर गर्मी है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब गर्मी आती है, क्योंकि अक्सर जब हम कश्मीर में रहते हैं तो यहाँ पर बारिश भी होती है और आपको पता है कि दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पर तिलेखना जब होता है तो उसमें बर्फ ज्यादा गिरता है, लेकिन जब अच्छा मौसम होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है साहब, ऐसे ही मौसम बना रहे और यही वाला मौसम, आप 29 डिग्री वाला मौसम भी आप यूपी भेज दें तो हम तो उसमें भी खुश हैं साहब।
1: जी जी मुझे पता है हिंदुस्तान, हमारी हिंदुस्तान के कई जगहों पर 40 45 और 50 डिग्री के भी आसपास गर्मी होती है सर।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आजकल तो विदेशों में भी, जर्मनी में आजकल खूब रीलें वायरल हो रही हैं जहाँ पे 40 डिग्री में रेड लाइट तक वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो पिघल गई हैं, मतलब वहाँ पे इतना 40 डिग्री में भी लोगों को इतनी गर्मी लग रही है कि उन्हें फाउंटेन के आसपास खड़ा रहना पसंद है या फिर ठंडी जगह बाहर निकलना इस समय बिल्कुल अवॉइड कर रखा है। और यहाँ
1: ऊपर वाले की मेहरबानी, अगर यहाँ पर 33-34 डिग्री जब गर्मी होती है तो यहाँ पर पक्का बारिश होती है, यहाँ भाई ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, जब भी यहाँ पर 34-35 डिग्री के आसपास गर्मी होती है तो पक्का बारिश होती है। और 2-3 दिनों से काफी गर्मी थी यहाँ पर, लेकिन ऊपर वाले के फजल करम से रात भर यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई थी सर।
0: सर हमारे यहाँ तो अगर 40-45 डिग्री भी हो तो आज भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को चाय ऑफर कर देता है, कहता है यार चाय पीते हैं गरम गरम, मजा आ जाएगा। तो आज हमारी बातचीत चल रही है नईम जी नींद के ऊपर, कभी चैन की नींद या सुकून की नींद, जैसे आपको तो आती रहती होगी कश्मीर में ठंडी ठंडी हवा में, तो कोई ऐसी नींद बताइए जो आपको बहुत ही चैन की नींद आई हो, जी अगले दिन तो काम पे नहीं जाना, या हर हफ्ते कोई ना कोई एक ऐसी नींद तो आप लेते ही होंगे।
1: जी दो नींद हमने किया, एक नींद तो हम सभी देशवासी करते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर पर जो नौजवान खड़ा होते हैं वो नौजवान होते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं।
0: बिल्कुल सही बात, इससे बड़ी चैन की नींद तो हो ही नहीं सकती साहब।
1: इससे बड़ी कोई चैन की नींद होती है, और दूसरी नींद यह है कि जब हम छोटे थे उसके बजाय हम स्कूल जाते थे, जब सटेरी का दिन होता है आपको पता है इतवार के दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन, जब हमें 4 बजे छुट्टी मिलती थी स्कूल से तो हम बच्चे आपस में बात करते मैं सुबह 10 बजे उठूंगा 11 बजे उठूंगा, छुट्टी है तो सुनिश्चित की रात हम अक्सर काफी देर के बाद सोते थे और सुबह देर से उठते थे 10-10:30 आसपास, क्योंकि घर वाले भी कुछ नहीं कहते क्योंकि स्कूल भी दूर था और माँ बाप अक्सर कहते कि ये बच्चे भी दूर जाते तो सोने दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, इससे एक रिलेटेड एक किस्सा याद आया कि एक बार खूब घने बादल आ गए थे, संडे का दिन था, सुबह सुबह ऐसा मौसम हो गया था जैसे शाम हो गई हो, मतलब बादल इतने काले बादल छा गए थे, और मुझे सुबह ही जैसे ही उठाया घर पे मम्मी ने कि चलो शाम के 8 बज गए हैं, और सुबह के 8 बज रहे थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शाम के 8 बज रहे हैं, तो उठा दिया एकदम कि उठो उठो भैया शाम के 8 बज गए, तुम इतने दिन पूरे दिन संडे में सो गए हो, ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही मैं उठा मैंने देखा 8 तो बज ही रहे थे घर में, और जब बाहर जाके देखा तो सच में इतने घने बादल की शाम जैसे रात वाला ही मौसम हो गया हो। मैंने कहा यार आज तो अखिल कमाल हो गया भाई, पूरे दिन तूने तो ब्रेक मतलब रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, ऐसी कैसी कुंभकर्ण वाली नींद आ गई।
1: क्या बात है सर, ये बचपन में होता है और कभी कभी अक्सर होता है घरों में भी होता है, और अक्सर बचपन में ये दिन होते हैं जब बचपन के दिन इंसान याद करते हैं जवानी में या बूढ़ापे पे, तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि देखते कि हम मैं छोटा था तब मैं ये करता था वो करता था, और अक्सर मुझे अभी भी याद है और रात भर हम जब जाते थे सेब के बाग में थे, चोरी चोरी घर वाले के चोरी चोरी जाते थे सेब खाने के लिए।
0: नहीं, सही सही, आपने हमने घर वालों की भी नींद खूब खराब की है साहब।
1: कई बार किया था, और कई बार मेरी माँ ने मेरे कान पकड़ कर और बहुत पिटाई की।
0: चलिए साहब, अब वो पिटाई है आपकी, उसी पिटाई के बहाने आज हम आपसे जुड़ रहे हैं और आप हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, क्या मतलब उस पिटाई का भी कुछ अलग ही आनंद रहा होगा आपके साथ।
1: जी जी, और माँ बाप जहाँ जहाँ बच्चे को मारते हैं, और खुदा कहते हैं अगर आप अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करेगा, अगर आप जहन्नम के वास्ते भी उस जगह को मैं कभी नहीं चलाऊंगा जहाँ पर आपको माँ बाप मारेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, वही प्यार होता है, वही आज का बस ट्रेंड बदल गया है, मारना पीटने का स्टाइल बदल गया है, डांट से ही समझा देते हैं माँ बाप तो बच्चे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं तो भैया उनको तो फिर अपने तरीके से समझाना ही पड़ता है।
1: लेकिन तो, एक तरीका आपको भी समझना चाहिए सर, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि आपको दिल्ली आना होगा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ कर सीधे कश्मीर चले आना होगा।
0: पक्का सर, पक्का जरूर, कश्मीर तो मेरा बहुत मतलब एक वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन है, और जरूर कश्मीर पहुँचेंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे और जल्दी आएंगे।
1: मैं इंशाल्लाह उस दिन का इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जब आप आओगे तो मैं आपको पिकअप करने श्रीनगर जरूर आऊंगा।
0: जरूर साहब जरूर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। तो आज बताइए आपको कौन सा गाना सुनाया जाए जिससे आपको भी एक प्यारी सी फिर से चैन की नींद आए रात में।
1: जी अक्सर मैंने जिस फिल्म का आज चयन किया था वो फिल्म हमें हराई प्यार की, जो ही चाला आमिर खान ने फिल्म में काम किया और साथ में नन्हे नन्हे बच्चे भी थे, गाने के बोले कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
0: क्यों नहीं साहब, जरूर ये काश कोई लड़की जरूर आपको प्यार करेगी और आप अच्छी सी एक नींद भी लेंगे साहब।
1: जी जी, वो तो किया भी है, जब बीबी अगर सुनेगी तो वो मुझे डांटेगी।
0: कोई बात नहीं साहब, ये डांट वाली नींद भी सह लीजिएगा आज।
1: जी जी जी,
0: चलिए बहुत ही अच्छा लगा साहब, तो दोस्त
1: अच्छा लगा,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: तो ये थे हमारे साथ नईम जी जो कश्मीर से जुड़े थे और इतनी अच्छी अच्छी बात इन्होंने आज हमसे शेयर करी, अपनी वो बातें शेयर करी कि बचपन में कैसे रातों में जाके आम के बाग में और आम तोड़ते थे और आम सॉरी सेब तोड़ते थे सेब के बाग में जाके, और मम्मी पापा की खूब डांट भी खाते थे। तो नईम जी बहुत बढ़िया, आपकी दिल से जो निकली हुई बात है हमारे दिल तक पहुंची है, पूरे मुरादाबाद ने सुनी है और बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए आपकी फरमाइश, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। हाँ भाई, अब आप कर लो फरमाइश, थोड़ी बहुत डांट खा लेना भाभी से, चलता है।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हमारे पास हमारे लिसनर का मैसेज आया है। नेहा जी कहती हैं कि मेरी बेटी मुझे सुलाते सुलाते खुद सो जाती है। अरे वाह, ये पल सच में ज़िंदगी सबसे प्यारा, मतलब कहते हैं ना, एक पल ऐसा बन जाता है जो यादगार बन जाता है। तो ये पल नेहा जी बहुत ही यादगार बन जाता है जब बच्चा आपको सुलाते सुलाते खुद सो जाता है, तो बात ही कुछ और हो जाती है। कहते हैं ना, रात की खामोशी में जो सुकून मिलता है वो हर थके हुए दिल को नया जुनून देता है। नींद सिर्फ आँखें बंद नहीं करती, ज़िंदगी को फिर से मुस्कुराने की वजह देती हैं। तो हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं और चलिए करते हैं उनसे बात, क्या कहते हैं। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ अखिल जी, आप सुनाइए, आप कहते हैं?
0: आप अपना नाम और बताइए कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में सभी श्रोताओं को।
1: महेश्वरी है और मैं रामगंगा विहार फेज वन में रहता हूँ और मैंने आपके प्रोग्राम की चर्चा बहुत सुनी है और कई बार सुना भी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मेरे को मौका मिला आपसे बात करने का।
0: धन्यवाद धन्यवाद सुमित जी। तो सुमित जी, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैन की नींद। ये जो चैन की नींद है कब बड़ी मुश्किल से आती है, और आती है तो मन करता है कोई उठाए ना कि भैया सुबह सुबह मुझे कहीं काम पे नहीं जाना पड़े या मैं आराम से आज पूरे दिन सुस्ताता रहूं। तो ऐसा कब मौका हुआ है, कोई किस्सा आप बताइए जरूर।
1: वो तो सैटरडे में होता है कि संडे में बच्चों को स्कूल नहीं जाना और तो कम से कम चैन की नींद मिल जाएगी। उसके अलावा चैन की नींद कहाँ मिलती है, आजकल की दिनचर्या यही है कि बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद अपने ऑफिस चले जाना, फिर शाम को वापस घर आ जाना, फिर वही दिनचर्या।
0: तो सही है साहब, यही चैन की नींद मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: तो आज कौन सा गाना सुनेंगे जिसे आप सुन के थोड़ी सी आपकी भी नींद अच्छी हो जाए?
1: हमारे एक मनपसंद गाना है।
0: हाँ जी।
1: जिस गली में घर ना हो तेरा बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। बड़ा हमारा बड़ा फेवरेट है सर, अगर आप वो सुनवा देंगे तो हमें थोड़ा चैन की नींद आ जाएगी।
0: सही है साहब, आप भी बिल्कुल आज एकदम गजब जवाब दे रहे हैं कि आज आप चैन की नींद लेके ही रहेंगे। तो चलिए सुनाते हैं, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए बहुत।
1: ओके सर, थैंक यू।
0: ओके सर। तो ये थे हमारे साथ सुमित महेश्वरी जी जो रामगंगा विहार से जुड़े थे और कह रहे हैं कि हमारा पसंदीदा गाना प्ले कर दीजिए, जिस गली में तेरा घर, उसे सुन के हमें बहुत ही चैन की नींद आ जाएगी। तो ज़रूर सुमित जी, आपकी पसंद का एक गाना प्ले करते हैं और यही गाना हमारा इस शो का आज का लास्ट गाना होगा। और आज की बातें यहीं तक, याद रखिए अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी होती है। काम भी ज़रूरी है, सपने भी ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आराम भी उतना ही ज़रूरी है। एक अंतिम शायरी जो मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए। हर रात खुद से एक वादा किया करो, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, दुनिया की सारी फिक्र सुबह पर छोड़ देना और सुकून से सो जाया करो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे पास हमारे लिसनर्स रणवीर जी कहते हैं कि अखिल भाई, अगर आप हमारे सवालों का जवाब एफएम रेडियो पर दे देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर रणवीर जी, आपके सवालों का जवाब हम देंगे। आपने हमसे सवाल किया था कि अखिल भाई आप ये बताइए, आपको बढ़िया से चैन से सोने वाला या सोने की चैन वाला, मतलब आपको कौन सा बढ़िया लगता है, चैन से सोने वाली चीज़ या फिर सोने की चैन वाला? तो हमने जवाब दिया है आपको, हम कहेंगे चैन के साथ सोने वाला। साहब चैन भी ज़रूरी है और सोना भी ज़रूरी है, तो समझ गए होंगे जो समझदार होंगे। तो सुनते रहिए आप, आज के लिए बस इतना ही। मैं था आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मीठे सपने देखिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और चलते हैं उस गली जहाँ पे सुमित जी ने कहा है जी हमें जाना नहीं, तो सुनते हैं उस गली का भी गाना।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

아시가나? 아시가나?

बात का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।